मीडियम वेव 400। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 55 सेकेंड हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रकृति का सबसे अनुपम और मनमोहक रूप है भोर की सुंदर बेला, जहां उषा लालिमा अंबर में स्वर्णिम आभा बिखेर रही है। वहीं पंछियों का कलरव शीतल मंद बयार और ओस की बूंदों से चमकती धरती का सौंदर्य मन को असीम शांति और नव ऊर्जा प्रदान कर रहा है। श्रोताओं, सकारात्मक ऊर्जा लिए हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते। आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे श्रोता जो सुप्रभात के साथ ही रेडियो सेट को ऑन कर चुके हैं, उन्हें इंतजार होगा देश दुनिया की खबरों को जानने का। तो चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, बजने वाले हैं सुबह के 6। सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले कि केवल यहाँ पर 2,00,000 शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष

0: ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति उ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महर्षि दयानंद सरस्वती का ये विचार है कि अज्ञानी होना गलत बात नहीं है, पर अज्ञानी बने रहना हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 205। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता विविध भारती के खजाने से, इसके अंतर्गत गायिका आशा भोसले से की गई बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। सुबह 7 का समय है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का, 7:30 पर हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार, जो केंद्रित होगा संगीतकार अनिल बिस्वास पर। सुबह 10 आप सुनेंगे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसमें सुनिए अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की बातचीत। सुबह 11 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। प्रसारण समय याद रखिए सुबह 11 कार्यक्रम मन की बात। दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। एक बजे का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर के लिए और 2 आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम सुनिए दिन में 2:30 पर और दिन में 3 आप सुनेंगे मन चाहे गीत। नाट्य तरंग इस कार्यक्रम में नाटक अग्नि चक्र का दूसरा भाग सुनिए। मूल मलयालम लेखक हैं C.L. जोस, हिंदी नाट्य रूपांतरकार हैं P.G. वसुदेव और निर्देशक हैं भारत रत्न भार्गव। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय दिन में 3:30 पर। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, सुनिए कवि प्रदीप के सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। शाम 5 कार्यक्रम होगा छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 7 कार्यक्रम होगा विशेष जयमाला, सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा। इसके अंतर्गत महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरवर चांद बख्शी की शौर्य गाथा आपको सुनवाई जाएगी। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। 8 कार्यक्रम होगा हवा महल, सुनिए नाटिका मूड, इसके लेखक और निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और रात 9 कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार राज खोसला पर। रात 10 कार्यक्रम होगा छाया गीत, 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 कार्यक्रम विविधा। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है रामचरित मानस गान भाग 205।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विफल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृ प्रेम देख परम आनंदित हैं।

0: और आवाज को खोले, रियाज करे।
1: जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, जो भगवान ने दी हुई आवाज होती है वो उम्र के 20 साल तक रह सकती है। उसके बाद उसमें कंपन आने लगेगी, उसमें वो जोर नहीं रहेगा। इसलिए हर सिंगर को सुबह उठ के रियाज करना चाहिए और अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, जैसे कि सिगरेट पीना, इससे भी गले में सांस में फर्क पड़ता है। ये सब चीजें संभालनी चाहिए और रियाज करना बहुत जरूरी है। मेरी नजर में रियाज करना चाहिए, क्योंकि आज तक मैं भी रियाज करती हूँ।
2: जी धन्यवाद आशा जी, आपने अपने अनुभवों के आधार पर संगीत साधना करने वालों के लिए एक अनमोल बात कही है कि स्वर की साधना बहुत आवश्यक है। और अब ये संगीत सरता कार्यक्रम के श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से एक भेंट वार्ता सुनी। भेंट कर रही थी डॉक्टर अचला नागर।
4: मित्रों, कई बार हमें लगता है ना कि लता जी, आशा जी यदि शास्त्रीय संगीत की कोई रचना गाएं तो कितना अनूठा लगेगा, लेकिन डॉक्टर अचला नागर से आशा भोसले की ये जो बातचीत हमने सुनी उससे कई बातें स्पष्ट हुई। उनके लिए शास्त्रीय संगीत तो संभव था ही, लेकिन नव रसात्मक प्रतिभा की पहचान बनाने वाली सुगम संगीत के समंदर की मलिका की ये आवाज जो है, इसकी जितनी दाद हम देंगे वो कम होगी। मित्रों, आइए आशा भोसले के गाए दो गीत के अंश सुनते हैं। पहले सुनिए कारमा फिल्म का गीत, जिसमें स्केल यानी सुर पट्टी बदल कर आशा जी ने क्या खूब गाया है।

और आइए अब सुनते हैं एक और फिल्मी गीत का अंश। फिल्म है विजेता और ये गीत पूरी तरह शास्त्रीय संगीत पर आधारित है।

विविध भारती के खजाने से। आज आप सुन रहे थे मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले से बातचीत। इसके साथ ही आज का हमारा ये संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी। पहला जो गीत है ये किस्मत फिल्म का गाना अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजों में, कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना, संगीत अनिल बिस्वास का। आज इन गीतों के माध्यम से संगीतकार अनिल बिस्वास को उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं।

0: बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला जो गीत है ये बेकसूर फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज़ है, एहसान रिजवी के बोल और संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सात बजकर 7:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। 8:15 पर होगा कार्यक्रम सुर संगम। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें आज की बात का विषय होगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस और भेंटवार्ता होगी बच्चों में गर्मी के मौसम में होने वाली आम बीमारियां। वार्ताकार होंगे डॉक्टर महेश सुरतानी, भेंट करता होंगे संजय धर द्विवेदी। फिल्म संगीत व समाचार पत्रों के साथ आप सुनेंगे भेंटवार्ता। भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित होने वाले समर कैंप से संबंधित जानकारी। वार्ताकार होंगे अनिमेश शक्सेना, RSO अयोध्या मंडल। भेंट करता होंगी सरस्वती पाठक। नौ बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 पर होगा कार्यक्रम बातें आसपास की, जिसमें आज चर्चा होगी जल जंगल और जमीन है जीवन का आधार विषय पर। आज 11 बजे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से मन की बात हमारे दिल्ली केंद्र से। 11:30 पर मन की बात कार्यक्रम का संस्कृत में प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 12:30 पर होगा कार्यक्रम लोक रंग। 1 बजे होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आज दोपहर 1:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 2 बजे होगा कार्यक्रम गीतांजलि। 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल जगत, जिसमें आज चर्चा होगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस और ग्रामीण स्थलों का करें भ्रमण, समझें ग्रामीण जीवन का विषय पर, और होगा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम बच्चों की बचपन को निगलती कुछ आदतें विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर भालेंदु प्रताप सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय अयोध्या। प्रेरक व्यक्तित्व में बात होगी BD सावरकर की और होगा बाल गीत। 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज चर्चा होगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस और ठोस अपशिष्ट को कम करना विषय पर। ज्ञान विज्ञान में होगा कंप्यूटर विजन। भेंट वार्ता होगी एक युवा कलाकार रमा वर्मा छात्रा से। भेंट करता होंगे सदक हुसैन। संस्था में होगा संयुक्त राष्ट्र संघ और हीट वेव, अधिक गर्मी में क्या करें। शाम 5:30 पर होगा लोक संगीत। 6 बजे शाम सुहानी। 6:30 पर होगा कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की। 6:45 पर आप सुनेंगे कृषि जगत, जिसमें चर्चा होगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर और भेंट वार्ता होगी एक प्रगतिशील कृषक से बातचीत। गन्ने की सह फसली खेती उड़द के साथ वार्ताकार होंगे श्री कमलाकांत पांडे। भेंट करता होंगे आलोक गुप्ता। 8:15 पर होगा शेर और गीत। 9:15 पर खेल खिलाड़ी। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।
1: नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बन रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, ये सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहाँ पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहाँ लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जोड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित ये परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को स्थापित किया गया है। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान कल से शुरू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस अभियान को राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया।

0: श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
2: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट इक्विटी पोर्टल कल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में कल अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
3: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है, और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एवं पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 72 जिलों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की CCTV से निगरानी की जाएगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा चलने और वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, फरुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक के बीच बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना प्रादेशिक समाचार, जिसे हमने अपने गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
4: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
0: अमृत कलश कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भक्तिमय प्रस्तुति।

0: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
1: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
0: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
1: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
0: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
1: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
0: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
1: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
2: कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज में ये भजन।
3: गोपाला माखन चोरी की लीला करते हुए, मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्दों में सुनिए।

कन्हैया मुस्कुराकर बोले, हाँ मैया, मैंने ही माखन खाया। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन चुराता, दूसरों की मटकी तोड़ने

क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी न सकी।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा

0: नहीं खुशियाँ बांटिए,
1: नशा नहीं जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
4: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
3: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
4: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
3: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
4: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर

0: के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा इनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आलफियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है।

0: दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आपने सुना समाचार प्रभात, जिसे हमने अपनी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

0: लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर संगम।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या

0: आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सुर संगम कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं आशा भोसले और जगजीत सिंह की आवाज में निदा फाजली का लिखा ये गीत, एल्बम दिल कहीं होश कहीं से।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: सुर संगम कार्यक्रम आप सुन रही हैं गणेश सिंह के साथ। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुमार सानू को।

अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर संगम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन EIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आपके संदेश,
5: संदेश से आते हैं
4: आपके गीत।
5: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
4: आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन

0: सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
1: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस और आज ही के दिन 31 मई को प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों का तंबाकू के सेवन, व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना। वर्तमान में दुनिया भर में हर वर्ष 70 लाख से अधिक मौतों का कारण तंबाकू बनता है, ऐसा अनुमान है। श्रोताओं, WHO विश्व संगठन के सदस्य राज्यों ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया। पहली बार जब इसको मनाया गया तो दुनिया भर में तंबाकू उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे के लिए तंबाकू उत्पादों का उपयोग न करने का आग्रह किया गया था। ऐसी कार्रवाई से ये उम्मीद मिलती है कि जो इसको छोड़ना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को इससे मदद मिलेगी। 1998 में WHO ने तंबाकू मुक्त पहल TFI की स्थापना की, जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने और तंबाकू के वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे पर ध्यान देने का प्रयास है। ये पहल वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति बनाने के लिए सहायता प्रदान करती है। WHO FCTI एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संधि है जिसे 2003 में दुनिया भर के देशों द्वारा तंबाकू निषेध के लिए काम करने वाली नीतियों को लागू करने के लिए एक समझौते के रूप में अपनाया गया। श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष अलग अलग थीम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना घातक है और इसका प्रयोग हम ना करें तभी हम इसके दुष्प्रभावों से बच सकेंगे। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, बच्चों में गर्मी के मौसम में होने वाली आम बीमारियां। वार्ताकार हैं डॉक्टर महेश सुरतानी, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ अयोध्या से। भेंट करता है संजय धर द्विवेदी।
2: श्रोताओं, इस समय बेहद गर्मी जो है पड़ रही है, हम बुजुर्ग, जवान और बच्चे सभी उससे जो है वो परेशान हैं। गर्मी में प्रायः देखने में आता है कि बच्चों में बहुत सारी बीमारियां घर कर जाती हैं, जिससे बच्चे और साथ में गार्जियन से उसके माता पिता और पूरा परिवार जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बार बार डॉक्टर कह जाता है इसका कारण क्या है और उन बच्चों को इसके प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं, उन रोगों से कैसे बचा सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अयोध्या के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश सुरतानी जी को। डॉक्टर महेश सुरतानी जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: सर। गर्मी में आप स्वयं ही देखते होंगे कि बहुत सारे माता पिता जो है आपके पास अपने बच्चों के किसी न किसी समस्या को लेकर के पहुंचते रहते होंगे, क्या कारण है, क्या गर्मी के सीधे प्रभाव से कई तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं?
3: देखिए, इसको मैं थोड़ा बेसिक वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और कुछ कारण जो हैं उनको अलग अलग करके।
2: जरूर।
3: आप ये देखते होंगे कि अगर जाड़े के दिनों में दूध 9 बजे आता है, 12 बजे तक न उबाला जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती।
2: हाँ, फटता नहीं है।
3: और गर्मी के दिनों में आप देखिए, 9 बजे दूध आता है, अगर 6 बजे का निकला हुआ दूध है 7 बजे का तो उबालते ही फट जाता है।
2: बिल्कुल।
3: क्या कारण होता है? दही जमाने को देखिए, जाड़े के दिनों में पहले दिन शाम को जमाइए तो दूसरे दिन दोपहर तक जमती है।
2: बिल्कुल सही बात कहा।
3: और गर्मी के दिनों में सुबह जमाइए तो दोपहर तक जम जाती है। इसका मतलब जो उसमें बैक्टीरिया है वो बहुत ग्रोथ उनकी फास्ट हो जाती है
2: गर्मी के दिनों में। ये हालत वातावरण में भी होती है।
3: अब होता क्या है, हमारे यहाँ जो मुख्य कारण है बीमारी का, मैं सबको बताता रहता हूँ, दूध को बॉटल से पिलाया जाता है। बॉटल में जब दूध पिलाते हैं तो बॉटल में थोड़ा बहुत दूध बचा रह जाता है, कितना भी वाश करेंगे थोड़ा बहुत रह जाता है। बैक्टीरिया पनपने के लिए वो बहुत है,
2: यानी अगर दो चार
3: बैक्टीरिया हमें आंखों से नहीं दिखते उनके लिए बहुत माइन्यूट क्वांटिटी भी बहुत हो जाती है।
2: क्या बात
3: है, वो उसमें फैल जाते हैं, उसमें स्मेल आ जाएगी, उसमें बैक्टीरिया पनप जाएंगे। और अगर दूध की मात्रा थोड़ी ज्यादा रह गई तो उसमें तो फिर तो कहना ही क्या बात,
2: पूछना ही नहीं जी।
3: फिर

0: तो बीमारियों की जड़ यही कारण है
1: जी।
0: हमारे यहाँ लोग कहते हैं स्टील की बोतल से पिलाते हैं, मेरे को लगता है स्टील की बोतल, ये कहीं भ्रम फैल गया है कि स्टील की बोतल से बीमारी नहीं होती, लेकिन उसका भी वही रीजन है कि उसमें जरा सा भी दूध बच गया या निपल पे लग गया या किसी का हाथ लग गया,
1: साफ नहीं
0: तो इन्फेक्शन होना ही होना है। वो गर्मी के दिनों में ज्यादा हो जाता है। मदर कहती है हम तो इसको 6 महीने से पिला रहे हैं बोतल से, लेकिन अब गर्मी बढ़ी है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ी है तो बच्चा आपका बीमार हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ये आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा होता है कहीं भी खाना है अगर उसको 4-6-10 घंटे रख दिया जाए उसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: अगर कहीं खाना है स्पेशली पनीर है, दही बड़ा है या दालें हैं जिनमें प्रोटीन होता है, फैट होता है या कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होते हैं और नमी पाया तो वहाँ फंगस और बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेज होती है। इसीलिए ठेले पे खाना पीना ये सब जो खान पान होते हैं बहुत जल्दी इफेक्ट डालते हैं
1: सर।
0: और डायरिया और लूज वोमिटिंग इस समय आप देखते हैं बहुत ज्यादा होता
1: बच्चों में हो जाती है।
0: तो एक तो मेन कारण है, इसको अगर बचाना है तो ताजा खाना, साफ पानी, उबला हुआ पानी हो तो बहुत अच्छा है, या डायरेक्ट डीप बोरिंग है 200 फीट से ज्यादा की तो उसके पानी को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं
1: जी।
0: उसके अलावा जो है दूध की बोतल उबालना, दूध की बोतल तो त्याग ही देना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: उसको तो हटा देना चाहिए
1: जी।
0: मेरे ख्याल से उनको बनाना ही बंद करना चाहिए, बच्चों की बीमारियां आधी साल हो जाएंगी।
1: विकल्प में क्या सुझाव देंगे सर आप?
0: कटोरी चम्मच गिलास,
1: थोड़ा सा श्रम अधिक,
0: माँ का दूध 6 महीने तक, उसके बाद कटोरी चम्मच। बोतल की आदत क्यों डालते हैं हम लोग,
1: कोई अपनी सुविधा के लिए।
0: हाँ, कोई अच्छी थोड़ी है वो। दूसरा होता है देखिए, अगर हम किसी दो चीजों को रखें, एक का तापमान ज्यादा हो एक का तापमान कम हो
1: सर,
0: तो क्या होगा, ज्यादा तापमान वाले से कम तापमान वाले पे आता है और वो भी गर्म हो जाता है
1: जी।
0: हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री
1: जी,
0: इस समय बाहर चल रहा है 42-45 डिग्री।
1: हाँ।
0: तो अगर हम बाहर निकलते हैं तो शरीर हमारा वैसे ही गर्म, एक तो अंदर ऊर्जा पैदा हो रही, सारी एक्टिविटीज से ऊर्जा पैदा हो रही, उसको निकलने की जरूरत है
1: जी।
0: लेकिन वो निकलती नहीं और ऊपर से और हीट आपको मिल रही है तो वो दिक्कत करती है। हीट जब मिलती है शरीर तो अपने को 37 डिग्री पे रखना चाहता है
1: जी।
0: उससे होता है पसीना आता है, जब पसीना आता है तो हमटिंग होती है तो इवेपोरेशन होगा, बॉडी ठंडी रहती है, फिर हम थोड़ी देर ठंडक में चले जाएं। लेकिन अगर ये प्रक्रिया चलती रही
1: जी
0: तो हीट स्ट्रोक हो जाते हैं। हीट स्ट्रोक दो तरह के होते हैं
1: सर,
0: एक तो एक्सरसाइज से।
1: हाँ।
0: एक्सरसाइज में जब पसीना बहुत आता है, आते आते एक समय ऐसा आता है कि एक्सरसाइज से गर्मी पैदा हो रही, साथ में बाहर से आ रही, पसीना होते होते एक स्टेज के बाद वो भी वो हो गया, कम हो गया
1: जी,
0: तो ये हीट स्ट्रोक होता है। ये लेबर्स में
1: ज्यादा हो जाता है
0: या एथलीट में, या जो खेल कूद बहुत ज्यादा खेल कूद रहे हैं,
1: धावक हैं,
0: या गर्मी में अचानक किसी को ओवर एक्जर्शन करना पड़ गया, उसमें ये होता है। दूसरा होता है कि हीट स्ट्रोक वैसे ही कभी अचानक गर्मी में आदमी निकल गया
1: सर,
0: और उसमें स्वेटिंग बंद हो जाती,
1: पसीना
0: कम आता है
1: जी।
0: पसीना नहीं आता तो होता क्या है, अचानक ही हीट जब बढ़ती है तो पसीना भी प्रॉपर नहीं आ पाता
1: सर,
0: और जब नहीं आता तो बॉडी बहुत गर्म हो जाती, उसकी वजह से उल्टियां होना, कंफ्यूजन होना,
1: ये सारी चीजें,
0: ब्रेन में इफेक्ट हो जाना, ये सब चीजें होती। बुखार इस समय
1: सर,
0: आप देखिए छोटे बच्चों में,
1: हाँ,
0: बच्चों में पसीना थोड़ा कम आता है
1: जी।
0: अगर गर्मी के वातावरण में रखा गया, उनको ठंडी जगह न रखा गया, तो बच्चों का शरीर वैसे ही गर्म लगने लगता है, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ज्यादा होती, शरीर में ऊर्जा भी ज्यादा पैदा हो रही, ऊष्मा पैदा हो रही, उसको निकालना भी है उसको।
1: हाँ।
0: लेकिन उसके बाद जो है ऊपर से हीट और मिल रही है तो उसको निकालने के लिए वो निकाल नहीं पाते, तो बच्चों का शरीर थोड़ा गर्म होने लगता है
1: जी।
0: उसके लिए हमें ये करना होता है, बच्चे को ठंडी जगह रखें, प्रॉपर प्लेस पे रखें जहाँ ठंड हो
1: जी,
0: एसी या कूलर अगर हो तो उसमें रख सकते हैं
1: सर,
0: इस समय का जो मौसम
1: हाँ,
0: है
1: बिल्कुल।
0: कपड़े कम पहनाए, कॉटन के पहनाए, जिससे बच्चे के अंदर हवा आती जाती रहे, ऊष्मा का आदान प्रदान जो है
1: चलता रहे,
0: आराम से होता रहे, ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा जो है गर्मी का मौसम बहुत ही खतरनाक होता है। हाइपर पैर मतलब कभी कभी बच्चों में फीवर गर्मी की वजह से, या बड़ों में आप देखते होंगे कभी कभी अचानक बहुत हीट स्ट्रोक जो मैंने बताया वो हो जाता है। बच्चों में थोड़ा सा ध्यान रखना

0: ये कि एक दो बार गीले कपड़े से पोंछ दें,
1: हाँ
0: वो कर दिया जाए, कॉटन के कपड़े पहनाए, ठंडी जगह रखें, उससे काफी हद तक राहत मिलती है। खान पान में थोड़ा सफाई रखें तो उससे इन्फेक्शन का वो कम रहता है। बॉटल बंद करें तो आधी दिक्कतें वैसे ही
1: समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल,
0: तो गर्मियों में और कुछ नहीं करना है। और साथ में उसको, क्योंकि गर्मी में पसीना आ रहा है, पानी की कमी है, पानी ज्यादा देना है। मौसमी फल, ये प्रकृति ने देखिए, इस समय जो फल बनाए हैं,
1: रसीले बना दिए,
0: सारे फलों में पानी है। खीरा हो, ककड़ी हो, तरबूज हो, खरबूज हो, सारे फलों में केवल पानी है।
1: जी बिल्कुल,
0: उनको सेवन करना चाहिए
1: सर।
0: साथ में पानी वाली चीजें बच्चों को ज्यादा देनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा अगर इस तरह से अगर हम मेंटेन रखते हैं तो ये गर्मी बहुत वो नहीं, बच्चों को ज्यादा ना निकलने दें, सुबह शाम खेलें, बच्चों को खेलना भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि दोपहर में आपने धूप में डाल दिया। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी में
1: जी,
0: जहां पे नॉन एसी गाड़ियां हैं और धूप में सफर करने से बचना चाहिए, क्योंकि गाड़ियां बहुत तब जाती हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो उस समय भी बहुत दिक्कत होती है। अगर कभी इमरजेंसी में ले भी जाना पड़े तो प्रॉपर पानी, हाइड्रेशन जरूरी है, पानी पिलाते रहें या जो भी लिक्विड चीजें हैं उनको देते रहें जरूर।
1: तो इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा इस तरह की गर्मी की वजह से त्रस्त हो जाता है तो क्या करना चाहिए हमको?
0: देखिए, ऐसा है, अगर किसी बच्चे को अचानक मिलता है और बहुत गर्म है वो, तो उसको पहले तो उसके कपड़े कम करा देने चाहिए
1: जी।
0: कपड़े कम कराने के बाद उसको नॉर्मल वाटर से, ठंडे पानी से नहीं।
1: इसमें
0: लोग क्या करते हैं, आइस वाला नहीं यूज करना चाहिए। यूजुअली कोशिश करना चाहिए
1: सामान्य पानी
0: कि नॉर्मल टैप वाटर जो है यूज करें, उससे पोंछते रहें, पूरे शरीर को पोंछते रहें, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन होगा और बुखार की दवाएं साथ में दे सकते हैं। हाँ, बुखार के साथ अगर हाई टेम्परेचर के साथ कभी दौरा आ रहा है या कुछ और भी प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम है या कुछ है, तो उसको डॉक्टर को भी दिखा देना चाहिए। ये
1: आप जो गार्जियन जिनके बच्चे इस समय छोटे हैं और वो यात्रा में हैं या इस तरह की चीजों में निकले हुए हैं या मजबूरी बस बाहर निकलना पड़ता है इस गर्मी में, उनके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे?
0: उनके लिए सुझाव मैं यही देना चाहूंगा, एक तो जगह जगह खाना इस्तेमाल न करें, रखा हुआ खाना इस्तेमाल न करें
1: जी,
0: दूध की बॉटल इस्तेमाल न करें, जब भी वो करें कटोरी चम्मच से और दूध ताजा बना के और जो बचा हुआ है उसको डिस्कार्ड कर दें, हटा दें
1: जी।
0: ये नहीं कि वो रखा है फिर से हमने एक घंटे बाद यूज कर लिया,
1: नहीं,
0: बैक्टीरिया पनप जाएंगे, वो हटा दें। फलों वाले जो रसीले फल हैं जिनमें पानी ज्यादा है उनको इस्तेमाल किया जाए, और उसके अलावा हाइड्रेशन के लिए पानी है, लिक्विड चीजें हैं, नारियल पानी है, ये सब चीजें ज्यादा देनी चाहिए।
1: यानी अगर इस तरह की हम सावधानी बरते हैं तो जो इस समय उपजने वाली बीमारियां हैं उससे अपने बच्चों को, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: और जितना हो सके धूप से उससे बचें, जितना बचाव पॉसिबल हो सके
1: उतना करना चाहिए,
0: ठंडी जगह रखें।
1: डॉक्टर महेश सुतैन जी, आप वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, आप आकाशवाणी की स्टूडियो आए और आपने बच्चों में गर्मी के

0: स्विमिंग पूल बंद हो जाते हैं सितंबर से
1: जी,
0: तो तब तक हम चाहते हैं कि इस वक्त में बच्चे आए ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाए
1: जी। बच्चों को इसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाएगा?
0: नहीं, उसके बाद जब वो प्रैक्टिस करेगा तो उसको जब जिला स्तर प्रतियोगिता होगी उसके अंदर मंडल स्तर की होगी, राज्य स्तर की होगी, उसके टैलेंट के ऊपर बात है वो कहाँ तक पहुँचता है
1: जी।
0: उसको एक रास्ता मिल जाएगा और वो वहाँ से
1: जी, वरना समर कैंप खत्म होने के बाद उसका जो गतिविधि है वो और हो जाएगी
0: जी, जी,
1: जी। इसका समय क्या है, यानी किस दिनांक से शुरू होकर के और कब तक चलेगा?
0: वो जब मर्जी से जब आना शुरू कर दें इन महीनों में, और वैसे हम जो है उसको सुबह प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक, ऐसी शाम को 6 से 8 तक, लड़कियों का अभी क्यों लेडीज आ रही हैं
1: हाँ।
0: वो लोग बच्चों के साथ ही कर ले रहे हैं, लेकिन अगर अलग भी समय चाहेंगी बड़ी लेडीज तो उनके लिए एक अलग समय हम दे देंगे एक
1: जी। अगर कोई 15-20 दिनों के लिए ही ज्वाइन करना चाहे तो 15-20 दिन के बाद वो फ्री कर देंगे आप उसे?
0: हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो महीने भर का तो उसको खैर फीस वो जमा करनी होगी
1: जी,
0: वो है भी बहुत कम, 200 रुपए है, बड़ों के लिए 500 रुपए है, और बड़ों के लिए बस हमने जो 18 साल से ऊपर है उसके लिए 2000 रुपए का प्रोत्साहन समिति में एक धनराशि जमा करनी पड़ेगी उसको
1: जी।
0: 18 साल से ऊपर वाले को, 18 साल से कम वाले को केवल 500 रुपए देंगे और फिर 200 रुपए महीना उसका रहेगा।
1: इस समय स्कूलों में भी समर कैंप चलते हैं तो वहाँ पर लोग अपने कोच रख करके बच्चों को सिखाते हैं, क्या आपकी तरफ से भी ऐसी कोई सुविधा है कि स्कूलों में भी भेज करके आप बच्चों को सिखा रहे हैं?
0: नहीं, स्कूलों में थोड़ा सा फीस वो लोग ज्यादा मतलब होती है, ये हमारा गवर्नमेंट का है तो बिल्कुल आप 200 रुपए महीना बिल्कुल निःशुल्क टाइप मान लीजिए, तो रजिस्ट्रेशन सा टाइप का है
1: बिल्कुल,
0: तो केवल इतने में स्विमिंग पूल होता है, बाकी जगह जहाँ प्राइवेट या उस तरह होता है वहाँ 2000 रुपए की फीस होती है।
1: बच्चों को कॉस्ट्यूम खुद से लाना होगा?
0: वो अपना खुद लेना होता है, गॉगल्स होते हैं
1: हाँ।
0: कैप होता है हेयर के लिए और अपने कॉस्ट्यूम्स होते हैं।
1: अनिमेश जी, जो ये खेल गतिविधियां हैं ये बच्चों के लिए किस तरह से फायदेमंद है, खासतौर पर उनके स्वास्थ्य को लेकर के?
0: देखिए, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज के रूप में तो स्विमिंग को माना ही जाता है
1: जी।
0: अगर स्विमिंग कर रहे हैं, बाकी क्रिकेट बैडमिंटन ये सब तो अधिकतर पूरे साल वर्ष चलता रहता है, क्योंकि इस वक्त हम मेनली स्विमिंग की बात कर रहे हैं, तो स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज होती है हर एक उसके लिए फिटनेस के लिए, तो इसलिए हम स्विमिंग फिटनेस के लिए तो बहुत अच्छा है
1: जी। मुझे भी लगता है कि वैसे आज के समय में एक ये हर सामान्य व्यक्ति को स्विमिंग जानना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें शायद अगर लोग स्विमिंग जानते तो बच सकते थे जी। अगर कोई एनजीओ है, स्वयंसेवी संस्था है या कोई विद्यालय संगठन है, वो अपना कोई स्विमिंग से संबंधित गतिविधि या कोई भी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और आपके स्टेडियम में वो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई प्रक्रिया है?
0: बिल्कुल हो जाता है, ये बुकिंग हो जाती है, कोई एसओएन अगर कराना चाहती है, कोई संस्था कराना चाहती है, कोई विद्यालय जहाँ स्विमिंग पूल नहीं है वो अगर कोई प्रतियोगिता कराना चाहता है तो उसके लिए वो दिन भर के लिए उसको बुकिंग दी जा सकती है।
1: प्रक्रिया क्या होगी उसकी, कोई ऑनलाइन?
0: नहीं, कुछ नहीं, स्टेडियम में आके वो अपनी प्रार्थना पत्र देंगे, बहुत नॉमिनल चार्ज है उसके, अगर वो जिला स्तर के लिए अलग होते हैं, राज्य स्तर कराएंगे अलग और स्टेट नेशनल कराएंगे तो अलग, हालांकि यहाँ तो जिला स्तर की अपने विद्यालय लेवल की लोग कराएंगे
1: जी,
0: तो उसके लिए वो 1600-2000 के लगभग आसपास ऐसी फीस रहती है और उसमें आके आप अपना हमारा स्विमिंग पूल बुक कर सकते हैं।
1: चलते चलते उन माता पिता से क्या कहना चाहेंगे जो इस समय बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हैं और कंफ्यूज हैं क्या कराएं क्या नहीं कराएं, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: ये बहुत अच्छा समय होता है स्विमिंग पूल गर्मियों की छुट्टियों वाला, जिसके अंदर ये सारे आप करा सकते हैं, बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर देखिए कि उसको किस चीज में इंटरेस्ट है और वो चीज उसको कराइए, फिर जैसा आपने कहा था कि हो सकता है वो उसका करियर बने
1: जी। बिल्कुल अनिमेश सक्सेना जी, आप क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी अयोध्या मंडल हैं और आपने हमारे सभी श्रोताओं को समर कैंप में खासतौर पर खेल से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी, जो कि आयोजित होगी भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीडा संकुल में। इसके लिए आपको सभी श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना भेंट वार्ता, भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित होने वाले समर कैंप से संबंधित जानकारी। वार्ताकार थे अनिमेश सक्सेना, RSO अयोध्या मंडल, भेंटकर्ता थी सरस्वती पाठक। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये गीत फिल्म आरजू से।

दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी डब्बू बब्बू आप सुनना चाहते हैं सिर्फ तुम फिल्म का गीत तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा नगमा कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज है गीत है समीर का संगीत है नदीम शवन का

कार्यक्रम का अगला संदेश आया है दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा का। आप सुनना चाहते हैं अकेले हम अकेले तुम फिल्म का गीत, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये नगमा कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। गीत है मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत है अनु मलिक का।

0: अब किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashvani@gmail.com शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या। ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए, सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
2: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गणेश सिंह के साथ। कार्यक्रम का अगला संदेश हमने शामिल किया है मक्कम पोस्ट फुलचिंचोड़ी तालुका पंढरपुर से भेज रहे हैं जाकिर मुलाड़ी, सुमैया मुलाड़ी, सुमान मुलाड़ी, समीर मुलाड़ी, सलमा मुलाड़ी, मुमताज मुलाड़ी, दिलशाद मुलाड़ी, नसीर मुलाड़ी, चाचा चाची और इनका परिवार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म मिस्टर इंडिया का गीत, आवाज जावेद माफ कीजिएगा किशोर कुमार की है, गीत है जावेद अख्तर का और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा नगमा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। अपना संदेश आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं 8302319911 पर। जी हाँ, कार्यक्रम का अगला संदेश हमने लिया है कनीरा मोहल्ला पटियाला से। भेज रहे हैं मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, नितिन, पलक, करण, नीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बट्टा। आप सुनना चाहते हैं दुश्मन फिल्म का गीत, तो आइए सुनते हैं दुश्मन फिल्म से ये नगमा जगजीत सिंह की आवाज में है।

0: इसी के साथ आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम से गणेश सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बातें आसपास की।
5: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग अयोध्या। फोन 9267988901।
6: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
7: याद रखिए, शौक सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
6: पार्टियों में नशा नहीं खुशियां बांटिए।
7: नशा नहीं जिंदगी अपनाइए।
6: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
7: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
9: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
8: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
9: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
8: कॉल करें 6386907006।
9: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
8: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
0: बातें आसपास की कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप हैं गणेश सिंह के साथ, कार्यक्रम में बने रहिए। आज हम बात करेंगे जल जंगल और जमीन जीवन का आधार विषय पर और सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे नगमे। जी हाँ, ये जल जंगल और जमीन न केवल प्रकृति का मूल आधार है बल्कि समूचे मानव जीवन और संस्कृति और पारिस्थितिकी की सबसे मजबूत नींव है। इन तीनों का संतुलन ही एक स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य की गारंटी देता है।

0: आकाशवाणी अयोध्या से,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
3: श्रोताओं, पीने के लिए पानी, कृषि और अन्य कार्यों के लिए जल का संरक्षण नितांत आवश्यक है। वहीं जंगल हमें सांस के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। वहीं जमीन हमें भोजन और रहने के लिए स्थान यानी आश्रय प्रदान करती है। इसलिए जल, जंगल और जमीन जीवन का आधार है। इसका संरक्षण करना नितांत आवश्यक है। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ऐतराज फिल्म का गीत उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में। गीत है समीर का, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
2: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
2: जल, जंगल और जमीन तीनों एक चक्र की तरह काम करते हैं। जमीन बारिश के पानी को सोखती है जिससे जंगल पनपते हैं और जंगल बादलों को आकर्षित करके पानी बरसाते हैं। इसीलिए जल, जंगल और जमीन जीवन का आधार हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं बरसात फिल्म का ये गीत। उदित नारायण, अलका याग्निक, सपना अवस्थी की आवाज में गीते समीर का, संगीत है नदीम शवन का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बातें आसपास की। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: प्रतिशत।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम
1: इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन।

0: व्यक्ति है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओं चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है, और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है, और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदार
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी।
0: हाँ।
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई। और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी, जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो वृक्ष खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी इस साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं और गुंजा
1: करती रहूंगी।
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
0: अच्छा।
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी,
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
0: अच्छा।
1: आपने तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
0: जी।
1: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
0: जी।
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
0: अरे वाह।
1: हाँ।
0: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली।

0: जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी
1: हाँ,
0: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
0: अच्छा,
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
0: जी,
1: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को, और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
0: अच्छा
1: हाँ, तो ये था रुतबा था मेरा अपना।
0: तो अच्छी बात है, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि हाँ, साधना गाओ। लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दे। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती है आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे।

0: या आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दे। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
0: क्या है
1: ना। तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
0: उतनी बुलंद आवाज।
1: हाँ, बुलंद आवाज थी जी।
0: तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विजय भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य, अभिनय, बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए। अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत तो दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्यकी हैं उस जोगीरा में, हमने देखा
1: जोगीरा में मार खा के की हूं।
0: वो किस्सा भी जरा बता दे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था, मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन

0: डंडा मारा पैर में एकदम ठीक कर दिया मैंने।
1: अच्छा एक डंडे में डांस हो गया
0: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते हैं
1: लाठी के भूत
0: लाठी के भूत मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी इसे
1: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया,
0: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
1: हाँ
0: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
1: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने, हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं, कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं, तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
0: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी, अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
1: अच्छा
0: वो बह गया, बह रहा था जैसे, तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी, छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ।
1: हाँ।
0: तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया, कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
1: अच्छा
0: हाँ ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सब बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
1: अच्छा
0: तो 2-3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है, ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती है तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया
1: जी,
0: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
1: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
0: मुझे लगता है कि पहली बात एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को, हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है, और माँ बाप साथ में नहीं होते फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
1: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए ऐसा आपका कहना है। हाँ। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है, ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
0: हाँ,
1: एक
0: तो
1: ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना।
1: हाँ।
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
1: जी,
0: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
1: जी,
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता, नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
1: जी,
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं
1: जी,
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
1: अच्छा एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ, ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ। हाँ। कि
1: जी जी हमारे

0: पक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
1: अच्छा, ऐसा
0: जी? तो कोई गीत बता दीजिए जो
1: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं।
0: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
1: और बहुत मीठा संगीत है।
0: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ दिल ने सुना, कुछ भी

और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं, जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में

0: बताएं तुम।
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी, तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था, तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी। और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है।
0: जी जी।
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है, तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा। लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नई
1: प्रोडक्शन में,
0: जी,
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है। बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वेंट्स में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
2: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
2: अच्छा।
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
0: जी।
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है, तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत
2: अनुसार आप लड़कियों से घिरी रहती थी।
1: हाँ, तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
0: जी।
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे।
2: हाँ। नहीं वैसे आप बहुत हॉट है शॉल की जरूरत। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद। जी
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
0: जी,
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरावर्णम फिल्म आई थी
0: जी,
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरावर्णम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
0: जी,
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धरता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
2: नीचे का जी।
1: लेकिन वो ले गए
0: जी,
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम। मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन टू मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
2: वही तो सेम फिल्म।
1: हाँ सेम फिल्म।
2: ओह।
1: लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल, मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी। जुड़ना ऐसी फिल्म
0: जी,
1: से
0: जी।
1: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
0: जी,
1: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई। तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
2: बोलती आंखें।
1: हाँ, तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
0: जी,
1: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद।
0: हाँ। जी जी उसके बाद ही।
1: हाँ, तो मस्ती में की बस। और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
0: जी,
1: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
2: अच्छा।
1: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
0: जी,
1: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, तो वो फिल्म की। उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
0: हाँ।
1: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना ये सब
0: जी,
1: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में

0: तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी,
1: जी जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
1: है,
0: देखी है।
1: हाँ।
0: तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब,
1: हाँ।
0: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
1: जी।
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर रहे, पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
0: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर, वो जब साथ में है, तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
0: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे,
1: हाँ।
0: कि ऐसा ही करना है, और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
1: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
0: पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा, हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा नहीं करूंगी। तो ये बिहार विहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम, हाँ। और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने
1: जी।
0: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले, मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उस लिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू, वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतना गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर, और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा।
0: फिर मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी।
0: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की है,
0: वो वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइक ही तो लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी जी, लेकिन
0: बहुत प्यारी है।
1: हाँ, वो
0: बहुत अच्छी फिल्म जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी?
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
0: मतलब वो चाट और लस्सी खाते पीते
1: हाँ। क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
0: अच्छा।
1: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार खड़े हैं और
1: तो हमारा पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा।
1: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
0: जी,
1: हाँ ये काफी फर्क है
0: जी।
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है। हाँ। अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या?
0: अच्छा,
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, मुंजा को कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, वो गीत हम सुनाना चाहेंगे।
1: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते हैं
0: जी,
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी
0: जी,
1: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था चंदन चंदन ऐसा
0: बहुत,
1: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
0: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
1: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
0: रविंद्र जैन वहाँ पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा। कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते?
1: बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप
0: जी बहुत खूबसूरत गीत है
1: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
0: जी,
1: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
0: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि और लगता है सुनते रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो,
1: बट जितना था सब भरा हुआ था। और उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे
1: भैया, मैं तो

0: प्रणाम करती हूँ। ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था। उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
1: 30 गाने
0: में, और सुना रही थी ये पसंद है नहीं है अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे। अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़िए छोड़िए नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो
1: जी,
0: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
1: शब्द भी लिख लेते थे
0: एक सेकंड में
1: 30 गाने एक समय पे,
0: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
1: लगातार।
0: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो उनसे
1: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
0: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ और मैं और सचिन, हम लोग ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती, मैं तुमसे गवाता।
1: ये रविंद्र जी
0: हाँ, क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
1: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो
0: हाँ,
1: आनंद ही अलग आता
0: हाँ,
1: होगा।
0: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है।
1: अच्छा
0: तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई
1: हाँ,
0: अल्लड़पन कहते ना,
1: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता हाँ, दी गई।
0: ये बात है, मैं दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
1: अच्छा खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, हाँ, लगेगी तो संभाल लेना।
0: हाँ,
1: बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना नई रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे घूमते?
0: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला कि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, कि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी
1: हाँ।
0: तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
1: अच्छा,
0: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें। लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो।
1: अरे वाह,
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी
1: हाँ।
0: तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
1: तो यानी आपको हाँ। मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी हाँ। अच्छा मिला, दोनों जगह
0: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
1: जी,
0: तो जहाँ भी है बस खुश रहे
1: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का जो आपकी बदमाशियों से परेशान है पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
0: नहीं नहीं, मेरा बेटा तो बहुत दूर है।
1: अच्छा,
0: उसको फेमस नहीं होना है वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
1: जी।
0: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की है
1: जी,
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
1: जी,
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई
1: हाँ, तो उस समय वो चल,
0: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे

0: और लोग देते हैं,
1: मतलब उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
0: नहीं, मैं करती भी नहीं।
1: मेहनत करो अपनी,
0: हाँ, अपनी मेहनत करो,
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: क्योंकि मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
1: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना, ये सुपर 30
1: जी,
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी को ही, अच्छा तो बोले 100%।
1: हाँ,
0: अब देखते हैं क्या होता है।
1: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
0: हाँ,
1: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती है, ऐसा ऐसा मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये जगह बड़ी,
0: हाँ,
1: बड़े पवित्र लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ, आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है यहाँ की। और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी। पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं, और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
0: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं
1: जी।
0: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ, हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
1: ये
0: ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
1: और बचता कभी नहीं,
0: बचता भी नहीं है, और कभी क्रेप भी नहीं करती माए
1: जी।
0: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई
1: जी।
0: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि हाँ, आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है।
1: हाँ,
0: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है।
1: अच्छा,
0: हाँ, एक कच्चे धागे करके। अच्छा, और साड़ियां वीव्स वगैरह, मैं चाहती सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें, तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है, कैसी है पहेली
1: जी,
0: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है।
1: अरे वाह,
0: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब देखें।
1: फिल्म है कैसी है पहेली,
0: कैसी है पहेली,
1: जरूर से हम सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
0: अच्छा लगा मुझे भी। अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
1: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी।
4: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। प्रातः के 10:55 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से मन की बात। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज़ किया 100 मीटर, तभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज़ किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ट नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने

0: सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी, एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और एच एफ परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पर जाके बैठ, वहाँ पर स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की, और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आपने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता, आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा

हर घर में शुरू हो जाता है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात ना होती। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा। यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए। एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती है। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जाने बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने

हमें चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरी मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूँगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाए। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको

ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की, वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती है। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बाल कृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान

कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सॉरी भाई। आवाजें केके, सुनिधि चौहान और अभिषेक नलवाल की। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीत दिया है विवेक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे दहला। इस फिल्म का गाना गीतकार हैं पंछी जालुनवी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के और सुनीति चौहान, फिल्म का नाम हमराज।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं के और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टम्प्ड।

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: हेलो,
7: सुनो, टेलीफोन नंबर।
8: माय नंबर इज
9: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।

अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोकरंग में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं शारदा सिन्हा और सखियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: श्रोताओं एक सूचना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, उत्साह और जोश का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसा बच्चा जो भारतीय नागरिक हो तथा भारत का निवासी हो, वह इसमें प्रतिभाग कर सकता है। आयु सीमा 31 जुलाई 2026 को प्रतिभागी बच्चे की उम्र 5 वर्ष से कम तथा 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे का कार्य, घटना और उपलब्धि नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 2 वर्ष के भीतर की होनी चाहिए। विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति या संस्था असाधारण उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। बच्चे स्वनामांकन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कारों की घोषणा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। ये पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में अगला लोकगीत आइए सुनते हैं सुषमा गुप्ता और सखियों की आवाज में सोहर।

0: अभी आप सुन रहे थे अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। दोपहर के 1 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
5: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
6: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।

0: नमस्कार, आदाब, सप्रेम वंदन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। और दोस्तों, आज के इस सफर में मैं हूँ ऋचा आपके साथ। तो देर किस बात की, जल्दी से डायल कीजिए हमारा मैजिक नंबर 7376804090। हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में।
1: नमस्कार
0: जी, नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुपाल सिंह है, नवाबपुर गोंडा से बोल रहे हैं, बिश्नोहरपुर।
0: जी जी, और आप क्या करते हैं?
1: किराना स्टोर है
0: जी। तो आजकल तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है
1: जी मैम।
0: तो जैसे दुकान पे
1: बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: हाँ, तो दुकान पर बैठे रहते हैं तो कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं लगती
1: जी मैम?
0: जैसे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आप दुकान पर बैठे रहते हैं तो
1: जी।
0: हाँ, तो क्या मतलब किस तरह से अपने आप को वो करते हैं कि गर्मी कम ल...
1: यही कहना है, हरदम पानी पीना चाहिए और धूप धूप से बचना चाहिए
0: क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए जी। और आज आप किस फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: बस यही औरत तेरी यही कहानी का फिल्म।
0: चलिए हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद
1: जी मैम। नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: कहते हैं जब शब्द हृदय से जन्म लेते हैं तो केवल सुनाई नहीं देते, सीधे आत्मा में उतर जाते हैं। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। आपका शुभ नाम?
1: गिराम, हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान सिंह जी, क्या करते हैं आप?
1: खेती किसानी करते हैं दीदी।
0: जी तो इस समय खेत में क्या लगा रखे हैं?
1: दीदी अभी तो खेत खाली हैं और गर्मी पड़ रही है, तो दीदी अभी कुछ बोया नहीं है हमने। जैसी बरसात चालू होगी तो

0: सोयाबीन मक्का धान बोएंगे दीदी।
1: जी जी, तो आपकी कॉल इससे पहले भी लग चुकी है।
0: जी दीदी, मैं जुड़ता रहता हूँ आकाशवाणी अयोध्या पर सुबह 10 बजे में जो आता है ना 9:30 बजे और शाम को जो आता है 9:30-10 उसमें भी जुड़ता रहता हूँ दीदी।
1: प्रोग्राम सुनते हैं आकाशवाणी
0: कॉल इन कार्यक्रम। और दीदी अभी आज आप लोकगीत सुना रहे थे दीदी, ये कार्यक्रम मुझे बेहद पसंद आया दीदी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप किस फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम है संग्राम और गाने के बोल हैं दिल में मोहब्बत है आंखों में प्यार, और दो तीन मित्रों को याद करना चाहेंगे दीदी, दोस्तों को।
0: एकदम एकदम, नाम ले लीजिए।
1: गुंजन तिवारी जी हैं अयोध्या से, पूनम दीदी है कानपुर से, और जो श्रोता लाइव सुन रहे हैं उनको सभी को डेडिकेट रहेगा, और आपके यहाँ से अमरजीत सर जी हैं उनको भी डेडिकेट रहेगा दीदी।
0: चलिए सबके साथ सुनिए ये प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या, जहां हर आवाज में गूंजता है विश्वास। हेलो,
1: जय माता दी।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम पूरा वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमहल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है मैडम,
0: क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है वहाँ।
1: गर्मी हो रही है, कल परसों अंदर कल अंदर के साथ बारिश हुई थी तो थोड़ा मौसम
0: थोड़ा मौसम
1: बना हुआ है ठंड मैडम। आपको उधर?
0: इधर भी बस यही है कि मौसम थोड़ा सा, तो आवाज तो गर्म है ही है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया था पर मौसम है तो करवट लेता रहता है।
1: जी मैडम,
0: तो आज आप किस फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: जी मैडम फिल्म का नाम है चल मेरे भाई और गाने के बोल रहे हैं मेहंदी रंग लाई, ये गाना।
0: जी तो मैं आपको सुनवा दूं?
1: थैंक यू मैडम आपका कार्यक्रम को, मेरे को मेरा दोस्त राकेश है उसने बताया तो बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम सुनता रहता मैं।
0: जी जी सुनिए जी, धन्यवाद और एंजॉय कीजिए अपने इस गीत को।
1: थैंक यू मैडम।

0: आप सुन रहे हैं अयोध्या के दिल की धड़कन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हेलो जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है?
1: आप कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ, आपका क्या नाम है?
1: कमलेश पांडे
0: जी। कमलेश जी, कहाँ से कॉल किया आप?
1: गोंडा जिला से बोल रहे हैं
0: जी। क्या करते हैं आप?
1: प्राइवेट में अध्यापक हूँ।
0: अच्छा, तो इस वक्त
1: खाता हूँ बहुत टैक्स।
0: बस यही तो जीवन है, खुश रहिए, खाते पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट बांटिए, यही जीवन है। क्यों कमलेश जी? तो आजकल तो इस समय तो विद्यालय बंद होगा?
1: जी बंद है
0: जी। तो आज आप किस फिल्म का गीत सुन रहे हैं?
1: राजा हिंदुस्तानी का सुना दीजिए।
0: ठीक, तो हम सुनवाते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हेलो
1: चांदनी बोल रही हूँ, गोंडा से।
0: चांदनी जी क्या करती हैं आप?
1: कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ, और हमें लगता है आपकी कॉल ज्यादातर लग ही जाती है।
1: अगले संडे को दिन में ही कॉल लगाया था, फिर दिन में ही लगाया।
0: तो कैसे, जब चाहती हैं लग जाती है? कोई खास ट्रिक फॉलो करती है या यूं ही?
1: कुछ नहीं, बस लगाते हैं, दिल से लग जाती है आपकी आवाज।
0: अच्छा, दिल से लग जाती है। तो क्या करती हैं चांदनी जी आप?
1: हम तो बस घर पे रहते हैं, अपनी मम्मी की सेवा करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं।
0: और खुश रहती हैं? आपकी आवाज से लगता है कि आप बहुत खुश हैं।
1: ये मैम कभी खुश रहना नहीं चाहिए, क्योंकि खुश रहना हमारे जीवन का नियम है
0: एकदम।
1: और मैम गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसके बारे में हम कहना चाहते हैं, मतलब सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक घर से ना निकले, और हमें ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेना चाहिए, और हमें पेड़ों का भी संरक्षण करना चाहिए, और हमें गर्मी या ठंडी हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए। अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो हमें पेड़ लगाना भी चाहिए, अगर हमें पेड़ काटते तो उससे 2-3 पेड़ हमें लगा देना चाहिए।
0: हाँ चांदनी जी, एक बात हम कहना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग तो अपना ख्याल रख ही लेते हैं कहीं ना कहीं, अगर बहुत आवश्यक कार्य, अगर हमें बाहर निकलना है तो सिर पे कपड़े रख लीजिए, पानी की बोतल साथ में रखिए, पर कहीं ना कहीं जो जानवर होते हैं, हमारे पशु पक्षी हैं, इनका भी ख्याल रखना हमारी ही जिम्मेदारी है।
1: तो हमें अपने मतलब कहीं ऐसी छायादार वृक्ष देख कर हमें वहाँ पानी रख देना चाहिए, पानी के यहाँ सिर्फ पानी ही नहीं, कुछ खाने वाली चीज भी रख
0: देना चाहिए,
1: जानवर पानी पी कर कुछ खा ले तो उनका पेट भी भर जाएगा। हम ऐसा करते भी हैं।
0: एकदम करना भी चाहिए। और जिस तरह से हम अपनी, जैसे हम पानी पीते हैं तो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी तरह जब हम पक्षियों का पानी रखें या जानवरों का पानी रखें तो उसको भी हम बदलते रहें।
1: हमें मतलब सुबह अगर हम पानी रख रहे हैं तो उसे हमें दोपहर में बदल देना चाहिए, क्योंकि वो पानी गर्म हो जाता है, फिर अगर हम दोपहर में रख रहे हैं तो फिर सुबह वो पानी फिर चेंज कर दें।
0: एकदम सही बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही। तो आज आप किस
1: गर्मी ज्यादा चले, हमें मतलब जल्दी करना चाहिए, अगर हम कहीं देख रहे हैं ऐसे कोई पानी की टोटी है, ऐसी कोई चीज खुली है, तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए बिना कुछ सोचे।
0: बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा करना भी चाहिए, है ना। पर कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाले से ज्यादा उम्मीदें करते हैं और खुद पे ध्यान नहीं देते हैं।
1: नहीं, हमें सामने वाले की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, हमें जो भी करना चाहिए स्वयं से करना चाहिए, दूसरों की देख कर कुछ भी कोई काम नहीं करना चाहिए।
0: एकदम सही बात कह रही हैं चांदनी, हमें कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, खुद पर भरोसा रखना चाहिए और काम की पहल भी स्वयं ही करनी चाहिए। जी तो चांदनी जी, आज किस फिल्म का गीत सुनेंगी?
1: आज हम सुनेंगे सोल्जर मूवी का गाना, तेरा रंग बल्ले बल्ले।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार मैम, मेरा नाम उषा दुबे है।
0: उषा जी कहाँ से कॉल किया है?
1: मैं अयोध्या से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं टीचर हूँ तो और इस समय छुट्टी चल रही है, घर पे हूँ।
0: तो इससे पहले भी आपकी कॉल लगी है आकाशवाणी अयोध्या में?
1: जी जी।
0: हेलो अयोध्या कार्यक्रम
1: लगी थी।
0: जी जी। तो आज तो
1: दो तीन बार लगी है मेरी कॉल।
0: आज पर समय बहुत कम है इसलिए मैं आपका गीत नहीं सुनवा पाएंगे, हमने कहा सोचा मैं आपसे बात कर लूं।
1: ठीक है कोई बात नहीं।
0: जी
1: तो फिर कभी लगाएंगे तो बात हो जाएगा गाना।
0: एकदम एकदम, क्योंकि समय बहुत ही कम है, मैंने कहा बात कर लेते हैं।
1: ठीक
0: तो दोबारा कॉल करिएगा जी, इसी कॉल पे एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू।

आज के इस भावनाओं से सजी महफिल में आपकी आवाजों ने जो रंग भरे हैं, ये अपनापन इस जुड़ाव के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और हम बता दें कि इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी रूप से हमें सहयोग दिए विनोद कुमार चौधरी जी ने। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो अयोध्या का आज का सफर बस यहीं तक।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा कि आज के इस सफर में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस सफर में मैं हूं रिचा आपके साथ। और कार्यक्रम में ये पहला संदेश जो हम शामिल करने जा रहे हैं, ये आया है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, संजय ठींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मस्कीन, आष्टी जिला जालाना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, वेद प्रकाश मिड्ढा का ये संदेश आया है नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से, विनोद वंडलकर रायपुर छत्तीसगढ़ से, हुकुम करमरकर बिरडी मध्य प्रदेश से, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुर जिला श्री गंगानगर से, विजय सुरलकर का ये संदेश आया है मोताला महाराष्ट्र से, गजानन येले सिद्धार्थनगर दरियापुर से, और जाकिर मंसूरी का संदेश है बाजार रोड मुंसीसापुर से, और ये अगला संदेश है रविंद्र सिंह छाबड़ा नई दिल्ली टैगोर गार्डन से, राधेश्याम शर्मा गांव हांडी खेड़ा सिरसा हरियाणा से, और ये अगला संदेश आया है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, सतीश अनेजा चंडीगढ़ से, नाना लाम से मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़े से, फनीश कुमार चंदन सौगा धमतरी छत्तीसगढ़ से, शिव कुमार चौहान बाबा कुटी रायगढ़ से, राधा नामदेव का ये संदेश आया है सहारनपुर से, जगमोहन सिंह प्रजापत लहोडडा बागपत से, नरेश मल्होत्रा नीटू खैल बाजार पानीपत से, ओम प्रकाश राय कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, कमलकांत गुप्ता का ये संदेश आया है पिपरी से, और ये अगला संदेश है अरविंद कुमार का बेनी पट्टी मधुबनी बिहार से, और अगला ये संदेश आया है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी का नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म कामचोर से ये गीत।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश

0: लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
6: सखी सुनते हो कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
7: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनते। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
6: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
7: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
8: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
9: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। कार्यक्रम में अगला संदेश आया है प्रवीण श्रीमालिका कुंवर कॉलोनी बड़वा से, आफताब अंसारी गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से, मसरूर हसन गांव कुम्हार हीड़ा सहारनपुर से, और ये अगला संदेश आया है सुरेश गगनेजा का जलालाबाद वेस्ट से, निसार सलमानी धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, सुनील पाठक अनारकाली वजार जगराव से, राजेश कुमार वर्मा राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, विक्रम मालवीय गलवालोद आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, राहुल मनवर का संदेश आया है शाहूनगर यवतमाल से, संजय साहू पोटिया काला दुर्ग से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से, भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ का संदेश आया है उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, नारायण लाल साहू का ये संदेश है राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से, नीलू मेघ राजधानी रायपुर से, फागुराम कांकेर का संदेश है संबलपुर कांकेर से, उमा सिंह उत्तराखंड पौरी गढ़वाल से, दिलावर खान रघुवीर नगर, धीरज गुप्ता कस्बा उघैती, राजेश अकेला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, और ये अगला संदेश आया है राजेश खोबर खेड़े का शिवाजी नगर महाराष्ट्र से, राजेश वर्मा लाल कुर्ती रुड़की कैंट से, शुभचंद्र बाजाज कालका से, प्रताप पांडे कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से, सुभाष गोदारा गांव हीरावली फाजिलका पंजाब से, और ये अगला संदेश है बालकृष्ण शर्मा का नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म कुदरत से ये गीत किशोर कुमार की आवाज में।

कार्यक्रम में अगला संदेश जो हम शामिल करने जा रहे हैं यह आया है सतवीर सिंह बिजारनिया खारिया ढाणी से सिरसा हरियाणा से और कमल बालूजा का संदेश आया है मजनू का टीला से शाहजी बोडखे हिंगोली महाराष्ट्र से विनोद बारासा का संदेश आया है खोखारा वली श्रीगंगानगर से नवी हसन अब्बासी मारहरा दरवाजा एटा से राघव बघे लखान पंडरिया छत्तीसगढ़ से रविन्द्र मोहन दास किशनगंज बिहार से राजेंद्र नारंग बटीडा रोड डबवाली से और ये अगला संदेश आर कुमार बड़ी खेड़ा पंजाब से रमेश चंद्र चौहान जोधपुर राजस्थान से के आर साहू देवरी भाटापारा से बालकृष्ण क्षमा कीजिए बालकरण वर्मा बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से अनिल जैन मलियान सरधाना मेरठ से राजकुमार डूडी का ये संदेश आया है गांव फरासी हिसार से अगला संदेश मोहम्मद फरमान का आया है जिला मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से प्रवीण जोशी गुजरात गांधी ग्राम से देवेंद्र कुमार गुप्ता उगहती बगतायू से शमसूल कमर राही का संदेश आया है गंज डुंडवारा और ये अगला संदेश है माधव नामदेव का जबलपुर मध्य प्रदेश से मोहम्मद कलीम अंसारी गंज डुंडवारा से गोविंद वैष्णव ग्राम लसुडिया पाता नरसिंहगर राजगढ़ मध्य प्रदेश से चंद्रकांत साहू जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से मोहम्मद रफीक पंवार लक्कड़ बाजार खंडवा से और ये अगला संदेश अनिल कुमार वर्मा का सदर बाजार कुरावली से फहीम मंसूरी बादा उत्तर प्रदेश से और ये अगला संदेश है सदाशिव थोरात का आया है ग्राम देगांव पूना महाराष्ट्र से तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म धर्मात्मा से ये गीत

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। कार्यक्रम में अगला संदेश जो हम शामिल करने जा रहे हैं ये आया है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम का, और ये अगला संदेश रमेश कुमार कंबोज का गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से, धर्मेंद्र छिपा भोपालगढ़ राजस्थान से, विक्रम भड़वासरा का संदेश आया है कलाना राजस्थान से, और ये अगला संदेश है मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंठी बुलंदशहर से, राधेश्याम पांडे पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से, दातार सिंह गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, एम फारूक शेख का ये संदेश आया है गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, आरसी कामड़े जवाहर नगर दुर्ग से, सोमदत्त नाभा पटियाला पंजाब से, और ये अगला संदेश है दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से, उत्तम सिंह आर्य नगर कोहका भिलाई से, मोहम्मद इंतजार का संदेश है भोजपुर तगा सहारनपुर से, और ये अगला संदेश है बबलेश पवार का गांधी चौक बाड़मेर से, रमेश कुमार जाजूरिया का संदेश आया है पटेल नगर मलोट से, नंद कुमार ठाकुर चरौदा बार नवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, बब्बल मल्होत्रा मोहाली पंजाब से, ओम बगड़िया का संदेश आया है गांव बांडी वाला फाजिलका से, अशोक वर्मा जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, और शंकर लाल जायसवाल का संदेश आया है जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से, तुलसीदास पंचकूला चंडीगढ़ से, और ये अगला संदेश राजेश बनासिया का है भावखेड़ी जिला सीहोर से, सोमेंद्र यादव शंकरपुर उसामा बदायू से, अनोखे लाल मौर्य पुराना

शहर बरेली से और ये अगला संदेश रामचंद्र माखीजा का आया है छत्तीसगढ़ से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म साजन से ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में।

0: फिल्म में साजन के इसी गीत के साथ फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। दोपहर के 2 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
4: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: और भाई साहब क्या हाल है?
6: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे, बगल में डस्टबिन है।
5: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
6: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और

0: आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज, आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: कार्यक्रम गीतांजलि में अब आइए सुनते हैं भूपेंद्र और आशा भोसले की युगल स्वरों में ये गजल।

भूपेंद्र और आशा भोसले की गई इस गजल के साथ कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। दोपहर के 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का

0: जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्ट

0: अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 MHz FM बैंड पर और

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-168-377-347।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
5: आप सभी बच्चों को शेफाली दीदी का जय हिंद। बच्चों, गर्मी की छुट्टियां आप लोग की चल रही हैं और अगर आपके घर के कोई भी बड़े सदस्य गांव घूमने जा रहे हैं तो आप भी वहां अवश्य जाइए। आपको तो पता होगा ना कि फसल वगैरह खेतों में उपजाई जाती है, तो वहां जाएंगे तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह किसान मेहनत करके फसल उगाते हैं, अन्न उगाते हैं ना। गांव की हरियाली देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और वहां का वातावरण कितना स्वच्छ होता है। खेतों के अलावा वहां पशु पक्षियों का सुंदर दृश्य भी देखने को आपको मिलेगा। बच्चों, जब हम गांव जाते हैं ना तो देखते हैं कि किसानों का जीवन कितना संघर्षों से भरा होता है। गांव के लोग बहुत ही मेहनती और अतिथि का सत्कार करने वाले होते हैं। गांवों में पारंपरिक रीति रिवाज, लोकगीत, लोक नृत्य तथा मेलों का विशेष महत्व होता है जो हमारी संस्कृति की पहचान है। बच्चों, गांव में घूमना बहुत लाभदायक है, शिक्षाप्रद भी है। इससे प्रकृति के करीब रहने, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर जीवन की प्रेरणा मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ हवा और प्राकृतिक भोजन स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। इसलिए हमें समय समय पर गांवों को अवश्य घूमना चाहिए। इससे न केवल हमारा मन शांत होता है बल्कि हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हमें नई ऊर्जा भी प्राप्त होती है। गांव हमारी संस्कृति और सभ्यता के आधार हैं। हमें गांवों के विकास के लिए कार्य जरूर करना चाहिए ताकि वे और अधिक समृद्ध तथा विकसित बन सके। इसलिए कहा जाता है कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। बच्चों, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग 31 मई यानी आज ही के दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मना रहे हैं। तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर आपके घर में भी दादा, नाना, फूफा

0: कोई भी बड़े इसका सेवन करते हैं तो उन्हें जरूर रोकिए। बच्चों, नशा है निषेध, इस विषय पर कुछ बच्चों से बातचीत भी हुई है, आइए उनके भी विचार जानते हैं। प्रतिभागी हैं रोहन जो कि कक्षा 4 में पढ़ते हैं, अंजलि जो कि कक्षा 6 की छात्रा है, और अक्षिता जो कि कक्षा 5 में पढ़ती है। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: नमस्ते, मेरा नाम

0: को देते हैं।
1: मेरा नाम अक्षिता है, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। एक दिन अपने दोस्त के घर खेलने गई थी, लेकिन वहाँ कोई खेल नहीं रहा था, सब चुपचाप थे। फिर मैंने देखा कि उसके पापा गुस्से में चिल्ला रहे थे और उसकी मम्मी रो रही थी। मैंने बाद में अपनी दोस्त से पूछा तो उसने धीरे से बताया, मेरे पापा रोज शराब पीकर आते हैं, ड्रग्स लेते हैं। मुझे बहुत अजीब लगा। घर में आकर मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया, बेटा ये ड्रिंक्स होता है और ये बहुत बुरी चीज है। तब मुझे समझ आया कि नशा सिर्फ इंसान को नहीं पूरे घर को दुखी कर देता है।
2: नशा देखा समझ आया, ये तो दुख का साया है। हंसता घर भी रो जाता जब कोई इन्हें खो जाता। मम्मी ने जो बात सिखाई दिल में मैंने वही बसाई। नशे से हम दूर रहेंगे, खुशियों से भरपूर रहेंगे।
3: आज हम कुछ बच्चों के साथ,
4: अभी बच्चों ने बातचीत सुनी, नशा है निषेध। प्रतिभागी थे रोहन, अंजलि और अक्षिता। बच्चों, हमें किसी भी हालत में नशा नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी तनाव में हों। और बच्चों ने देखो कितने अच्छे ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए, इसके लिए इन्हें देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, बचपन जीवन का सबसे सुंदर और निश्चित समय होता है। इस समय बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है, लेकिन आजकल कुछ गलत आदतें बच्चों के बचपन को धीरे धीरे प्रभावित कर रही हैं। बच्चों की कुछ आदतें उनके लिए अहितकर होती जा रही हैं। आइए इसी विषय पर बातचीत सुनते हैं। बातचीत स्वयं डॉक्टर भालेंदु प्रताप सिंह भैया ने की है, जो कि जिला अस्पताल अयोध्या में बाल रोग विशेषज्ञ और किशोर स्वास्थ्य सलाहकार भी हैं। तो बच्चों, आइए सुनते हैं बातचीत।
3: आज हम
4: कुछ, और इसका विषय है बच्चों की बचपन को निगलती कुछ आदतें। प्रतिभागी बच्चे हैं ऋतुवी पांडे, आनर्वी दुबे और इफ्फत।
3: आज हम कुछ बच्चों के साथ बैठेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उनके लिए सही हैं या जो उनके लिए गलत हैं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बच्चों के बचपन को निगल जाती हैं। आज हम उसी पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज 3 बच्चे हैं जो डिफरेंट क्लासेस के हैं। अब आपको वो अपना एक इंट्रोडक्शन देंगे। बेटा, आप शुरू करें।
5: मेरा नाम ऋत्वी पांडे है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ और मेरी एज 11 ईयर्स है।
6: मेरा नाम आर्णवी दुबे है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ, मेरी एज 13 ईयर्स है।
7: मेरा नाम इफ्फत है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ और मेरी एज 13 ईयर्स ओल्ड है।
3: तो आज हमारे पास 3 बच्चे हैं जो 11 साल और 13 साल उम्र के हैं, और आज हम इनसे ही कुछ इनके बारे में पता करेंगे और उसी पे हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय पे निकल सके। तो सबसे पहले, अभी हम सभी बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चालू हो चुकी हैं। हाँ, हो चुकी हैं बच्चों?
8: हाँ, हाँ।
3: ठीक है।

0: तो गर्मी की छुट्टियां चालू हो सकी हैं, तो इस छुट्टियों में हमारा रूटीन क्या है सुबह से शाम तक? अब तीनों बच्चे हमको थोड़ा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। ऋतु बेटा पहले आप बताएं।
1: मैं सुबह 7:30 से 8 के बीच में उठ जाती हूँ, फिर मैं फ्रेश होकर के अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर हमें जो स्कूल की तरफ से हॉलीडे होमवर्क मिला है उसमें से कुछ पार्ट कम्प्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ अपना लेजर टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर अपना लंच कर लेती हूँ मैं 1:30 तक, उसके बाद मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती हूँ, और कुछ अगर मुझे सुबह के टाइम पे या दोपहर में भी कुछ एक्सरसाइज करनी हो वो कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं डिनर करके सो जाती
0: हूँ। गुड, नेक्स्ट बेटा।
2: मैं सुबह लगभग 7 से 8 के बीच में मैं भी उठ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मैं मम्मी के साथ थोड़ा टाइम बिताती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ, उसके बाद होमवर्क कंप्लीट करती हूँ, ऑलमोस्ट 12 बजे तक मैं अपना खाना लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कभी कभी सो जाती हूँ क्योंकि छुट्टियाँ चल रही होती हैं, फिर मैं उठती हूँ, बाहर जाती हूँ, थोड़ा बहुत खेलती हूँ, उसके बाद वापस आ जाती हूँ, फिर मैं डिनर करके सो जाती
0: हूँ। इफ़त आपका?
3: मैं सुबह 9:30 पे उठती हूँ और मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर खेलती हूँ, फिर उसके बाद मैं हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना ड्राइंग बनाती हूँ, फिर उसके बाद उसको करने के बाद मैं अपने भाइयों के साथ चेस खेलती हूँ, कैरम खेलती हूँ, लूडो खेलती हूँ, फिर उसके बाद लंच करती हूँ, लंच करने के बाद मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर, फिर उठती हूँ, फिर मैं बाहर जाती हूँ, खेलती हूँ आउटडोर, फिर उसके वहाँ से आने के बाद मैं ट्यूशन जाती हूँ, ट्यूशन का वर्क, फिर वहाँ से आती हूँ, ट्यूशन का वर्क करती हूँ, फिर मैं शाम टाइम में स्नैक्स कुछ खाती हूँ, फिर उसके बाद मैं डिनर करती हूँ, मैं सो जाती हूँ।
0: गुड, अभी आपने इन तीनों बच्चों की रूटीन एक्टिविटीज समर वेकेशन में सुनी, कुछ बातें आपको अच्छी भी लगी होंगी और कुछ बातें आपको अच्छी नहीं भी लगी होंगी, तो हमारे लिए इस समर वेकेशन में बच्चों के लिए एक अच्छा रूटीन सेट करना एक बहुत जरूरी है एज ए पेरेंट। तो सबसे पहले जो तीनों बच्चों, किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैं अर्ली मॉर्निंग में उठता हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल नहीं है इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते हैं। यही अगर हमारे स्कूल 7 o'clock होते तो अभी सारे बच्चे 6 o'clock तक उठ चुके होते। तो सबसे पहली बात है, अगर समर वेकेशन है फिर भी हमें सुबह 6 o'clock तक उठ जाना है। 6 o'clock उठने के बाद हमें अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्लूड करना है। जैसे आप मॉर्निंग वॉक में चले गए, आपने कोई गेम खेल लिया, आपने स्किपिंग कर ली, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आउटडोर की हो, ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और हमारी मानसिक विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। अच्छा, कुछ लोगों ने इसमें छुपाने की कोशिश की है, वो टीवी और मोबाइल पे भी काफी टाइम स्पेंड करते हैं। इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं होता, स्कूल का काफी टाइम हमारे पास घर पे खाली पड़ा होता है जिसमें हमारा बहुत सा समय टीवी और मोबाइल पे जाता है जिससे हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ता है। क्या ये सच है बच्चों?
4: Yes.
0: ठीक है, तो स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है उसको हमें कम करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी होंगी, लाइक दैट कि हम कुछ क्राफ्टिंग कर सकते हैं, कुछ गेम खेल सकते हैं, कुछ अपनी फाइन आर्ट एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं लाइक डांसिंग, पेंटिंग। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी को हम इंक्लूड करेंगे तो इस समर वेकेशन में हम कुछ नई चीजें सीखेंगे प्लस हमारा स्क्रीन टाइम भी काफी कम हो जाएगा। साथ में हम कुछ गेम भी जो हम खेल नहीं पाते थे उस गेम को भी समर वेकेशन में खेलने की कोशिश करेंगे, लाइक फुटबॉल, बैडमिंटन, ठीक है, बॉल। ऐसा आज कोई गेम नहीं है कि लड़कियां खेल सकती हैं, लड़के नहीं खेल सकते, या लड़की लड़कियों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। गुड ना, आप लोग के फेवरेट गेम क्या है बताएं?
1: मेरा फेवरेट गेम फुटबॉल और बैडमिंटन है।
0: आपका बेटा?
2: मेरा फेवरेट गेम बैडमिंटन है।
0: आपका?
3: मेरा बैडमिंटन एंड हॉकी।
0: गुड, तो ऐसा कोई गेम नहीं है, विमेंस टीम ने हमारे यहाँ जीता था ओलंपिक में और वर्ल्ड कप में भी जीता है हमारी विमेंस टीम ने। ठीक है, तो हमारे पास अभी गेम के बहुत से ऑप्शन है। साथ में हमें क्या करना होता है, अपनी बुक और रीडिंग हैबिट को भी बढ़ाना होता है। पेरेंट्स को चाहिए कि कुछ अलग अलग राइटर्स की अच्छी अच्छी बुक्स बच्चों को लाके दें, कुछ बच्चों को पढ़ के सुनाएं और कुछ बच्चों को टास्क दें कि आप दिन भर में इन बुक्स को पढ़ें, जिससे उनको एक तो रीडिंग हैबिट अच्छी बनेगी और साथ में उनको कुछ कई ढेर सारी नॉलेजेस भी मिलेंगी। ये हमारी एज ए पेरेंट्स जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को अच्छी ऑथर्स की अच्छी बुक्स खरीद के लाके दें जो कि उनकी डेली एकेडमिक एक्टिविटीज से अलग हो। साथ में मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज, इसको इंक्लूड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छी होंगी। इन सब चीजों को अगर हम इस समर वेकेशन में अपने रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो काफी बचेगा और हमारा काफी अच्छा मानसिक विकास होगा। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दोस्त। दोस्त बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम सभी के होते हैं। माता पिता तो हमें ईश्वर देते हैं, लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। कई बार दोस्तों का चयन अच्छा होता है जो हमें आगे बढ़ाते हैं, और कई बार दोस्तों का चयन अच्छा नहीं होता है और वो हमें गलत दिशा में ले जाता है। अब तीनों बच्चे हमें ये बताएंगे कि करके कि उनके दोस्तों की एज क्या है और उनके कितने दोस्त हैं। ऋत्वी बेटा,
1: मेरे दो दोस्त हैं और वो दोनों लड़कियां हैं, उनकी एज भी

0: 12 या 11 इयर्स ही है।
1: मेरी तीन दोस्त हैं, उनकी भी एज मेरी जितनी ही है और वो भी मेरी क्लास में पढ़ती हैं।
2: मेरी भी दोस्त लोग की एज कुछ अबव है कुछ, और मेरी सेम क्लास में है। और
3: देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मैंने क्यों पूछा कि क्या एज है आपके फ्रेंड्स की, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के जमाने में हम माता पिता को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उनकी एज 2 साल से ज्यादा एज गैप की ना हो। अगर मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 10 है तो उसकी एज 12 से लेके 8 के भीतर होना चाहिए, इससे ऊपर ना हो। कारण क्या है, जब एज बड़ी होती है तो उन बड़े बच्चों की एज के सोचने के तरीके अलग होते हैं, कई बार उनके सोचने के तरीकों के कारण उनके कार्यकलाप भी उसी तरह अलग होते हैं और उनका असर हमारे कम उम्र के बच्चों पर भी पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़े बच्चों के साथ हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अपनी उम्र के या अपने से 1-2 साल आगे पीछे, इससे ज्यादा नहीं। हम पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़े एज के ऐप के वाले बच्चे हमारे बच्चों के दोस्त हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दें, क्या वो किसी गलत डायरेक्शन में तो हमारे बच्चों को नहीं ले जा रहे हैं, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। साथ में हमको भी उन दोस्तों से दूरी बनाई रखनी चाहिए जो हमें कुछ चीजों को लिए गलत डायरेक्शन में ले जाए। वो क्या चीजें हैं, पहली चीज, अगर कोई दोस्त आपसे ये कहे अगर तुम्हारे में ये हिम्मत है तो ये करके दिखाओ, अगर ऐसा कोई दोस्त करता है तो वो हमें गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। दूसरा, अगर कोई दोस्त आपसे ये कहे कि ये बात मम्मी पापा को नहीं बताना है, इस तरह से भी दोस्तों से हमें काफी दूरी करनी चाहिए। कोई दोस्त आपको गलत चीजों के लिए उकसाए कि घर से पैसे लेके आओ, घर से ये लेके आओ, हम ये पार्टी करेंगे या वो पार्टी करेंगे, ये भी गलत आदतें हैं, ऐसे दोस्तों से भी हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि कौन सा दोस्त हमें सही डायरेक्शन में ले जा रहा है और कौन सा गलत डायरेक्शन में। समझ आया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि आप लोगों की इस समर वेकेशन या छुट्टियों में खाने पीने में क्या चॉइसेस है।
0: मुझको कुछ हेल्दी और कुछ जंक फूड में मंचूरियन या फिर मोमोज पसंद है।
3: हाँ बेटा,
1: मुझे भी फ्रूट्स पसंद है और बाहर की चीजों में मैं पानी पूरी ज्यादा पसंद करती हूँ।
2: हाँ, मुझे ज्यादा कर जंक फूड पसंद है, पिज्जा, बर्गर, चाउमिन।
3: आपने अभी सुना इन बच्चों का और यही सब बच्चों का हाल है। सब बच्चों को पता है जंक फूड नहीं खाना चाहिए लेकिन फिर भी वो मजबूर हो जाते हैं अपने मन के हाथों से और जंक फूड की ओर चले जाते हैं। इन सभी बच्चों को पता होता है हमारे फ्रूट्स अच्छे हैं, जंक फूड अच्छे नहीं है, फिर भी हमारा मन जंक फूड की ओर चला जाता है, जबकि सबको पता है फ्रूट्स आर बेटर ऑप्शन देन जंक फूड। ठीक है, तो इसी मन को हमें कंट्रोल करना है, जानते हुए भी कई बार हम गलतियां कर लेते हैं, तो इस गर्मियों में हम जंक फूड पे थोड़ा सा रोकथाम लगानी है। क्यों? क्योंकि इसी गर्मियों में जंक फूड खाने से ढेर सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि टाइफाइड और पीलिया, इसलिए हम घर के बने खानों पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्लस हमें उन चीजों पे फोकस करना है जिनसे हमारा हाइड्रेशन बहुत अच्छा हो, जैसे क्या हो गया, हमें घर पे बने हुए जूस, घर पे बने हुए शरबत, शिकंजी, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स पे। ठीक है, साथ में जो अभी फ्रूट्स मार्केट में मिल रहे हैं आम, लीची, तरबूज, इनको भी खाएं, लेकिन इनको रात भर पानी में अच्छे से डुबा के रखें, फिर अगले दिन खाएं, जिससे आपको इनसे होने वाले नुकसान कम मिले। हाइड्रेशन के लिए मैंने आपको बताया बटर मिल्क, छाछ, सत्तू, नींबू पानी, शिकंजी, इन सब का उपयोग अगर आप समय समय पे करते रहेंगे तो इससे आपके शरीर में गर्मियों में हाइड्रेशन प्रॉपर मात्रा में बना रहेगा और पानी की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट हम इन बातों पे बात करेंगे कि हमारे कुछ ना कुछ हमको लगता है कि हमारे व्यवहार में कुछ चीजें अच्छी हैं और कुछ चीजें अच्छी नहीं है, ये हम सभी को पता है और कई बार हम जानते हुए भी उस गलत व्यवहार को बार बार रिपीट करते हैं। तो अब आप लोग बताएंगे कि आपको अपने व्यवहार में क्या चीजें अच्छी लगती हैं और क्या चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। रुत्वी आप शुरू करें।
0: मुझे अपने व्यवहार में ये नहीं अच्छा लगता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं लेकिन मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, और अच्छा ये लगता है कि मेरी जो खराब चीज़ें हैं मैं उन पे काम करती हूँ।
3: गुड, आप बेटा आर्णवी?
1: मुझे ये नहीं अच्छा लगता जब मम्मी कुछ कहें और कभी कभी मैं उनसे लड़ाई कर लूँ या कुछ बोल दूँ।
3: गुड बेटा, आप?
2: मुझे ये लगता है कि मैं अपनी पेरेंट्स की कभी कदार बात ना सुनूं और उनकी उनके पे जाके मैं उनका काम नहीं करूं और वो जो कहें वो मैं ना मानूं, ये मुझे गलत लगता है।
3: आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पेरेंट्स को भी कभी कभी लगता है कि बच्चे हमारी बात ध्यान से नहीं सुनते हैं और हमारी बातों का या हमारा उतना सम्मान नहीं करते हैं जितना कि

0: हम अपने समय में अपने पेरेंट्स का सम्मान करते थे, ठीक है। तो ये समस्याएं आज हैं और छोटे बच्चों को ये पता भी है कि हम ये गलत कर रहे हैं, फिर भी वो कई बार वो गलत कर जाते हैं, ऐसा होता है।
1: निकट
0: तो हमें क्या चाहिए होता है कि हम तो पहले अपने बड़ों की बातें सुने। क्यों? क्योंकि वो जो कहते हैं वो किसके अच्छे के लिए होता है? गुड, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं जल्दीबाजी में, गुस्से में, बचपने में, लेकिन माता पिता हमें डांट के समझा के उसे सही करने का प्रयास करते हैं। हमें उनकी बातों को तब ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। वेरी गुड। हम एज ए पेरेंट्स, हमको भी ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम जो चाहते हैं हमारे बच्चे करें, हमको वो भी करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे जंक फूड ना खाएं तो हम भी जंक फूड ना खाएं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे एक दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें तो हम भी अपने बड़ों के साथ, मित्रों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। वही बच्चे देखेंगे और वही बच्चे सीखेंगे। डेली रूटीन में भी हमें वही सब कार्य करने चाहिए जो कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे करें, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें बच्चे हमारे हमी को देख के सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चों के सामने हमें एक आदर्श बन के प्रस्तुत होना चाहिए। आज के ज़माने में एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, कुछ बच्चे जो 10 साल 12 साल के ऊपर होने लग गए हैं वो गलत आदतों और गलत नशों में पड़ने लग गए हैं। वो गलत नशे कैसे हैं? जैसे बाहर की चीज़ों का कुछ सेवन करना, जैसे उसमें हो सकता है कुछ टोबैको जैसी चीज़ें, कुछ नशे वाली चीज़ें। तो आप अभी 12 साल के बच्चे हैं, 11 साल के बच्चे हैं, आप लोग ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने आसपास लोगों को क्या देखते हैं ऐसी चीज़ें यूज़ करते हुए? देखते हैं, ठीक है। तो जब आप उनको देखते हैं तो आपके मन में ये आना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं वो
1: गलत है,
0: हमको ऐसा चल के आगे नहीं करना है। इन सब चीजों से हमारा शारीरिक नुकसान होता है, प्लस हमारा दिमाग का भी बहुत नुकसान होता है, होता है कि नहीं? तो हमारे दिमाग में ये चीजें ना आए, तो ऐसे लोगों से, ऐसे व्यवहार से और ऐसे व्यक्ति से जो ऐसा सेवन कर रहे हो, उनसे हमें
1: बचना चाहिए।
0: वेरी गुड, दूरी बनानी चाहिए और
1: बचना चाहिए।
0: वेरी गुड। आज हम लोगों ने कुछ जो विषयों पे बात ही करी वो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें पता है, लेकिन कई बार क्या होता है, शीशे पे धूल जम जाती है और हम उसे ना साफ करें तो हमें अपनी शक्ल अच्छी नहीं दिखाई जाती। इसी तरह ये जो धूल हमारे ऊपर जम जाती है उसको समय समय पे हम साफ करते रहें तो हम अपनी कई गलत आदतों को सुधार के स्वयं ही अच्छे बन सकते हैं। आप तीनों बच्चों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी बच्चों ने बातचीत सुनी। बातचीत का विषय था बच्चों की बचपन को निगलती कुछ आदतें, और इनसे बातें कर रहे थे डॉक्टर भालेंदु सिंह, जो कि जिला अस्पताल अयोध्या में बाल रोग विशेषज्ञ और किशोर स्वास्थ्य सलाहकार भी थे। और प्रतिभागी बच्चे थे ऋतुवी पांडे, आनंदवी दुबे और इफ्फत। बच्चों देखो, भालेंदु भैया ने कितने अच्छे ढंग से बच्चों से बातचीत की और बच्चों ने कितने अच्छे ढंग से जवाब भी दिया, इसके लिए इन लोग को देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आज प्रेरक व्यक्तित्व में आपको बताने जा रहे हैं वीटी सावरकर के बारे में। वीटी सावरकर का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में भगु गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर तथा माता जी का नाम राधाबाई था। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। फर्गुसन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। उन्होंने प्रभावशाली पुस्तक हिंदुत्व हिंदू कौन है 1923 में लिखी और भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध का इतिहास भी लिखा। बातें तो आपसे होंगी ही संदेश की बात।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
6: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
6: और व्हाट्सएप नंबर 8303291911 पे जाए के ANG।

0: ये टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
1: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
2: बच्चों रोचक जानकारी में हम आपको कछुए जीव के बारे में अद्भुत तथ्य बताने जा रहे हैं। बच्चों आप लोग गांव जाते होंगे ना और गांव में कछुआ भी देखते होंगे, तो आज कछुए के बारे में कुछ बताते हैं। कछुए पृथ्वी पर लगभग 20 करोड़ वर्षों से मौजूद हैं, यानी ये डायनासोर के समय से जीवित हैं। और कछुए की पीठ का कठोर कवच उसे दुश्मनों से बचाता है। यह कवच उसकी हड्डियों से जुड़ा होता है। कुछ समुद्री कछुए हजारों किलोमीटर तक तैर सकते हैं और कछुए बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं और कुछ विशाल कछुए 100 वर्ष से भी अधिक जीते हैं। कछुए के दांत नहीं होते लेकिन उनकी मजबूत चोंच भोजन काटने में मदद करती है। समुद्री कछुए अंडे देने के लिए अक्सर उसी समुद्र तट पर लौटते जहां उनका जन्म हुआ था। ये धीरे धीरे चलते हैं लेकिन पानी में कई प्रजातियां बहुत तेज तैरती हैं। दुनिया में इनकी संख्या 300 से अधिक प्रजातियां इनकी पाई जाती हैं। कुछ कछुए कई महीनों तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं। और कछुए पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि समुद्र जल स्रोतों को संतुलित रखने में भी मदद करते हैं। अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। फिल्म है मिस्टर धोनी और स्वर है अनन्या नंदा, ए पृथ्वीराज। गीतकार है मनोज मंतसिर और संगीतकार है अमाल मलिक। तो बच्चों आओ सुनते हैं गीत।

0: बच्चों इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। शिफाली दीदी को दीजिए अनुमति। जय हिंद।
1: को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988809।

0: अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल जगत हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं और अब सुनते हैं केंद्रीय कृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: मन चाहे की
2: मन चाहेगी
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
4: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
4: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
3: कार्यक्रम मन चाहेगी
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की, गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आप सभी डोंगरगढ़ गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है,
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है,
5: पहले तुम,
6: पहले तुम,
5: पहले तुम,
6: पहले तुम,
5: पहले तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम।
6: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
5: अच्छा मैं कहती हूँ

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपने

0: ना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं।
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहती हैं। भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी, दतरेंगे छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में

इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। मनचाही

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए आप सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये एक गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डेजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो, इधर देखो, देखो ना, हाँ, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूँ 2 हफ्ते की छुट्टी ले लूँ। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाया तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुलारा सा नन्ना मुन्ना।

0: मैकेंजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूँ। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी,
0: डेजी व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की।
2: ओ

0: मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: भाई उसे दवा दी जा रही है।
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं।
2: तेजी,
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूँ मैं, आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कौन सा ज्यादा ठीक रहेगा?
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
2: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं ढो सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूँ। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
2: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूँ, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
2: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
3: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
2: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्योंडे जी?
0: जी हाँ।
3: भाई बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
3: अरे ऐसा क्यों कह रही हो डेजी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसी फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
2: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
3: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा।

0: ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
1: एक साथ घूमने लगेंगे?
0: हाँ?
1: आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छाटे होंगे।
0: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है? सो रहा है?
1: वो तो बहुत बीमार है। दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
2: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
0: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
2: वेल बट दैट डजंट मैटर डॉक्टर, स्लाइट फीवर ओनली, मैंने दवा दे दी है वैसे।
0: अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे को जरूरी काम है। चलो डेजी।
2: ओके
1: अच्छा
0: बाय डॉक्टर।
2: बाय।
1: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
3: जब तक जरूरी होगा।
1: मुझसे अब और नहीं सहा जाता, कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
3: अपने लिए।
1: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
3: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
1: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
3: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
1: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
3: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
1: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
3: डेजी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
1: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
3: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
1: बंद भी करो ये सब, बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
3: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
1: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
3: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है, और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
1: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
3: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
1: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
3: अपने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
1: तुम्हें क्या हो गया है?
3: तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
1: मिल गया संतोष।
4: मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
0: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
1: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
0: कैसी शंका?
1: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
0: डेजी तुम्हारे सवाल बड़ा विचित्र है।
1: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
0: नहीं।
1: मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
0: लॉरेंस को? नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
1: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
0: डेजी इसके कई कारण हो सकते हैं, पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
1: ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
0: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?

0: बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
1: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे, लेकिन वास्तव में डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
2: बोलो।
0: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
2: मैं?
0: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए।
2: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है। मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। I'm sorry.
0: Please, doctor, please, मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
2: डेजी नहीं, डेजी ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज डॉक्टर।
2: अच्छा चलो मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमके और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
3: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
2: डॉक्टर लॉरेंस?
3: ओ डॉक्टर रामदास,
2: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
3: बैठ जाइए
2: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
3: जी,
2: शायद ये सोच कर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
4: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
2: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
4: समझा नहीं?
2: कोई कुछ समझ न सके इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
4: यू मीन डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
2: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
4: डॉक्टर।
2: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
4: नहीं नहीं पता नहीं आप किसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
2: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
4: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
2: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट इट ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
4: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
2: तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए

0: गए, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझकर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
1: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
0: नॉट मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
1: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर।
0: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लेविंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
1: नो नो नो, क्यों डॉक्टर?
0: सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाथ क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस? ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
1: डॉक्टर, डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
1: सच है, सच है डॉक्टर। लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
1: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर।
0: क्योंकि न कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर रॉबिन्स, मैं अब चलता हूं।
1: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
1: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
1: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
2: लॉरेंस, तुम अचानक,
1: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
2: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
1: हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
2: मैं भी तुम्हें,
1: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
2: भुला दूंगी।
1: हाँ,
2: हमेशा के लिए भुला दूंगी।
1: हाँ, वो डेजी, मैंने अभी से कॉफी नहीं पी है।
2: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
1: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के मैं रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उससे किताब तोड़ दिया। मैं नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी सारी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने।

0: गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
0: जी,
1: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
0: जी,
1: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
0: जी।
1: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
0: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्र कवि प्रदीप जी के बारे में
1: जी।
0: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं?
1: मैं तो अच्छी हूँ।
0: मितुल जी, आप राष्ट्र कवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे?
1: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
0: अच्छा।
1: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
0: जी,
1: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
0: अच्छा जी।
1: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
0: ही हैं।
1: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
0: अच्छा।
1: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी
0: जी, बिल्कुल।
1: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
0: जी,
1: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
0: अच्छा जी।
1: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनके मैनेजर वो वहां पर थे
0: जी,
1: रावल जी।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु रॉय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
0: जी,
1: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
0: अच्छा।
1: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूँ, मैं तो कवि हूँ और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो

0: एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
1: बन गए थे। कौन से सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें
0: गया? कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी,
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल,
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी, एक्टर।
0: तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए और प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
1: तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार
1: की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप, एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: जी बिल्कुल, है ना? तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कभी प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में, तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत के जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती थी।
0: जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी, ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई, जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है, तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी,
1: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती
0: जी,
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी।
1: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई, और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना के दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा
0: नहीं थी जी।
1: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
0: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा, तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
1: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम

0: इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे. तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए. तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में. तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले.
1: अच्छा.
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे. तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए. तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: वो गर्म है.
0: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे. तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया.
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना.
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है. तो बात हो गई, पक्की हो गई. दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा.
1: अच्छा.
0: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो. नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं. वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा. आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा.
1: अच्छा.
0: मैं

0: प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी. मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग. फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ. तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था या उनकी क्या हाइट थी और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
1: जी.
0: और खैर वो तो बड़े इंसान थे लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया.
1: घर में एक आम पिता की तरह,
0: आम पिता की तरह
1: जी.
0: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी. तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से. तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी. इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
1: जी, बिल्कुल,
0: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण.
1: बहुत बड़ी बात. और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया
0: जी, जी.
1: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
0: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहां पर हुआ, मध्य प्रदेश में. लेकिन जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहां पर उनका घर था. तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद. मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे. तो वो इलाहाबाद में गए, वहां पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की. वहां पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे और बड़े बड़े जो वहां के नेता थे वो वहां पर रोज ही उनके वहां कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था. तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
1: जी,
0: वो उन्होंने वहां बहुत नजदीक से देखा. और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहां पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम

0: को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी।
1: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए दोस्त आए बापू के तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत।
1: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
0: जी।
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं नहीं देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
1: शब्दों की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
0: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
1: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
1: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो

0: भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात,
1: सही बात
0: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
1: बहुत ज्यादा, गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा तो वो आप देखिए कि बच्चों के भाषा में लिखा है,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है, आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है ये इस गाने के सिवाय वो
0: कोई गाना जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था, और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ। तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
1: यही
0: साबरमती
1: के संत तूने कर दिया कमाल।

0: हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना। लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूँ। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं,
0: भील जाति,
1: तो भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा।
1: तो वहाँ क्या होता

0: चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे. तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत. वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
1: जी.
0: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी. रामू वहां जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए. तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
1: जी,
0: वो कहीं नहीं मिलेगी. क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
1: नहीं है.
0: सारे गामा नहीं है,
1: कॉपी की भी नहीं है,
0: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है. ठीक है, तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए. फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए. तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
1: जी.
0: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है.
1: बिल्कुल.
0: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे. आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं.
1: बिल्कुल. वो दर्शन
0: के छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है. तो ये दर्शन के गीत और भी कई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान. हाँ, और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी. हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ,
1: दर्पण में
0: मुखड़ा देख ले दर्पण में. तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं. आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
1: सीरीज है उनके पास. हाँ, आज भी उनके
0: सुनते हैं लोग,
1: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद करते हैं. क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?

0: जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था, शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे। तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे,
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रवाह होता था जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत है जैसे देखते रहे संसार की हालत का, अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है मितुल जी। तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब

0: साहिब चा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के, देखो देखो आई का सरवा लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का, मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
1: अच्छा
0: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं, और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब लोग, तुम क्यों रो रही हो? मैंने बोला, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहां हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे नारे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आ रहा है और अपने मन को हम समझा लेते हैं
0: कि
1: अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में
0: कुछ लिखा है तो। और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि अब दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों के।
2: यह है आकाशवाणी का अयोध्या एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। आज सांध्यकालीन कार्यक्रमों में आपके साथ रहेगा 11:10 तक आपका रेडियो मीत अमरजीत, जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। समय मिलाइए, शाम के ठीक 5 बजे हैं और अब शुरू करते हैं युवा साथियों का प्रोग्राम युवा वाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त शिखा मौर्य और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और इसी के साथ आइए एक नजर डाल लेते हैं कि युववाणी कार्यक्रम में आज क्या है खास आप सभी के लिए। सबसे पहले चर्चा होगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर और मिशन लाइफ में ठोस अपशिष्ट को कम करना। वहीं दोस्तों, हम सुनेंगे एक भेंट वार्ता एक युवा कलाकार छात्रा रमा वर्मा से और भेंट करता होंगे शतक हुसैन। साथ ही दोस्तों, गीत संगीत के साथ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जानेंगे कंप्यूटर विजन के बारे में और सेगमेंट संस्था के अंतर्गत जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए शुरू करते हैं चर्चा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक धीमा जहर जो जानलेवा है उसे इतना आकर्षक और फैशनेबल क्यों बना दिया जाता है? मित्रों, यह एक कड़वा सच है कि तंबाकू का सेवन केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति को भी नष्ट कर देता है, जो दुनिया भर में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। और दोस्तों, यह सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के हर अंग जैसे आंख, किडनी व मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैंसर, टीबी और अन्य कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। वहीं दोस्तों, बात करें तो वर्ल्ड नो टोबैको डे की शुरुआत 1987 में WHO के सदस्य राष्ट्रों द्वारा की गई थी। 7 अप्रैल 1988 को इस दिन को पहली बार मनाया गया था और तब से हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दोस्तों लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले जानलेवा नुकसान के प्रति जागरूक करना है। और यह समझना भी बहुत ही जरूरी है कि धुआं रहित या फ्लेवर्ड उत्पाद भी उतने ही नुकसानदेह हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बना देते हैं और जीवन प्रत्याशा को घटा देते हैं। वहीं दोस्तों, बात करें तो धूम्रपान करने वालों में मुंह के कैंसर, मशूड़ों की बीमारी की समस्याएं भी काफी अधिक होती हैं, जो इस बात को याद दिलाती हैं कि तंबाकू के विनाशकारी प्रभाव और मुक्ति पाना आज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वहीं दोस्तों, बात करें तो इस वर्ष 2026 में वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला, जो इस बात को बताता है कि भ्रामक निकोटीन की घातक लत में फंसने वाली नई पीढ़ी को बचाना है कि कैसे निकोटीन उद्योग युवाओं

0: बच्चों को लुभाने के लिए आकर्षक फ्लेवर और नए उत्पाद विकसित करता है। तो दोस्तों, हमें अपने मित्रों को यह बताना होगा कि असली कूल दिखना तंबाकू का सेवन करना नहीं है, बल्कि हमें अपने स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करना है। और आज का दिन यह संकल्प लेने का है कि हम न केवल खुद बल्कि अपने परिवार व दोस्तों को भी इसके दुष्प्रभाव से बचाएंगे, साथ ही समाज व देश को भी तंबाकू मुक्त बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। तो दोस्तों, आइए इस लत को अपने जीवन से दूर करें और तंबाकू को कहें ना व जीवन को कहें हाँ। मित्रों, इसी के साथ हमारी अगली चर्चा है मिशन लाइफ में ठोस अपशिष्ट को कम करना। दोस्तों, मान लीजिए कि चलते चलते आपको चॉकलेट खाने की इच्छा हुई और आपने एक चॉकलेट खरीदी। अब आप उस रैपर का क्या करेंगे? क्या आप उस रैपर को डस्टबिन मिलने तक अपने पास रखेंगे या फिर सड़क पर ही फेंक देंगे? हालांकि पहला तरीका सही है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हम में से कई लोग रैपर को सड़क पर ही फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होगा जब हम सब ऐसा ही करने लगे और हमारा पूरा एरिया कचरे का ढेर बन जाए? वहीं दोस्तों, देखा जाए तो हम अक्सर सफाई की बात तो करते हैं, लेकिन कचरे के मूल कारण पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर से निकलने वाला छोटा सा कचरा भी इस विशाल एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित करता है? तो मित्रों, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करो और फेंको की संस्कृत ने ही कचरे के पहाड़ों को जन्म दिया है। लेकिन हमारे अंदर असल बदलाव तब आएगा जब हम कचरा ही कम करेंगे। और मिशन लाइफ हमें यही सिखाता है कि विचारशील और सचेत उपयोग, ना कि अंधाधुंध उपभोग। हमें सॉलिड वेस्ट को कम करने के लिए बस कुछ पहलुओं को अपनाना होगा। साथ ही ऐसी चीजें खरीदने से आपको बचना होगा जिनकी आपको सख्त जरूरत ना हो या जो केवल प्लास्टिक है। टूटी हुई वस्तुओं को फेंकने के बजाय उन्हें सजावट या किसी अन्य काम में लाएं और कचरे को ऐसे रिसाइकलिंग डिब्बों में डालें ताकि वह नई चीजों में बदल सकें। हमारी छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव करती हैं। जैसे खरीदारी के लिए हमेशा कपड़े या जूट के थैले का इस्तेमाल करें, साथ ही अपने साथ स्टील की बॉटल और टिफिन रखने की आदत डालें और स्थानीय रूप से बनी मौसमी चीजों का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आइए हम संकल्प लें कि हम कचरा कम से कम करेंगे, जो हम में से हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मिशन लाइफ को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि प्रकृति तभी हमारी रक्षा करती है जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी चर्चा मिशन लाइफ में ठोस अपशिष्ट को कम करना। और इसी के साथ आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता। एक युवा कलाकार से, वार्ताकार है रमा वर्मा और भेंट करता है सदक हुसैन।
1: युवा साथियों, आज के युवाणी के अंक में हम आपसे एक खास छात्रा से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है रमा वर्मा। आप एक युवा कलाकार हैं। सबसे पहले रमा, आपसे ही आपका परिचय जानना चाहेंगे।
2: यहाँ पे सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं वर्तमान में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की छात्रा हूँ। भातखंडे आने से पहले मैं अपने गुरु आदरणीय श्री देव प्रसाद पांडे गुरु जी से और डॉक्टर कल्पना एस बर्मन मैम से संगीत की शिक्षा ले रही थी।
1: आज आप बांसुरी अच्छा बजाती हैं, मेरे बगल में आपकी बांसुरी रखी हुई है सुंदर सी। ये बताइए कि कहाँ से प्रेरणा मिली आपको, कैसे शुरुआत हुई ये संगीत सीखने की?
2: बात अगर मैं कहूं कि संगीत की शिक्षा को ग्रहण करने का और शुरुआत की बात कहूं, तो मैं अपने पिताजी के साथ जब मैं छोटी सी थी तो मैं उनके साथ सोती थी, तो वो मुझे अल्फाबेट के थ्रू ABCD एक भजन सॉन्ग है हम साथ साथ में, उसके धुन के माध्यम से वो मुझे सिखाते थे। तो वो संगीत का जो आकर्षक है मेरी तरफ वो बढ़ता गया और वहाँ से मैंने शुरुआत की। और एक भजन भी उन्होंने मुझे सिखाया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जो कि मैंने पहली बार पटेल जयंती में परफॉर्म किया।
1: कितनी उम्र थी आपकी?
2: 8 साल की थी मैं जब गाई थी।
1: अच्छा, स्टेज पर परफॉर्म किया था?
2: जी जी बिल्कुल।
1: बहुत बढ़िया। तो एक लाइन सुन सकते हैं उसकी?
2: जी बिल्कुल।

0: वाह, बांसुरी ही नहीं एक अच्छी गायिका भी हैं हम कह सकते हैं। बचपन में आपके पिताजी से आपने कह सकते हैं उसका एक सीडिंग हो गई और कविताओं के माध्यम से आपने शुरू की
1: जी।
0: फिर उसका औपचारिक रूप से आपने इसकी शिक्षा कैसे शुरू?
1: मैं औपचारिक रूप से बात कहूँ तो भातखंडे से मुझे बहुत बड़ा माहौल मिला संगीत का। हालांकि मैं जब पहले सीखती थी अपने गुरुदेव श्री देव प्रसाद पांडे गुरु जी से, उनसे भी मैंने काफी कुछ संगीत में सीखा और उन्हीं के निर्देशानुसार मैं भातखंडे में आई और उसमें डॉक्टर कल्पना एस बर्मन मैम का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। उससे मैं आगे की शिक्षा ले पाई और भातखंडे में अभी मैं वर्तमान में सीख भी रही हूँ।
0: भातखंडे में एडमिशन लेना ही लोगों का सपना होता है संगीत की दुनिया के जो छात्र होते हैं
1: जी,
0: और आप वहाँ पर हैं और बहुत ही गुणी

0: वहाँ जो प्रशिक्षक हैं वो हैं और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात हैं, निश्चित रूप से आप एक अच्छे मंच के साथ जुड़ी हैं और वहाँ से आपको सीखने का अवसर मिल रहा है। देखिए बातचीत तो रमा हम बहुत सारे लोगों से करते रहते हैं, लेकिन जब किसी के पास बांसुरी है ना और वो गाता हो तो हम समझते हैं कि हमारे श्रोता भी जो युवा साथी हैं वो आपको उस रूप में सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। संगीत की दुनिया से जो आप जुड़ी हैं तो क्यों ना एक बांसुरी की धुन।
1: जी बिल्कुल, मैं अभी बांसुरी को धुन सुनाने से पहले मैं कुलदेवी उन पे एक आधारित अपने गीत के माध्यम से फिर बांसुरी पे वो धुन सुनाऊंगी आप सभी को।

0: वाह रमा जी, आप जब ये धुन बजा रही थी तो मुझे देवी जी का तो गीत है ही है, एक
1: जी जी।
0: लोक धुन का भी गीत याद आ रहा था, मनियन से धुरा
1: बिल्कुल,
0: तो वो भी इसी धुन पर गाया गया है। बहुत सारे और भी गीत गाए गए। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आप भातखंडे में सीख रहे हैं वो तो शास्त्रीय संगीत से जुड़ा होगा, और ये जो अभी हम सुन पा रहे हैं ये हमारी लोक शैली है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये दोनों चीजें कहाँ से आप तक पहुँच रही है?
1: पहले तो अगर मैं लोक संगीत की बात कहूँ तो ये मेरे पिताजी श्री शीतला प्रसाद वर्मा जी से मैं ग्रहण कर रही हूँ और अभी भी ले ही रही हूँ।
0: वो लोक गायक हैं?
1: जी बिल्कुल लोक गायक हैं। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मैं भातखंडे में डॉक्टर कृतिका त्रिपाठी मैम से सीख रही हूँ, और बांसुरी की शिक्षा की बात कहें तो मेरे गुरुदेव पंडित रवि शंकर जी से मैं शिक्षा ले रही हूँ।
0: कुछ परफॉर्मेंस भी हुई होगी क्योंकि भातखंडे से वो प्लेटफॉर्म भी दिए जाते हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं संगीत नाटक एकेडमी के मंच पे भी प्रस्तुति दी हूँ, अपने अयोध्या रामायण मेले में भी प्रस्तुति दी हूँ, और भातखंडे के साथ मुझे जाने का अवसर मिला यूथ फेस्टिवल में हरियाणा में।
0: सबसे ज्यादा अच्छा अनुभव कहाँ रहा?
1: यूथ फेस्टिवल में मैं जब गई वहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव रहा, जब मैं वहाँ पे प्ले की और उसके पीछे मैंने काफी समय तक रियाज किया उस धुन पे।
0: जिस पर आपको सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिला उसको हम सुनना चाहेंगे।
1: मैंने जो बजाई थी वहाँ पे, इस बांसुरी पे तो नहीं बजाया जा सकता, वो छोटी बांसुरी होती है हमारी, वो पास है भी नहीं, तो मैं दूसरी धुन सुना, धुन नहीं कहेंगे इसको, राग कहेंगे, राग मारो।

0: बहुत ही सुंदर राग मारवा में आपने धुन सुनाई, तो जरा इसके बारे में हमारे युवा साथियों को बताएं।
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत और गंभीर भावपूर्ण राग है, जो वैराग्य और विरह और चिंतन की भावना को व्यक्त करता है। इसमें वर्जित स्वर पंचम है और विकृत स्वर रे और तीव्र मध्यम है। ये दिन के चौथे प्रहर में गाया जाता है।
0: रमा जी, अभी आप कह रही थी कि जो वो परफॉर्मेंस थी वो एक छोटी बांसुरी पर थी
1: जी,
0: ये बांसुरी बड़ी है
1: जी,
0: तो जरा हमारे साथियों को बताएं कि अलग अलग साइज की बांसुरियों का क्या मतलब होता है।
1: हमारा शास्त्रीय संगीत बेस की बांसुरी पे होता है, जिसकी आवाज गंभीर होती है।
0: ये जो बांसुरी आप
1: जी, हाँ, ये हमारा बेस जी बेस का बांसुरी है और इसमें हम शास्त्रीय संगीत करते हैं। जैसे जैसे हमारी बांसुरियाँ छोटी होती जाती हैं, लाइट म्यूजिक की तरफ बढ़ती चली जाती हैं और उसमें लोक धुनें भी बजाई जाती हैं। तो जब भी कोई कलाकार होता है तो
0: इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बड़ी बांसुरियाँ हैं वो लो स्केल्स की हैं और जो छोटी बांसुरियाँ हैं वो हाई स्केल्स की होती हैं
1: जी।
0: तो उन्हीं के आधार पर इन बांसुरियों को हम बदलते हैं। हर व्यक्ति का अपने करियर को लेकर एक सपना होता है
1: जी।
0: आप भी बांसुरी के क्षेत्र में और गायन के क्षेत्र में काम कर रही हैं
1: जी,
0: और भातखंडे से शिक्षा भी ग्रहण कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे एलुमनाई आपके यहाँ हैं जो बहुत ऊंचाइयों तक गए हैं, है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उन्होंने प्राप्त की है। आपका क्या सपना है?
1: हमारे गुरु पंडित रविशंकर जी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम कलाकार के स्वरूप में मुझे दिखो, उन्हीं का सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। और वो मेरी भी इच्छा है कि मैं एक अच्छा कलाकार बनूं बांसुरी वादन में। पिताजी का कहना है कि गायन और वादन को दोनों को लेकर चलो, गायन वादन के बिना अधूरा है, वादन गायन के बिना अधूरा है। हम दोनों की आशाओं पे खरा उतरेंगे, यही मेरी मनोकामना है और उसको अच्छे से निभाऊंगी मैं।
0: उनके सपने आपके सपने मैच करते
1: जी बिल्कुल,
0: ये बढ़िया है, ये तो उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत ही खुशी की बात है हमारी ऐसी युवा साथी इस कार्यक्रम में जो अपने गुरुओं की और माता पिता के सपनों के साथ जुड़कर उस सपने को अपना सपना बनाती है। चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या सुनाना चाहेंगी?

0: वाह, ये मीठी मीठी धुने श्रोताओं आप सुन रहे थे सुश्री रमा वर्मा जो कि एक युवा कलाकार हैं। आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारे युवा श्रोताओं से संवाद ही नहीं किया बल्कि उनको अपनी बांसुरी की धुन और अपने कंठ से कुछ गीत भी सुनाए। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मित्रों, अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता। वार्ताकार थी रमा वर्मा और भेंटकर्ता थे सदक हुसैन। इसी के साथ अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
3: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
4: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर

0: मुख्य उद्देश्य था दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। साथ ही दोस्तों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना था, जहां संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्वास्थ्य, बाल कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक कदम उठाए। वहीं यूएन का स्काई ब्लू रंग का झंडा आज वैश्विक शांति और एकता का प्रतीक है और संयुक्त राष्ट्र के कार्य को चलाने के लिए इसके 6 मुख्य अंग भी है, जिसमें महासभा को इसे दुनिया की संसद कहा जाता है और यहाँ हर देश को वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है। वहीं सुरक्षा परिषद यूएन का सबसे शक्तिशाली अंग है जो देश के बीच आपसी विवादों को सुलझाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र आज एक ऐसी संस्था है जो सभी देशों को एक साथ जोड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ अब घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम से विदा लिया जाए, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि कल के कार्यक्रम में क्या है खास। चर्चा होगी वैश्विक अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस पर। वहीं करियर गाइडेंस सेगमेंट में जानेंगे नई राहें लड़कियों की शिक्षा और करियर। वार्ताकार होंगी कुसुमलता व भेंटकर्ता होंगे सदक हुसैन। इसी के साथ अपनी दोस्त शिखा मौर्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित किया गया। शाम के ठीक 5:30 हुए हैं। अब शुरू होता है लोक संगीत कार्यक्रम, इस पहले कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: पहला लोकगीत आइए सुने बलराम यादव और उनके साथियों से, ये कहरवा।

और अब लीजिए सुनिए अंजनी कुमार और उनके साथियों का गाया हुआ ये लोकगीत, जो कि एक निर्गुण है।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: आपकी बात कार्यक्रम में,
1: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
0: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
1: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
2: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
1: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
2: 830 321 99 11 पर भेज दें।

0: आम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सब का आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपने संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो ये मिड ब्रेक जो है कमर्शियल ब्रेक की वजह से प्रोमो के अलावा कुछ कमर्शियल विज्ञापन भी थे तो एक मिनट और बढ़ गया, यानी चार मिनट से पांच मिनट हो गया मिड ब्रेक। और अब दो लोकगीतों के बजाने का समय और मेरे पास है और अब आप सुनने जा रहे हैं ये खेमटा हीरालाल यादव और साथियों से।

हीरालाल यादव और उनके साथियों से आपने ये खेमटा सुना। अंतिम लोकगीत से पहले आपको हीट वेव यानी तेज गर्मी और लू से कैसे बचें इसके बारे में बता दें।

दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक तेज धूप से बचें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। चेहरे और सर को ढक कर आप निकले। हर आधे घंटे में हल्का ठंडा पानी जरूर पिएं। छाछ, नारियल पानी या नींबू पानी, ORS का घोल लेते रहें। 8 से 10 गिलास पर्याप्त मात्रा में पानी प्रतिदिन जरूर पिएं। खाली पेट घर से बाहर न निकले। चक्कर या कमजोरी महसूस होने पर तुरंत आराम करें। धूप में देर तक कार्य करने से भी बचें। इस मौसम में हीट वेव यानी तेज धूप और लू से बचाव ही सुरक्षा है। हल्के ढीले सूती और हल्के रंग के कपड़ों को पहनें। हरियाली और छायादार जगहों पर रहें। गरिष्ठ भारी भोजन, तेल मसालों से परहेज करें। शराब, चाय और कॉफी का प्रयोग कम से कम करें। शरीर में किसी भी असामान्य लक्षण होने पर डॉक्टर से या अस्पताल से तुरंत संपर्क करें। और अब आइए सुने लोक संगीत कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत। शहेंद्र राम मौर्य और उनके साथियों की आवाज में, ये भी एक निर्गुण है।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: इस विज्ञापन से पहले आपने कुछ लोकगीत सुने। लोक संगीत कार्यक्रम में आकाशवाणी अयोध्या FM से 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। शाम के 6 बजने वाले हैं दिल्ली से। बस कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और 6:05 से अंग्रेजी में।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
4: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
4: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
3: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। PM स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को PM स्वनिधि के ऋण चेक और QR कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य

भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तो महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह के साथ लता मंगेशकर की भी आवाज थी इस गाने में।
1: अपना रंग जमाता जा, हो दीवाना तू, हे हे, मस्ती में लहराता जा।

0: तो महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह के साथ लता मंगेशकर की भी आवाज थी इस गाने में।
1: अपना रंग जमाता जा, हो दीवाना तू, हे हे, मस्ती में लहरा।

0: पहली बार एक फौजी का बेटा चला है तन के, पहली बार एक फौजी का बेटा चला है तन के, पहली बार
1: शाम सुहानी आई खुशियां बन गए, पहली बार आज कई वर्षों में।
2: तो हमारे जो पुराने श्रोता हैं कई वर्षों से आकाशवाणी अयोध्या फैजाबाद को सुनते थे, तो उनको पता होगा कि एक प्रोग्राम फिल्म संगीत का होता था 30 मिनट का। उसमें हम लोग एक ही रंग के इसी तरह के गाने सुनवाते थे, कभी बिंदिया से कभी पायल से, टाइटल ट्रैक चलवाते थे उसमें, और एक से बढ़कर एक गाने आप सुनते थे। लेकिन आज 10 मिनट का ही समय है तो शाम के नाम से बस दो ही गाने चल पाएंगे। गाने तो मेरे पास बहुत हैं। समीर का लिखा हुआ ये गाना आ गया आपके पास संजीव दर्शन के संगीत में, अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज़ में।

तो ये गाना है आपके पास कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ का। रहिएगा मेरे साथ आज 11:10 तक। स्पोर्ट्स दुनिया से खेल खाड़ी प्रोग्राम भी है और शेर और शायरी का शेर और गीत प्रोग्राम भी है 8:15।

का याग्निक कुमार सानू और उदित नारायण के गाए हुए इस गाने के साथ ही आज का शाम सुहानी प्रोग्राम समाप्त करने की अपने रेडियो मित्र अमरजीत को दीजिए इजाजत। आप सब हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे बस याद रखिएगा। अपना और अपनों का सबका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।

तो बॉलीवुड फिल्मी गानों का ये था इस्तेमाल प्रोग्राम शाम सुहानी आकाशवाणी अयोध्या एफएम से 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर।

आकाशवाणी अयोध्या एफएम की स्टूडियो वॉच में शाम के 6:19 और 50 सेकंड होने जा रहे हैं। बस कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार होंगे। संस्कृत में समाचारों का कुछ पल इंतजार कीजिए।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत शासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सद्य एव नीदरलैंड देशस्य यात्रावधौ चोल कालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री आतपात् आत्मानं संरक्षितुं पारंपरिक पेय पदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिगतः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोल साम्राज्यस्य सामुद्रिक शक्तिं दक्षिणपूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञान भारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे षष्ठ सप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिकाः अपि प्राप्ताः।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्म ऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्त मात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्य

0: संतापाद रक्षणोपायान स्वीकृत्येव गृहात बहिर्गन्तुं परामर्शम अददत्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात् रक्षणं प्राप्तुं आमपन्नं तक्रं सत्तुपेयं बेलपन्नं पानकं नीरमोर सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनं हितकरम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेय पदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां अनुभवः निहितः अस्ति।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री रांची नगरे आयोजिताः राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीड़ा संघ प्रतियोगितायाः अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्याम् प्रतियोगितायाम् प्रायः अष्टशताधिक क्रीडकाः भागम् गृहीतवन्तः। श्रीमोदी गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारः चेत्येतेभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। असौ शत मीटर मितायाम् धावन प्रतियोगितायाम् विजेतृभ्याम् गुरिन्दर वीर सिंहः तथा अनिमेष कुजूर चेत्येताभ्याम् सह अपि संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तम् यत् खगोलशास्त्रम् देशस्य प्रत्येकम् जनेषु जिज्ञासाम् जनयति। तेनोक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशे शीघ्रं लोकप्रियं भवति। श्रीमोदी युवानः खगोलशास्त्र समूहे सम्मिलितुं तथा अवकाश कालावधौ तारामण्डलं द्रष्टुं प्रेरितवान्। प्रधानमंत्री उत्तरप्रदेशस्य एकस्मिन् कुल्यां गंगा डॉल्फिन प्राणिनः रक्षण सम्बद्धस्य लघु चलच्चित्रस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। तेनोक्तं यत् नमामि गंगे अभियानस्य अन्तर्गतं निर्मिता भारतस्य प्रथमा गंगा डॉल्फिन उद्धार एम्बुलेंस अस्मिन् कार्ये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। श्रीमोदी अवदत् यत् गंगा डॉल्फिन संरक्षणेन नद्याः जैव विविधतायाः तथा अमूल्यायाः प्राकृतिक धरोहरायाः संरक्षणमपि भवति।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: नूतनः सीडीएस इति प्रमुखः रक्षाध्यक्षः लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणिः अद्य उक्तवान् चिंतने कर्मणि च नवोन्मेषः सैन्य सामर्थ्यानां विकासं त्वरितं करिष्यति। देशस्य नूतनस्य प्रमुख रक्षाध्यक्षस्य पदं स्वीकृत्य वार्ताहरैः सह संवादे जनरल सुब्रमणिः अवदत् यत् सशस्त्रबलानि राष्ट्रहितसंरक्षणे निरन्तरं व्यावसायिकं कार्यसञ्चालनसम्बद्धं निर्णायकं च प्रदर्शनं विहितवन्तः। ते भारतस्य सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च रक्षणाय दृढसंकल्पाः सन्ति। अद्य प्रातः नवदिल्लीस्थे साउथ ब्लॉक प्रांगणे प्रमुखाय रक्षाध्यक्षाय गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानः प्रदत्तः। तेन राष्ट्रीय युद्ध स्मारके पुष्पांजलिरपि समर्पिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा उक्तं यत् स्वस्य सेवा प्रदातुः ऑन मार्क पोर्टल इत्यस्यान्तर्गताः ये दोषाः अधुना सार्वजनिकरूपेण आगताः तेषां विषये सा सावधानतया निरीक्षणं करोति। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे सीबीएसई उक्तवान् यत् विविध सर्वकारीय संस्थानां तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानां साइबर सुरक्षा विशेषज्ञानां दलं गतदिनेषु एतासां प्रणालिनां सुदृढीकरणाय तथा तन्त्रांशं सुरक्षितुं नियुक्तम् अस्ति। सीबीएसई अपि सूचितवान् यत् अभिज्ञाताः दोषाः नियन्त्रणाधीनाः कृताः, सहैव अन्यासां सम्भावितानां त्रुटीनां निवारणार्थं गभीरा समीक्षा क्रियते। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन अद्य नौसेनायाः 27वें प्रमुखत्वेन पदभारं स्वीकृतवान्। असौ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इत्यस्य उत्तराधिकारी अभवत्। एडमिरल स्वामी।

0: नाथेन उक्तम यत् नौसेना समावान पूर्णे जटिले अनिश्चिते च वातावरणे सक्रिय रूपेण कार्यं कर्तुं प्रवृत्ता अस्ति। सावदत्य नौसेनायाः आधुनिकीकरणं क्रियते येन उच्चतम स्तरस्य युद्धक्षमता सुसज्जिता भविष्यति। अस्मिन् अवसरे निवर्तमानः नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी देशस्य नौसेनायाः नेतृत्वं गौरवपूर्णम् अभवत् इति अवदत्। स प्रोक्तवान् यत् पश्चिम एशियायाः वर्तमान स्थितेः मध्ये भारतीय नौसेनायाः प्रतिबद्धता व्यावसायिकता च अक्षुण्णा एव स्तः। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवोचत् यत् अमेरिका ईरानेन सह परमाणु सन्धेः सन्निकटः वर्तते, तथापि तेन सञ्चेतितं यत् यदि संवादो विफलः भवेत् चेत् सैन्य कार्याचरणस्य विकल्पः अपि तत्परः स्यात्। श्रीमता ट्रम्पेण उक्तं यत् ईरानाय कदापि परमाण्वस्त्र निर्माणानुमतिः नैव प्रदास्यते। तेनाश्वासितं यत् सन्धिः जाते सति होर्मुज जलडमरू मध्ये इत्येतत् शीघ्रम् उद्घाटयिष्यते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति श्रृंखलायाः निर्णायक स्पर्धा भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन विजिता। निर्णायक स्पर्धायां भारतीय दलेन इंडोनेशियायाः मोहम्मद शोहिबुल फिक्री फजर अल्फियान इत्यनयोः युगलम् 18-21, 21-17, 17-16 इति अंकांतरालेन पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां निर्णायक स्पर्धा अद्य अहमदाबादस्य नरेंद्र मोदी क्रीडांगणे भविष्यति। क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरंभः सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।
1: आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के अयोध्या एफएम से बोल रहे हैं 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। गूंजे स्वर गांव के लोकगीतों का एक कार्यक्रम सुनिए। लोकगीत हम आपको शाम 5:30 भी सुनवा चुके हैं और आप लोकगीत कृषि जगत और किसानवाणी कार्यक्रम में भी सुनते हैं शाम 6:45 से और दिन में 12:30 भी आप लोकरंग कार्यक्रम सुनते हैं लोकगीतों का। बस पहले कमर्शियल ब्रेक के बाद गूंजे स्वरगांव के कार्यक्रम सुनिए।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
3: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 98-39-56-31-29 व 96-82-075-221।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: लोक संगीत कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे लोकगीत, और इस कार्यक्रम का नाम था गूंजे स्वर गांव के। जब एक ही तरह के कार्यक्रम होते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो इस तरह से कभी कभी जो टंग स्लिप हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। चलिए समय बताएं आपको, 6:45 हुए हैं आकाशवाणी अयोध्या FM की स्टूडियो वॉच में, और अब आइए सुने कृषि जगत कार्यक्रम।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: सुनिए
3: कहिए कहिए
4: सुनिए भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: अरे पंचम देखा आप सब ही जब बीच में आ जाती हमारे सबके साथ है ना तो भाई मन बिल्कुल गदगद हो जाता है और हो भी काहे ना। देखा आपसी भाईचारा आपसी प्रेम व्यवहार आपसी सद्भाव जब एक दूसरे से मेल मुलाकात होते है ना तो बिल्कुल ओमान समझ लिया जो अपन प्रसन्न हो जाते हैं। और जहाँ तक अपने पेटरिया माँ अपने सबके बदे काव काव लेके आए बटन तो ओका बताई दी आप सबन का। देखा पंचो अपने पेटरिया माँ हम आप सब हिताएं विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में भाई बताऊ। इसके अलावा एक जानकारी के विषय रहे एक प्रगतिशील कृषक से बातचीत जोन के बारे में बताई है जोन गन्ने की सहफसली खेती उड़द के साथ है। यही के साथ ही साथ भाई अगर मन मनसावन न करवा जाए तो भी बात ना बनत। जहाँ तक पंचो अपने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बात करी ना तो आज यानी 31 मई का अपने सब विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनावा जाता है। देखा कोनो भी अपने भीतर जब लत कोनो मेर के लाग जाते ना तो का उकरे बारे में सही सचेत करे बारे में जागरूक करे बारे में हर केहू का चाहे कि भाई सचेत कीन जाए जागरूक कीन जाए जोने की वह लत का जो है अपने सब छोड़ा जा सके। और पंचों देखा ये जैसे तंबाकू जो चीज होता है ना ये अपने सेहत बदे बहुत ही नुकसानदायक होते है यानी घातक कहा जा सकता है। और अपन देहिया जब स्वस्थ रहे निरोग रहे तब समझ लिया सगरो चीज अपन घर परिवार के व्यवस्थित रूप से चलत रहा था है कि ना पंचों। तो ऐसा कोनो चीज अपने भीतर भाई कोनो आदत का ना पन पे दे अपने सब है अपने गेद के धारण के भीतर ना पन पे दे कि जोने से अपन स्वास्थ्य बिगड़े उकरे साथे साथे जोन पारिवारिक स्थित है आर्थिक स्थित है वह माँ भाई दिक्कत आवे। तो पंचो यह मेर के कोनो लत अगर केहू के भीतर हुए तो उका छोड़े के प्रयास करे चाहिए हर एक मेर से और जहां तक हो सके भाई उका अवहिन ना दे अपने भीतर। कहे से पंचो यह मेरे के कोनो भी लत अगर अपने सबके भीतर लाग जाता है ना तो हम तो देखे हैं ना कि बहुत दयनीय स्थित कभो कभो आ जाता है। एक तो रोग भी आदमी मेर का घेर लेता है और दूसरे जो अपन आर्थिक स्थित है वह पर ही नाचावे लागत है। और यही के साथ ही साथ पारिवारिक दृश्य अगर देखा जाए तो जैसे मान लिया हम कोनो लत अपने भीतर डारे हैं तो अपन आवे वाली पीढ़ी जोन है यानी अपने गेद गेदारा हैं अपने परिवारिक सदस्य जोन बाटिन तो उन्हों के भीतर यह मेर के भाई आदत आवे लागत है। काहे से जब कहा थी ना कि जब देखत है कोनो चीज मने साक्षात रूप में अपने सामने होत तो का ग्रहण करे में देर ना लागत। तो यही मेर के पंचो कोनो अपने सब लत ना लागी बल्कि जोन है अपने सबका चाहिए कि बढ़िया बढ़िया तरीके से अपने गेद गेदारन का सजुक रखा जाए जागरूक रखा जाए बढ़िया बढ़िया आतन का उनके भीतर डाला जाए तो जोन है कि अपन भाई घर परिवार में जोन गेद गेदारा है उन्हों खुशहाल रहा है अपन परिवार भी खुशहाल रहा है। और परिवार का खुशहाल रखे बदे अपने सबका चाहे खेती पाती भी बढ़िया तरीके से की जाए। और एक प्रगतिशील कृषक भैया रहिन जोने से बतियान बाटे अपने आलोक कुमार गुप्ता भैया और ये बतियान बाटे गन्ने की सहफसली खेती उड़द के साथ है। तो कमलाकांत पांडे भैया काव बतावत बाटी निकले बारे माँ तो उन्हीं से अपने सब जाना जाए हमहू जानी अपन पंच भैया लोग भी जाने चला।
1: पंचों जैसन अभी आप सुनिन अपने सबके बीच माँ श्री कमलाकांत पांडे भैया आवा हैं। आप ग्राम और पोस्ट समयसा ज्ञानापुर जनपद अयोध्या से हैं। सबसे पहले तो भाई कमलाकांत जी आपके अपने पंचेती में स्वागत है। आप एक प्रगतिशील कृषक हो खेती करत हो आपके अनुभव है वह का आज अपने पंचन से साझा करे के समय है। अगर देखा जाए तो गन्ना तो भाई बोवाई जात है और आपो बोवत हो लेकिन सहफसली की अगर हम बात करवे तो गन्ना के साथ ही साथ का कुछ लगावत हो?
2: गन्ना के साथ में तो वैसे कई चीजें लगाई जा सकती हैं लेकिन हमने जो किया है वह उड़द का गन्ने के साथ उड़द की बुवाई किए हैं जो बहुत बढ़िया हमको लगा। मिट्टी की तैयारी खेत की तैयारी जो कुछ भी हम करते हैं वो गन्ने की फसल में करते हैं ये तो फ्री में हमको मिल जाता है उड़द जिससे हमको लागत से ज्यादा कहीं मिल जाता है हमको।
1: अच्छा जैसे फसली की अगर बात की जाए आप जिस करत भी हो तो यह के अनुभव आपके कहां से मिला जैसे कहूं से पूछे हो है या कोनो अपने गांव गिराव में करत है?
2: यह पहले से भी चल रहा था हमको जानकारी भी थी सहफसली होती है लेकिन इस समय ये छोटा जानवर जो है नीलगाय या बछिया बछवा इस वजह से नहीं कर पाते थे। अब की बार हम थोड़ा सा करीब 30 बीघा जमीन उसमें झटका मशीन लगाए हैं जिस वजह से हमको ये प्रोत्साहन मिला कि हाँ हम इसमें कुछ गर्मी वाली और भी फसल कर सकते हैं।
1: अच्छा जैसे झटका मशीन के बात की हो तो पर एक बात हमारे दिमाग में

0: 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: पंचो जय हिंद।

0: रावत बैठे तो का ऐसे अपने जौन जानवर है उनका तो कोनो नुकसान नहीं होता?
1: कोई नुकसान नहीं, ना जानवर को नुकसान है ना आदमी को नुकसान है। बस वह केवल सचेत कर देता है, झटका नाम है उसका कि एक बार झटका मारेगा उसके बाद आप सचेत हो जाइए, वहाँ भी नहीं जाते हैं, जानवर भी बहुत कम जाते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, माने कोनो पेड़ के नुकसान न हो पाए का, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा खेत के तैयारी है उसके साथ साथ चुनाव है, इसके बारे में भी अपने पंचन से कुछ साझा करें अपन।
1: गन्ने की बुवाई के लिए खेत की गहरी जुताई वैसे भी सामान्य रूप से की जाती है,
0: बिल्कुल
1: जुताई कई बार की जाती है जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए, खाद वगैरह उसमें जो कुछ भी आप कंपोस्ट की खाद गोबर की खाद जो कुछ भी डालना चाहें वो भी डाल देते हैं। उड़द के लिए उसमें हमको अलग से कहीं कुछ नहीं डालना पड़ता है।
0: बहुत बढ़िया।
1: और गन्ने के साथ उड़द जो है उसमें वैरायटी थोड़ा सा ध्यान देना होता है, जैसे हम जो लगाए हैं वो भूरा उड़द लगाए हैं, तो वो जो है 8 से 10 किलो प्रति एकड़ बीज लगता है।
0: अच्छा, माने 8 से 10 किलो
1: प्रति एकड़।
0: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे जो भूरा उड़द की बात कहा तो ये के दिमाग में कैसे आवा आपके?
1: ये सबसे अच्छा होता है, खाने में बढ़िया होता है,
0: मतलब आपके अनुभव है?
1: अनुभव है हमारा।
0: बहुत अच्छी बात है। एक पहलू आपकी हो, वो
1: पहले भी करते थे, जब से जानवर वाली दिक्कत आ गई थी तब से नहीं करते।
0: माने कि यह बार फिर
1: पहली बार अब की बार मैंने चना की बुआई भी किया था।
0: जब उनका स्थिति रही ओके
1: ठीक रहा,
0: बढ़िया रहा,
1: बढ़िया रहा, उत्पादन भी बढ़िया रहा।
0: अच्छा, एक चीज और बताओ चले कि सह फसली में चाहे गन्ना के साथ उड़द लीन जाए, तमाम बेर की सब्जी भी लीन जाते और भी चीज लीन जाते, जैसे कोनो अपने पैदावार पर जो मुख्य फसल है वो पर तो प्रभाव नहीं पड़ता?
1: नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फरवरी के लास्ट वीक से और मार्च के पहले सप्ताह तक इसकी बुआई का उचित समय होता है, जो 65 से 70 दिन की फसल होती है उड़द वाली। अब वो लगभग लगभग फली आ चुकी है उसमें सब, हमको लगता है कि 10-12 दिन 15 दिन में उसकी कटाई हो जाएगी।
0: माने मान के चला जाए कि लगभग जून के पहले हफ्ता में एक ही कटाई की स्थिति बने,
1: स्थिति बन सकती है जी।
0: बहुत अच्छी बात है। कटाई के बाद का कुछ एक भंडारण के प्रति आपके तरीका रहा है या एक विक्रय के प्रति का तरीका रहा था, थोड़ा ओका बताओ।
1: थोड़ा बहुत तो खाया जा सकता है, उसके बाद तो विक्रय की व्यवस्था रहती है खेती में, तो इतना ज्यादा है नहीं। 2 बीघे की बुआई किए हैं अब की बार हम ट्रायल बेस पे, लेकिन हमको अच्छा लगा है अब की बार ही। पैदावार जो होगी वो तो लास्ट में पता चलेगा कितना पैदावार आई, लेकिन देखने से लग रहा है कि वो अच्छी पैदावार देगी।
0: बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये हम समझे थे कि बहुत अच्छी बात है सहफसली के, अगर हम बहुफसली के तरफ थोड़ा सा आपसे जाना चाहिए कि कबो कबो सहफसल में फिर लोग लेके बहुफसली के बात करते हैं अपने तमाम पंचे, तो उसके बारे में कुछ कहा चाहिए?
1: बहुफसली के बारे में हम ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहेंगे कि सहफसली में एक ही फसल और ले लीजिए आप, वही उतना उसी को आप कायदे से देख लीजिए, वही बहुत है, बहुफसली नहीं होगा।
0: बहुत बढ़िया। माने कि कबो कबो हम यह हमारे आपसे पूछें कि तमाम पंचे एक साथ कई चीज बजाए तो लीन, लेकिन अब होत का है कि वहमन नुकसान हो के संभावना बढ़ाते है,
1: देख रेख उसमें करनी पड़ती है।
0: हाँ, उतना
1: एक फसल है तो उसको आप देख लेंगे, कई फसल है तो सबका तारतम्य वो भिड़ नहीं पाता बढ़िया से।
0: बिल्कुल सही कहते हैं कमलाकांत जी, और अपने सबका वह तरह के कार्य करे चाहिए, चाहे खेती है चाहे अपन जौन भी जिंदगी है, कि जितना समाच सका जाए उतने ही काम
1: उतने करना चाहिए, जितनी चादर हो उतने पांव पसारी है।
0: बिल्कुल। अच्छा, गांव में आपके थोड़ा जाना चाहिए जौन आप समयसा से हो
1: जी,
0: तो खेती की क्या स्थिति है वहाँ?
1: खेती की स्थिति बढ़िया है,
0: और भी लोग
1: और भी लोग कर रहे हैं
0: अच्छी खेती
1: किए हैं, तमाम लोग ये भी किए हैं कि हमारा वाला देख के तब वो करेंगे अगले साल कि भैया भाई वो गन्ने में उड़द की खेती किए हैं, देखते हैं अगर बढ़िया रहेगा तो हम भी करेंगे इसको।
0: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, खेती के तारतम्य का बनाए रखे के बदे अपने तमाम विशेषज्ञ भैया देखो अपने सबके बदे शोध अनुसंधान करत है, नई नई तकनीक के ऐजाद करत है, तो का वह से कुछ अपडेट होए के लिए कृषि विज्ञान केंद्र या नरेंद्र देव कृषि विद्यालय कुछ जाए के हो पावत है आप सबके?
1: पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, समय देते हैं अगर तो उसका कुछ न कुछ रिस्पॉन्स मिलता है।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: बहुत सही कहा था, माने कि अगर अपने समय का कुछ अनुभव लेखे तो वहीं जाए पड़ेगा।
1: बिल्कुल जाना पड़ेगा,
0: है ना,
1: कुएं के पास जाना पड़ेगा। हाँ, कुआं नहीं आएगा
0: है, तमाम विशेषज्ञ भैया लोग आवत रहते हैं, है ना,
1: कुमारगंज यूनिवर्सिटी है और यहाँ के बीके पे भी है।
0: बिल्कुल
1: ऐसे कार्यक्रम हुआ करते हैं, कभी कभार तो वो लोग गाँव पे भी आ जाते हैं, प्लाट पे भी देख लें
0: बहुत अच्छी
1: बुआई की गई है, कैसा है, कुछ किसान भी उसमें जुड़ जाते हैं।

0: हैं वो भी देख के एक अनुभव लेते हैं, सीख लेते हैं उसे।
1: अच्छा, खेती के साथ कुछ पशुपालन के भी हिसाब किताब?
0: जी, जानवर रखते हैं हम।
1: मौके पे हैं,
0: मौके पे 3 जानवर हैं।

0: तो यह मन कहा था पंचो ना कि वहीं से भाई देखा, भाई जितना समय वहीं बिता रहे उतने नीक बात है कि ना। गांव गवी के मेढ़े पर यहाँ टहरब घूमब तो भाई अपने देही बदे लाभकारी होबे करत है। और अपने खेते पाती माँ अगर कोनो भाई अपने समय फसल लगाए बाटेन, कोनो पेड़ पौधा लगाए बाटेन बगिया बीरों माँ, और बगिया बीरों को अगर बात करी थे तो देखा यही सही थी बगिया बीरों में तो भाई जाए कर निहारत ही बनत है, कहा ऐसे आम है जामुन है सब पेड़ पर भाई लदा पड़ा रहा थी। और वह जाए के जब अपन गेदा रहे भाई ननुहार ननुहार जाए के पेड़ पर तूरा थीन बीना थीन खा थीन पिए थीन तो भाई देखत ही बना था है कि ना पंचो। लेकिन ये सब निर्भर करते भाई अपन वातावरण अपन मौसम कैसन ओकरे विपरीत है कि अनुकूल है हर एक मेर से, और मौसम के हिसाब से हर एक कारबोध का भी अपने सबका करेक्ट पड़त है पंचो। और जहाँ तक मौसम का अगर बात की जाए तो अपने हाथे में भाई हम मौसम का जानकारी भी ले बाटन काहे ना बताओ चली। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस, सापेक्षिक आर्द्रता यानी नमी जोन बाय पंचो ना अधिकतम 77%, न्यूनतम 44%, हवा के गति जोन बाय 4.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और दिशा जोन बाय दक्षिणी पूर्वी। एक अलावा पूर्वानुमान है पंचो आगामी 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्लुक से बादल छावा रह के और कहूँ कहूँ गरज के साथ साथ बूंदाबांदी हुए और हवा सामान्य व सामान से तेज गति से पूर्वा चले के संभावना है। तो पंचो ये तो रही मौसम की जानकारी जानकारी। तो हम तो कही थे ना कि अपने जो सगरों कारबूत है अपने घर परिवार के अपने कहूँ हाट बाजार का रखा है या अपने खेते पाती के कारबूत का रखा है तो यही हमारे मौसम के भाई अपने सभी जानकारी पहले से ले लीन जाता है और दे दीन जाता है कि वही मेर से अपन सगरों कारबूत का अपने सभी समय समय पर ही कीन जाए। और अगर अपने समय समय समय पर ही सगरों कारबूत कीन जाते पंचो ना तो किंचो कोनो मेर के कोताही ना हो पावत कोनो चीजी में, चाहे वो घर परिवार के व्यवस्था हुए चाहे खेती पाती की व्यवस्था हुए। अब संझा सवेरे अपने पशु प्राणी का ही बांधे एक बात ले लिया, उनका सही ढंग से राखे एक बात ले लिया तो अपने पशु प्राणी जैसे हमारे सब पाले पोसे हैं तो उन्हों का सही ढंग से भाई व्यवस्थित रूप से बांधे रही खूंटा परियन, उनके लगे बढ़िया से सफाई राखी हर एक मेर से मतलब चौकस आकर अपने सबका व्यवस्था रखा जाए वहीं के ना तो अपन पशु प्राणी भी अपने सबका लाभ ही दे जाइए और स्वस्थ रह जाइए। और जब स्वस्थ रही है पंचो ना तो हम सबका बढ़िया तरीके से लाभ दे हैं, दूध दे हैं, घी दे हैं, माठा दे हैं, सब कुछ मतलब बढ़िया तरीके से। तो यही हमारे पंचों को कहा जाता है ना कि जैसे अपने सबका ध्यान अपने सब रखा जाता है तो वही मेरे से अपने पशुअन का भी रखना चाहिए। और देखा पंचो अब घड़ी अपन यह कहा बहना कि अपने पंचन से अपने सब विदा ली जाए, लेकिन इससे पहले ही बता दी कि अगले दिन के कार्यक्रम कृषि जगत रहे तो कहा भाई सुनत जाइए अपने पंचे। लेकिन यही के साथ हमका दें अनुमति, जय हिंद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हे भैया ऐसन बगौवा हमार। देखा यह गौनई के माध्यम से गांव गवई के कितना नीक वर्णन रहा। समझ एक तरीके से जो गांव के छवि होत है, ताल तलैया और पोखरा पानी के, ओकरे अलावा जो है पेड़ पालो हरियर हरियर सब कुछ सीमान देख के ना बिल्कुल जान पड़ रहा कि गौनई के माध्यम से साक्षात उतार दिन गवा सामने। और भाई देखा गांव गवई के ऐसा वातावरण भी होत भी है भाई, सवेरे संझा अगर घूमे टहरे चला जाना मेरे पर

रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आकाशवाणी के अयोध्या एफएम 101.9 और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। कार्यक्रम रूपरेखा में पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। विविध भारती के राष्ट्रीय कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:30 से और रात 10:30 से। हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे शेर और गीत प्रोग्राम 8:15 से और रात 9:15 से खेल खिलाड़ी कार्यक्रम सुनिएगा, जिसमें स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल खबरों के अलावा स्टूडियो से बाहर स्थानीय स्टेडियम में बॉक्सिंग कोच संजय हेला से की गई बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। 9:30 से हेलो अयोध्या प्रोग्राम पेश किया जाएगा 10:30 तक। और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में सुन लीजिए जो 1 जून को प्रसारित और रिले होंगे। सोमवार के कार्यक्रम इस प्रकार से रहेंगे। 7:15 से कार्यक्रम रूपरेखा आपको दिन भर के कार्यक्रमों की दी जाएगी। 7:30 से अमृत कलश कार्यक्रम होगा। 8:15 से सुर संगम कार्यक्रम। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम, जिसमें आज की बात का टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसके बाद श्रीधर द्विवेदी से संजय धर द्विवेदी की बातचीत सुनिएगा, 4-पहिया वाहनों में इंफोटेनमेंट सिस्टम का महत्व। इसके बाद समाचार पत्रों से सेगमेंट होगा और फिल्मी गाना सुनवाया जाएगा। आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम जो व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित है, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 9:00 और 9:30 से हेलो अयोध्या प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 10:00 से एनसीईआरटी और सीआईटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा। विविध भारती के कार्यक्रम राष्ट्रीय मुंबई से 10:30 से रिले होंगे। आकाशवाणी अयोध्या एफएम दिन में 12:30 से सुनवाएगा आपको लोकगीतों का फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम। 1:00 फेसबुक श्रोताओं का प्रोग्राम होगा कुछ तुमने कहा, ये फरमाइशी फिल्मी गानों का है, जिसके लिए आपके कमेंट्स दिन 11:00 तक एकत्र कर लिए जाते हैं आकाशवाणी के फेसबुक पेज से। कल दिन में 2:00 गैर फिल्मी गीत और गजलों का गीतांजलि प्रोग्राम सुनिए। 2:15 से दोपहर समाचार दिल्ली से होंगे। 2:30 से अंगना कार्यक्रम में चर्चा का टॉपिक वैश्विक अभिभावक दिवस, दूसरा टॉपिक विश्व दुग्ध दिवस, तीसरा टॉपिक नीलम संजीव रेड्डी पुण्यतिथि। इसके बाद रूपम श्रीवास्तव की वार्ता सुनिएगा, अभिभावक का बच्चों के प्रति उनका कर्तव्य। प्रेजेंटर रहेंगी आरती पांडे और प्रस्तुतकर्ता सरस्वती पाठक। दोपहर बाद 3:00 से 5:00 तक विविध भारती केंद्रीकृत सेवा के कार्यक्रम मुंबई से होंगे। युवावाणी में शाम 5:00 चर्चा का टॉपिक रहेगा वैश्विक अभिभावक दिवस, दूसरा टॉपिक विश्व दुग्ध दिवस, करियर गाइडेंस सेगमेंट में नई राहें लड़कियों की शिक्षा और करियर पर कुसुम लता से की गई बातचीत सुनिएगा। इसके अलावा हीट वेव में अत्यधिक गर्मी में क्या ना करें, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी प्रेजेंटर कृष्णमणि पांडे और प्रस्तुतकर्ता जयंत पटेल। लोक संगीत कार्यक्रम 5:30 से, शाम सुहानी 6:10 से, गूंजे स्वरगांव के कार्यक्रम 6:30 से, कृषि जगत कार्यक्रम में कल 6:45 पर चर्चा का टॉपिक रहेगा विश्व दुग्ध दिवस। इसके बाद अभिषेक मिश्रा से निशा श्रीवास्तव की बातचीत का विषय रहेगा लू और गर्मी में पालतू पशुओं की देखभाल और प्रबंधन। इसके बाद बाजार भाव मौसम की जानकारी और लोकगीत सुनाया जाएगा। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 से और शाम 7:30 से। एफएम स्टूडियो से रात 8:15 से गीत गुंजन प्रोग्राम होगा आकाशवाणी अयोध्या से। आपकी बात कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:15 से। 9:30 से लाइव फोन इन प्रोग्राम फरमाइशी फिल्मी गानों का हेलो अयोध्या और 10:30 से आप विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुनेंगे। अभी आप कार्यक्रम रूपरेखा में आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। शाम के 7:18 होने वाले हैं। बस कुछ ही देर के बाद ठीक 7:20 पर आपको प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से सुनवाए जाएंगे। समाचारों का कुछ पल इंतजार कीजिए।

0: हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सो गर्ल क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
6: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी DGP। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के

0: लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने साल 1965 में सेना के सबसे महत्वपूर्ण शानदार और सफल अभियानों में से एक ऑपरेशन बख्शी का नेतृत्व किया। इस ऑपरेशन का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। उन्होंने न सिर्फ इसका नेतृत्व किया बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ये लक्ष्य था 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हाजी पीर पास पर देश का झंडा लहराने का। हाजी पीर दर्रा सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये देश में घुसपैठ करने का एक प्रमुख प्रवेश मार्ग बना हुआ था। साथ ही पूंछ और उरी के बीच एक सुगम रास्ता भी था। हाजी पीर दर्रा तीन ओर से पहाड़ों से घिरा है, पूर्व में बेदौरी, पश्चिम में संक और दक्षिण पश्चिम में लेडवाली गली। हाजी पीर तक पहुंचने के लिए इन तीनों पोस्ट पर कब्जा जमाना बहुत जरूरी था। ऐसे में दुश्मनों की नजर से बचना आसान काम नहीं था। एक रणनीति तय की गई जिसके तहत दो तरफा अभियान चलाया गया, पहला उरी से हाजी पीर पास तक और दूसरा पूंछ से हाजी पीर पास तक। अनुमान था कि इस दो तरफा हमले से दुश्मन को भाग निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। उरी से हाजी पीर जीतने के लिए 5 इन्फेंट्री बटालियन ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के नेतृत्व में आगे बढ़ी। इस अभियान को नाम मिला ऑपरेशन बख्शी। ऑपरेशन बख्शी और ऑपरेशन फौलाद को सफल बनाने के लिए सेना निकल चुकी थी। ब्रिगेडियर बख्शी का अनुमान था कि विरोधी सेना तकरीबन 3.5 बटालियन के साथ उनकी राह देख रही है। उन्होंने बाएं से उरी संक लेड वाली गली फतह करते हुए हाजी पीर पहुंचने की योजना बनाई, तो दाएं से उरी बेदौरी कुटनार दी गली किरण होते हुए हाजी पीर पहुंचने की योजना थी। ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के साथ दूसरी ओर से सेना का नेतृत्व मेजर रणजीत सिंह दयाल के हाथ में था। ये पूरा मिशन 3 फेज में होने वाला था और 26 अगस्त को हाजी पीर पास पहुंचने की योजना थी। ये सारा अभियान रात के अंधेरे में करने की योजना बनाई गई, लेकिन पहाड़ी इलाके में योजना आपके अनुसार नहीं प्रकृति के अनुसार चलती है। मौसम बिगड़ने के कारण कुछ देरी होती गई और एक दिन की देर हो गई। भारी बारिश के कारण संक तक धीमी गति से पहुंचने के कारण रात के अंधेरे में पहुंचने की योजना दिन के उजाले में तब्दील हो गई। दुश्मन भारी हथियारों के साथ तैयार था। सेना को देखते ही हमला बोल दिया गया। सामना करते हुए हमारी सेना ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के नेतृत्व में आगे बढ़ती गई और एक निश्चित दूरी पर पहुंचकर जवाबी हमला किया गया। आखिरकार सफलता ने भारतीय सेना के कदम चूमे।
1: संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे।

सिंह हाजी पीर की ओर कूच करने को तैयार थे, वहीं दूसरी ओर से आती सेना अभी पहुंची नहीं थी। लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए अब आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी ने सेना को आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी। अब दुश्मन से सीधा सामना था। तकरीबन 1220 मीटर की चढ़ाई सामने थी। भारी बारिश का सामना करते हुए सेना आगे बढ़ी जा रही थी। ये एक मुश्किल मिशन था, क्योंकि पूरी पलटन 2 दिन से भी ज्यादा समय के लिए इस तरह की परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ी। तभी दुश्मन को भनक लगी और उसने हथियारों के मुंह खोल दिए। सेना ने जवाबी हमला कर उन्हें शांत कर दिया। तब तक शाम ढल चुकी थी और हाजी पीर तक अंधेरे में ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी और मेजर रणजीत सिंह दयाल के साथ सेना मुख्य लक्ष्य हाजी पीर पास की ओर बढ़ रही थी। एक बड़ी चढ़ाई करने के बाद अब हाजी पीर तक पहुंचने के लिए रात का समय चुना गया। साथ ही एक और रणनीति बनाई गई और दुश्मन को दोनों ओर से घेरने के लिए पलटन को विभाजित किया गया। जैसे ही दोनों ओर से सेना हाजी पीर पहुंची, दुश्मन के होश उड़ गए। हड़बड़ी में उसने वार करने की कोशिश तो की, लेकिन नाकाम रहा। आखिर 28 अगस्त को हाजी पीर दर्रे पर भारतीय झंडा शान से लहरा रहा था। ये एक बड़ी रणनीतिक जीत थी, क्योंकि इससे घुसपैठ की गतिविधियों पर तो लगाम लगा ही, साथ ही भारतीय सेना के लिए आवागमन आसान हो गया। जहां पहले पूंछ से उरी के बीच सड़क की दूरी 282 किलोमीटर थी, वो अब मात्र 56 किलोमीटर में सिमट गई। बसाली, हाजी पीर दर्रे और कहुता पर कब्जा करने के लिए इस पूरे ऑपरेशन के दौरान ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी व्यक्तिगत रूप से सभी का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित रहे। दुश्मन के तीव्र गोलाबारी से अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वो सबसे आगे बने रहे। उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और हर परिस्थिति में त्वरित कार्यवाही करने की क्षमता का ही नतीजा रहा कि सैनिकों में भी साहस का संचार हुआ। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के नेतृत्व में हाजी पीर की ओर बढ़ती सेना ने संघ पर कब्जा कर लिया था। दूसरी ओर से भारी हमले का सामना करते हुए जवाबी हमला करके आखिरकार सर और लेड वाली गली पर भी तिरंगा फहरा दिया गया, जहां एक और ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी और मेजर रणजीत

आगे भी अपनी सेवाएं देते हुए ऐसे कई उदाहरण पेश करते हुए कई सम्मान प्राप्त करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी सेवानिवृत्त हुए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्हें वैधानिक सेवानिवृत्ति आयु से आगे तकरीबन 3 वर्ष का विस्तार भी दिया गया। 24 मई 2018 को वो परिवार के सदस्यों के बीच मातृभूमि में लीन हो गए। ऐसे बहादुर सिपाही विरले ही होते हैं, हम उनके सामने नतमस्तक हैं।

विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में

0: हवा महल में आइए आज सुनते हैं गंगा प्रसाद माथुर की लिखी और निर्देशित नाटिका मूड।
1: हाय हाय तोड़दान, अरे तेरा सत्यानाश है, सारा दूध बह गया। हट हट हट।
2: ओहो हो, क्या शोर मचा रखा है। अरे भाई शन्नो, ए शन्नो, हद हो गई। एक घंटे से कोशिश कर रहा हूँ मगर चार लाइन नहीं लिख सका। मजाल है कि कोई काम इत्मीनान से करने दिया जाए। दो घड़ी की शांति मयस्सर नहीं है इस घर में।
1: शांति शांति शांति, ये भी कोई घर है जहाँ हरदम मरघट का सा सन्नाटा छाया रहता है? जरा कहीं खटका हुआ कि पर ले आ।
2: शन्नो
1: शन्नो नहीं, शांति शांति है मेरा नाम, समझे?
2: अरे समझ गया।
1: क्या समझ गया?
2: अरे यही कि तुम्हारा नाम शन्नो नहीं शांति है। और ये
1: क्या, अरे कहते कहते रुक क्यों गए? और क्या?
2: कुछ नहीं, बस यही कि हमारे घर वाले भी कैसे कैसे नाम रखते हैं, सुनते ही हंसी आती है।
1: क्या मतलब?
2: अरे मतलब यही कि जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता उसका नाम रखा जाता है नैन सुखलाल, और जो सारी जिंदगी एड़ियां खिस खिस कर मरता है उसका नाम होता है चैन सुखदास। कुछ समझी?
1: मैं कुछ नहीं समझी।
2: अब देखो ना, मेरा नाम है अमीर चंद, है ना?
1: हाँ हाँ है।
2: और तुम्हारा?
1: शांति
2: शांति शांति और अमीर चंद।
1: इसमें हंसने की क्या बात है जी?
2: अरे हंसने की बात नहीं है तो और क्या है। अब देखो ना, ना तुम, मैं अमीर हूँ और ना तुम। खैर छोड़ो, मेरा नाम अमीर चंद है ना, मगर जेब में भुनी भांग भी नहीं। मेरा नाम होना चाहिए था फकीर चंद या गरीब चंद। और तुम्हारा?
1: मेरा?
2: तुम्हारा नाम अगर शांति देवी की जगह क्रांति देवी होता तो कितना जचता।
1: हाँ हाँ ठीक है, ना जाने तुम कवियों को क्या बैर होवे है अपने घर वालों से। कितना ही अच्छा नाम रखे माँ बाप मगर ये उसे बदल कर ही छोड़ेंगे। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे क्या, ये बताओ कि चीख चीख कर आसमान को क्यों सर पर उठा रहे थे?
2: मैं चीख रहा था? भाई वाह, ये भी खूब रही, उल्टा चोर कोतवाल को डांट।
1: आए लो, सुना इनकी बातें, अब मैं चोर भी हो गई और आपको देखो बड़े आए हैं कोतवाल बनकर। सुबह से शाम तक दफ्तर में लोहा कूटते हैं और समझते हैं अपने आप को कोतवाल।
2: नो शन्नो, मेरा मतलब है शांति जी, लगी फिर तुम वही उल्टी सीधी बातें।
1: उल्टी सीधी की क्या बात है, नहीं पीटते रहते तुम दिन भर दफ्तर में लोहे से लोहा?
2: अरे ठीक है ठीक है ठीक है, तुम एक टाइपिस्ट को लोहा कूटने वाला कहकर मुझे चिढ़ा सकती हो, मगर देख लेना देख लेना, एक दिन इसी टाइपिस्ट के नाम का साहित्य की दुनिया में तहलका मचा होगा। आज के इस लोहा कूटने वाले का लोहा सारे संसार को मानना पड़ेगा, समझी? मगर छोड़ो, तुम क्या समझोगी, भैंस के आगे भी बजाने से भी क्या फायदा है। अब तो तुम भगवान के लिए यहाँ से जाओ और मुझे कुछ लिखने पढ़ने दो।
1: अजी लिखो खूब, काले करते रहो कागज। मैंने कौन सी तुम्हारी कलम पकड़ रखी है? हाँ नहीं तो, एक तो खुदावास थी, उस पर कभी मुझे चोर बना रहे हैं तो कभी मुझे भैंस।
2: ओहो, बड़ी गलती हो गई शांति देवी जी, जो मैंने तुम्हें आवाज दी, अब मुझे उसके लिए माफी दे दो, मेरा मूड खराब मत करो।
1: हाँ हाँ मैं तो जानू हूँ मुझसे बात करने में तुम्हारा मूड खराब ही होता है, पर कान खोल कर सुन लो, मेरे भी काले कुत्ते ने नहीं काटा कि बेकार में तुमसे अपने भेजे के ठीकरे करूँगी। मैं जा रही हूँ पड़ोस में धन्नों की माँ के पास, तुम बैठे रहो इन कागजों में सर दिए।
2: हाँ बाबा जाओ, जरूर जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सुनो,
1: कहो क्या है, अब क्या बात है?
2: अरे मेरी कोई चिट्ठी विट्ठी तो नहीं आई?
1: नहीं। अरे हाँ याद आया, मेरे पिताजी के पास से एक आदमी आया था।
2: तुम्हारे पिताजी के पास से?
1: जी हाँ, हमारे गांव से।
2: अरे आया होगा, मुझे इससे क्या मतलब है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरी कोई चिट्ठी तो नहीं आई। तुम भी अजीब हो, कहो खेत की तो सुने खलियान की।
1: खलियान का क्या जिक्र है जी, मैं भी तो खेती की बात कर रही हूँ।
2: खेत की बात, क्या मतलब?
1: पिताजी ने कहला भेजा है कि आजकल चने की फसल है, खेती लहला रही है, दो चार रोज के लिए गांव आ जाओ और खेतों से ताजे ताजे चने तोड़कर खाओ।
2: खेतों से ताजे ताजे चने तोड़कर खाओ, वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। अरे तुम्हारे पिताजी ने क्या मुझे बैल भैंस बकरा ऊंट समझ रखा है कि खेत खेत चने चटाता फिरूं मैं?
1: अरे मैं कहती हूँ आपको खेतों में चने तोड़कर खाना अच्छा नहीं लगता?
2: बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे खेतों और चनों से कोई दिलचस्पी नहीं है, बख्शो मुझे, मुझे लोहे के चने ही चबाने दो। अरे मेरी किस्मत में तो यही लिखे हैं।
1: आपको तो हर वक्त अपनी किस्मत का ही रोना रहता है, खैर आप जाए या ना जाए मैं तो जरूर जाऊंगी, वरना पिताजी नाराज हो जाएंगे।
2: शौक से तुम जरूर जा सकती हो।
1: और हाँ, मुझे याद आया, पिताजी ने उस आदमी के हाथ असली घी की एक हांडी और ताजे गुड़ की दो भेलियां भी भेजी है।
2: ओहो, मैं कहता हूँ तुम्हारे पिताजी का इरादा क्या है, आखिर चाहते क्या है वो? मुझे बनिए की दुकान खुलवानी है जो रोज रोज ही असली घी और गो भेजते रहते हैं।
1: इसमें क्या बुरी बात है?
2: बात बुरी हो या भली हो इससे बहस नहीं है, पर उन्हें लिख दो कि मैं असली घी खाने का आदि नहीं हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ वनस्पति घी खाया है और मरते दम तक यही खाता जाऊंगा, असली घी भेज भेज कर मेरी आदत खराब न की जाए, असली घी खाने से मेरा तो गला खराब हो जाता है। ये गुड़ की भेलियाँ, अरे तौबा तौबा, उनकी तरफ देखने से तो मुझे मतली आने लगती।
1: हाय हाय, इतना अच्छा गुड़ तुम्हें कभी नसीब भी हुआ है? जरा चलकर तो देखो जी, तुम्हारे शहर में तो ढूंढे से भी नहीं मिलेगा इतना अच्छा गुड़।
2: अरे मेरा दिमाग खराब नहीं है श्रीमती जी के शहर में मैं जाकर गुड़ ढूंढता फिरूं।
1: ओहो, तुम तो चौमुखे चलो हो जी, मैंने कब कहा कि बाजार में जाकर गुड़ ढूंढो, मैंने तो एक बात कही थी, पर तुम तो लगे है लड़ने को ही बैठे हो। ना जाने पिताजी की भी क्या ममता की रग फड़के हैं जो तुम जैसे नाशुक्रों के लिए इतनी अच्छी चीजें भेजते हैं।
2: हे भगवान,
1: अब उन्हें कोई कैसे समझाए कि उनकी मोहब्बत की यहाँ पर ये कदर होती है।
2: हो हो हो, अब ये शुरू हो गए ना तस्वे बहने। अरे उनकी मोहब्बत से कौन कमबख्त इनकार कर रहा है, लेकिन मोहब्बत जाहिर करने के लिए ये असली घी, ये ताजा गुड़, ये तिल के लड्डू, गन्ने के रस की खीर, मैं कहता हूँ इन सब चीजों की क्या जरूरत है। सच कहता हूँ शन्नो रानी, तुम्हारे पिताजी के लिए मेरे दिल में जो इज्जत है, जो एहतराम है।
1: बस बस, मैं सब जानती हूँ, बंद कीजिए ये किस्सा नहीं तो।
2: मेरा भी यही ख्याल है श्रीमती जी, कि इस गुस्से को यहीं खत्म कर दिया जाए। क्यों खामखा मेरा भी मूड खराब हो और तुम्हारा भी?
1: देखो जी, एक बात आज तुमसे मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, ये तुम अपना मूड चाहे खराब करो चाहे अच्छा, पर मेरे मूड के खराब होने की बात मत किया करो।
2: मूड?
1: भगवान ना करे कि मेरा मूड खराब हो।
2: मूड? अरे मूड नहीं शन्नो रानी, मैं मूड की बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम मूड को क्या समझो? अरे अगर ये समझ लेती कि मूड क्या चीज है तो अच्छे ही दिन ना होते।
1: अजी नहीं समझती हूँ तो समझा दो ना, अगर पढ़ी लिखी नहीं तो क्या, इतनी कम अकल तो नहीं हूँ कि कोई चीज समझाई जाए और मैं समझ भी ना पाऊँ।
2: अच्छा, अच्छी बात है, तो बैठो, आज तुम्हें समझा ही दूं कि मूड क्या होता है।
1: हाँ हाँ, समझाओ कि मूड क्या होता है।
2: मूड मेरा मतलब है, मूड मूड दिमाग की वो स्थिति होती है कि अगर वो बिगड़ जाए तो।
1: अजी यही तो मैं कह रही थी, मूड दिमाग के बिगड़ने का अंग्रेजी नाम है।
2: ओ, ओ।
1: तुम जिसे अंग्रेजी में मूड खराब होना कहो, हम उसे अपनी भाषा में मूड बिगड़ना कहे।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं भाई, नहीं नहीं, तुम पूरी बात तो सुनती नहीं हो। मूड को अगर आसान और सरल शब्दों में तबीयत का रुझान या मन की वो स्थिति कह सकते हैं कि जब हम एकाग्रचित होकर अपने मन को बड़ी लगन और शौक के साथ किसी एक कार्य विशेष की ओर केंद्रित कर लें।
1: ओहो,
2: अब जैसे फर्ज करो, तपती दोपहरी में हम तुम ऊपर बरसाती में बैठे हो, मैं तुम्हें एक टक निहार रहा हूं और तुम पसीनों में तर बतर बैठी अपनी धोती के पल्ले से हल्के हल्के अपने को हवा कर रही हो, तभी मैं कहूं शन्नो जी, शन्नो जी, तुम इस वक्त मुझे बड़ी लुभावनी लग रही हो, जी चाहता है तुम्हारी पेशानी पर चमकने वाले पसीने के इन बिल्लौरी मोतियों की माला गूंथ कर तुम्हें पहना दूं। तुम्हारे पल्लों के हिलाने से जो भीनी भीनी हवा निकल रही है, इसमें आओ हम तुम मुड़कर आसमानों को छू जाएं, तो जानती हो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मैं इस वक्त मूड में हूँ, रोमांटिक मूड।
1: कौन समझदार आदमी तुम्हारी बातें सुनकर नहीं कह देगा कि इनका मूड फिर गया है।
2: ओ, अभी तो नहीं।

0: लेकिन अगर तुम्हारा साथ रहा तो जरूर एक दिन ये मूड फिर जाएगा। जाओ बाबा जाओ, तुम नहीं समझ सकोगी कि मूड क्या होता है। मैं हारा तुम जीती महारानी।
1: मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम कुछ समझा ही नहीं सकते हो। रही बात मूड फिरने की, वो तो भगवान ही जाने हैं कि किसका मूड फिरेगा, तुम्हारा या मेरा। पर तुम अपना मूड अच्छा करते रहो, मैं तो कुछ दिन के लिए अपने पिताजी के पास गाँव जाकर रहूंगी।
0: हाँ जरूर जाओ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है श्रीमती जी।
1: पर खाली हाथ थोड़ी जा सकूं हूँ, कुछ रुपए पैसे का भी तो बंदोबस्त होना चाहिए। लाओ निकालो रुपए, मैं आज ही चली जाऊंगी।
0: लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है श्रीमती, यही कोई बस 5-7 रुपए पड़े होंगे, इसमें पूरा महीना निकालना है।
1: ये तो मैं जानती हूँ, मेरे नाम के तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं होते। पर अगर मुझे भेजना है तो रुपयों का इंतजाम करना ही होगा।
0: अरे इंतजाम तो मैं सब कर दूं, लेकिन तुम करने दो तब ना। अब सुबह से बैठा हूँ, एक लाइन नहीं लिख सका। अरे अगर तुम मुझ पर कृपा करो भवानी, तो रुपयों के ढेर लगा दूं।
1: अच्छा, तो क्या जो तुम लिखने जा रहे हो उसके रुपए मिलेंगे?
0: जी हाँ, वरना मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जो कागज काले कर रहा हूँ।
1: अच्छा तो लो, मैं जाती हूँ, तुम लिखो, पर जब रुपए मिले तो मुझे गांव जरूर भेज।
0: अरे जरूर भेज दूंगा, जरूर भेज दूंगा, लेकिन इस वक्त तो जाओ यहाँ से।
1: जाती हूँ जाती हूँ, पर हाँ कब तक आएंगे रुपए, कब तक भेजोगे मुझे गाँव?
0: अरे बस जरा एक पब्लिशर फंस जाए।
1: ये कब तक फंसेगा तुम्हारा पब्लिशर?
0: पब्लिशर बस ये उपन्यास पूरा हो जाए, समझ लो पब्लिशर।
1: कब तक पूरा होगा ये उपन्यास?
0: बस बस बस, शुरू होने की देर है, पूरा हुआ समझो।
1: पर कब शुरू करोगे?
0: अरे कोई अच्छा सा थीम मिल जाए तो शुरू कर दूंगा।
1: पर ये अच्छा सा थीम कब तक मिलने की उम्मीद है तुम्हें?
0: थीम की बात तो बस वही मूड पर है चंद्रानी, जब जरा मूड आया के थीम सूझा।
1: मूड फिर वही कमबख्त मूड।
0: अरे मूड नहीं शन्नो जी, मूड मूड।
1: मैं सब जानती हूँ, जिसे तुम अंग्रेजी में मूड कहो हो उसे हम अपनी भाषा में मूड मूड कहते हैं।
0: ओ, अरे अब तुम्हें कैसे समझाऊं?
1: अजी बस समझा लिया, जो बात तुम खुद नहीं समझते हो मुझे क्या समझाओगे। अच्छा मैं चली रसोई में, वरना कहोगे मूड खराब।
0: अरे हाँ जाओ, वरना सचमुच मेरा मूड खराब हो जाएगा।
1: मूड नहीं मूड।
0: अरे हाँ बाबा, मूड मूड मूड, तुम जीती मैं हारा, मूड नहीं।

सिटी मुंबई से अभी आपने हवा महल में ये झलकी सुनी और अब आप कनेक्ट हुए हैं अपने आकाशवाणी अयोध्या एफएम से 101.9 मेगाहर्ट्ज ट्यून करके और इंटरनेट के जरिए देश और दुनिया में ये आवाज पहुंच रही है प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

0: न्यूज ऑन AIR के जरिए। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी हाँ, शेर व शायरी की महफिल, शेर और गीत है प्रोग्राम का नाम।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती PM सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705721।

आकाशवाणी अयोध्या एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज पर शुरू कर रहा है प्रोग्राम शेर और गीत। शेर व शायरी और नगमों के इस हफ्तावार महफिल में मेरे तमाम सुनने वालों का तहे दिल से इस्तकबाल है। अपने रेडियो मित अमरजीत की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब कबूल कीजिए। जिंदगी की आम बातों को बेहद खूबसूरती और सलीके से अपनी गजलों में बयां कर देना पद्मश्री से नवाजे जा चुके बशीर बद्र साहब की खासियत रही है। उन्होंने उर्दू गजल को एक नया लहजा दिया। यही वजह है कि उन्होंने अपने फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। 15 फरवरी 1935 में सैयद बशीर बद्र का जन्म अयोध्या में हुआ। उसके बाद ये भोपाल जाकर बस गए थे। पिछले 14 साल से याददाश्त के कमजोर होने और डिमेंशिया में तकलीफ देह दिनों को बिताने के बाद 91 साल की उम्र में 28 मई को बशीर बद्र साहब ने हम सब से रुख्सत ले ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर उनकी शायरी, उनकी बातें, पढ़ने का अंदाज और उनका मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर शायरी बोलना हम सब के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक देखने को मिलती है। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो डाल भी टूट सकती है। मैं चुप रहा और गलत फहमियां बढ़ी, मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो भी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो भी कहा नहीं। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। कुछ इसी तरह की शायरी बशीर बद्र साहब ने की थी और यह शायरी हमेशा हम सब के बीच जिंदा रहेगी और वो भी जिंदा रहेंगे। बशीर बद्र का ये शेर न जाने उन्होंने कितने बरस पहले लिखा होगा, जो उनके जाने के बाद न जाने कितने दिलों की बस हसरत बनकर रह गया। मुलाहिज़ा कीजिए, न जी भर के देखा न कुछ बात।

की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। उन्हीं के अल्फाजों को बयां कर रहे हैं जगजीत सिंह अपनी आवाज में इस गजल के जरिए।

हफ्ते में एक ही दिन ये प्रोग्राम आता है शेर और गीत। इस प्रोग्राम में भी पहले आपके भी शेर और शायरी को हम लोग शामिल करते थे। शेर आपके गीत हमारे प्रोग्राम के नाम से, लेकिन उसके बाद इस प्रोग्राम का नाम बदल गया और मशहूर शायरों की गजलों, नज्मों और शेर व शायरी पर तरतीब दिया जाने लगा ये प्रोग्राम शेर और गीत आकाशवाणी फैजाबाद और उसके बाद आकाशवाणी अयोध्या से। डॉक्टर राही मासूम रजा हिंदी और उर्दू के एक मशहूर कहानीकार, कवि और स्क्रीन प्ले राइटर भी रहे हैं। टीवी धारावाहिक महाभारत के शानदार डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले के लिए खासकर जाने जाते हैं डॉक्टर राही मासूम रजा। कुछ फिल्मों में इन्होंने गाने भी लिखे। उनकी कलम से निकली एक नज्म को आवाज दे रहा हूं आपके इस प्रोग्राम शेर और गीत में। जिनसे हम छूट गए अब वो जहां कैसे हैं, जिनसे हम छूट गए अब वो जहां कैसे हैं, शाखें गुल कैसे हैं, खुशबू के मकान कैसे हैं। ऐ सबा तू तो उधर से ही गुजरती होगी, ऐ सबा तू तो उधर से गुजरती ही होगी, उस गली में मेरे पैरों के निशान कैसे हैं। कहीं शबनम के शगुफे, कहीं अंगारों के फूल, कहीं शबनम के शगुफे, कहीं अंगारों के फूल। आके देखो मेरी यादों के जहां कैसे हैं। मैं तो पत्थर था, मुझे फेंक दिया, ठीक किया। मैं तो पत्थर था, मुझे फेंक दिया, ठीक किया। आज उस शहर में शीशे के मकान कैसे हैं।

बच्चियां वक्त हो गया है स्टूडियो में 8:33 ठीक। प्रोग्राम शेर और गीत आकाशवाणी अयोध्या FM से आपके अपने रेडियो मित्र अमरजीत के साथ आज आप सुन रहे हैं बहुत दिनों के बाद। पहले हम लोग महीने में दो इतवार भी आ जाते थे, दो दो प्रोग्राम कर लेते थे। कुछ प्रोग्राम देश दीपक करते थे और कुछ प्रोग्राम हम करते थे, खेल खिलाड़ी और शेर और गीत प्रोग्राम। लेकिन अब सब कुछ बंट चुका है। आइए कुछ और शेर व शायरी की जाए इस प्रोग्राम में। परवीन शाकिर, जी हां, परवीन शाकिर की पैदाइश कराची पाकिस्तान में हुई। उर्दू साहित्य में महिलाओं का नजरिया, उनकी आवाज और मोहब्बत के जज्बातों को बड़ी बेबाकी से पेश करने के लिए परवीन शाकिर को जाना गया। मास्टर डिग्री और बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल करने के बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने तालीम हासिल की और सिविल महकमे में कस्टम डिपार्टमेंट में ऑफिसर भी रही पाकिस्तान में। इनकी पहली नज्म खुशबू 1976 में आई, जिसे बहुत ही

कबूलियत मिली। इसके बाद सदबर्ग खुद कलामी इनकार और माहे तमाम नज़में भी रही इनकी। छब्बीस दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद में एक कार एक्सीडेंट में इनकी अचानक मौत हो गई। परवीन शाकिर की शायरी में एक औरत की जज्बाती मोहब्बत, जुदाई और दर्द की झलक मिलती है, जिसने उन्हें उर्दू अदब की दुनिया में हमेशा जिंदा रखा और अमर कर दिया।

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
9: आगे सैनरी।
10: हाँ।
9: नए झुमके?
10: ना, पहले बचत।
9: पहले झुमके।
10: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
9: लेकिन झुमकों का क्या?
10: जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
5: RBI कहता है,
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
11: जी हाँ, वक्त की सुइयां कह रही हैं कि आगे हम बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकते। शेर व शायरी तो बहुत अभी भी है, लेकिन फिर किसी दिन बयां कर देंगे। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।

दिल अजीज मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सब हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा बस। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अपने रेडियो मीट अमरजीत को अब दीजिए इजाजत।

ये था शेर व शायरी का हफ्तावार प्रोग्राम शेर और गीत, जिसे आपने आकाशवाणी अयोध्या से 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुना। 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर के बाद दिल्ली से समाचार होंगे, पहले हिंदी में और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।

0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश के अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे।

0: उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की

0: सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSA deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open Badminton Tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the lair of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन एक रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
1: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: During the program, Mr. Modi

0: पर। पहले कमर्शियल ब्रेक के बाद आप सुनेंगे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम। उससे पहले आपको अपडेट बता दें मैच की, जो आज फाइनल मैच हो रहा है। गुजरात की टीम 19वें ओवर में 145 रन बना चुकी थी 7 विकेट के नुकसान पर। बस कुछ ही देर में सुनिए खेल खिलाड़ी प्रोग्राम।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: आकाशवाणी अयोध्या FM के वीकली स्पोर्ट्स प्रोग्राम खेल खाड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके मीत AJ अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार। खेल खाड़ी कार्यक्रम में सबसे पहले आपको ले चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर और बात करते हैं IPL 2026 की। थर्ड पोजीशन के लिए खेले गए मैच में फ्राइडे 29 मई को न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी के बल्ले ने फिर से धमाल मचाया, लेकिन एलिमिनेटर मैच में 97 के बाद वैभव एक बार फिर से 96 पर सेंचुरी मिस कर गए। इस सीजन 4 सेंचुरी से वैभव विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते और एक सीजन में विराट कोहली ने साथियों 4 सेंचुरियां लगाई थी। इस मैच में 13वें ओवर में शुभमन गिल 47 गेंद पर 15 चौके और 3 छक्के लगाकर उन्होंने शतक मारा और 53 गेंदों में 104 रन बनाकर आउट हुए और अपनी टीम की जीत तय करके गए। उस समय गुजरात को 30 गेंदों में 33 रन जीत के लिए चाहिए थे क्योंकि 15वें ओवर में 182 पर शुभमन गिल आउट हुए। इसके पहले 32 गेंद पर 58 रन पर साई सुदर्शन दूसरी बार भी सेम पोजीशन में हाथ से छूटा हुआ अपना बल्ला अपने ही स्टंप पर दे मारा और हिट विकेट आउट हो गए, जिसने स्टेडियम में बैठे सभी लोगों को सन्न कर दिया। स्कोर था 167 रन और सिर्फ 77 गेंदों में ये रन आए थे। एक समय राजस्थान ने 118 के स्कोर पर 5 विकेट भी गंवा दिए थे, फिर भी स्कोर 214 रन बना लिया। अंत में राशिद ने 2 ओवर्स में 45 रन लुटा दिए, लेकिन 8 गेंद बाकी रहते गुजरात ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर मैच जीत लिया। RCB बेंगलुरु या गुजरात, दोनों में से जो भी आज फाइनल जीतेगा वो दूसरी बार IPL की ट्रॉफी को अपने नाम कर लेगा। और अब IPL के एलिमिनेटर मैच की बात करते हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात को 47 रनों से हरा दिया था। 27 मई को राजस्थान को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 8 ओवर्स में 125 रन जोड़ दिए। सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 12 छक्के शामिल रहे। वहीं जायसवाल ने 29 रन बनाए। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने 21 गेंदों में 50 रन बनाए, जबकि कप्तान रियान पराग ने 12 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली। राजस्थान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए, जो कि एक समय यह स्कोर 270 या 300 तक जाता दिख रहा था, क्योंकि राजस्थान 15 ओवर्स में 206 रन बना चुकी थी, लेकिन अच्छी बॉलिंग के चलते अंतिम 5 ओवर्स में सिर्फ 37 रन ही बन सके। हैदराबाद के ईशान किशन ने तेज बैटिंग करते हुए जीत की उम्मीद जगाए रखी, लेकिन उनके आउट होने के बाद लगातार विकेट गिरते चले गए। 244 रन के टारगेट का पीछा करते हुए हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही। जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को 0 पर आउट कर दिया, फिर ईशान किशन 33 और ट्रेविस हेड 17 को भी पेविलियन भेजकर मैच का रुख ही बदल दिया। इसके बाद नीतीश रेड्डी ने 38 और सलील अरोड़ा ने 35 रन बनाकर संघर्ष जरूर किया, लेकिन टीम 4 गेंद पहले 196 रन पर सिमट गई और हार गई। इसके पहले साथियों 26 मई को RCB पहले क्वालिफायर में 92 रनों की जीत के साथ सीधे फाइनल में पहुंच गई थी। 254 के जवाब में गुजरात की टीम 162 रन ही बना सकी थी। आकाशवाणी अयोध्या FM से इस समय आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से वीकली प्रोग्राम खेल खिलाड़ी अपने मित्र अमरजीत सिंह के साथ। और आइए खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में अब आपकी मुलाकात करवाते हैं स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में बॉक्सिंग कोच श्री संजय हेला से। और अब मेरे साथ है यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम अयोध्या में बॉक्सिंग कोच संजय हेला जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि आप कब से ये बॉक्सर बने और अब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं?
1: मैं अंडर 16 जब था, जी तब मैं बॉक्सिंग स्टार्ट किया था।
0: अच्छा।
1: और पहली बार मैं बॉक्सिंग में

0: फाइनल में हार गया था स्टेट चैंपियनशिप। उसके बाद मैंने जो बीड़ा उठाया
1: जी,
0: वो लगातार मैंने 16 टाइम नेशनल खेला, 16 टाइम लगातार मैंने स्टेट में गोल्ड लिया। नेशनल में कई मेडल्स है मेरे, सीनियर में भी है, जूनियर में भी है और सब जूनियर में भी है।
1: तो आप ये अयोध्या के ही रहने वाले हैं कहीं बाहर के हैं?
0: नहीं, रहने वाला तो मैं अयोध्या का हूँ।
1: अच्छा अच्छा।
0: बट मेरी आधा एजुकेशन कलकत्ता में हुई थी।
1: अच्छा, कलकत्ता में आप?
0: यस सर,
1: एजुकेशन हुई है।
0: फिर वापस मैं रिटर्न बैक अपने यूपी में आया और आकर जब यहाँ पर मैंने जब देखा यहाँ की जो परिस्थिति बॉक्सिंग की अयोध्या में
1: जी
0: बहुत ही दयनीय थी और यहाँ बॉक्सिंग कोई करने जानता ही नहीं था सर।
1: अब तो मेडल भी आ रहे हैं यहाँ पर।
0: अब इसे फिर से रीस्टार्ट किया मैंने सर
1: जी जी,
0: और आज इसका एक रिजल्ट मेरे सामने आ रहा है कि आज अयोध्या को पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा इंडिया जान रहा है कि श्री राम जन्मभूमि जो अयोध्या है यहाँ से लोग अब बॉक्सिंग करके वापस आ रहे हैं यहाँ।
1: अयोध्या को जो है कौन से मेडल मिले?
0: हमारे यहाँ से 7 दल के सिलेक्शन करके मैंने भेजा था यहाँ तक स्टेट चैंपियनशिप खेलने के लिए, वो मथुरा में नेशनल हो रही थी। तो उसमें हमारे जो लड़के थे उसमें से 2 लड़के ने गोल्ड लिया और 2 लड़के में से 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज लिया
1: जी। तो देखा जाए तो ये अयोध्या के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: यस सर, ये
1: जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बॉक्सिंग का यहाँ लेवल बहुत अच्छा नहीं था उस समय।
0: यस सर,
1: तो इस समय कम से कम खिलाड़ी आगे आ रहे हैं और मेडल भी लेके आ रहे हैं।
0: जी जी, कई लड़के यहाँ पर आ रहे हैं सर, इंटरेस्टेड है और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और यहाँ से बाहर जाकर अपना कैरियर को बना भी रहे हैं और स्टेट में मेडल भी ले रहे हैं, नेशनल मेडल ले रहे हैं और आने वाला कल में सर अयोध्या जो है अच्छा बॉक्सिंग करके दिखाएगा।
1: तो इन बॉक्सर्स की ओर से जो लोकल यहाँ पर आपसे सीख रहे हैं
0: जी,
1: उनका कैसा सपोर्ट आपको मिल रहा है? उनके पेरेंट्स की ओर से कैसा सपोर्ट मिल रहा है, इसके बारे में बताइए।
0: सर, कई पेरेंट्स को तो बॉक्सिंग के विषय में उतना जानकारी नहीं है सर यहाँ पर। तो कई लड़के जब आते हैं मेरे पास में तो वो कहते सर पापा हमारे मना कर रहे हैं। तो हम कहते ठीक है, मुझे आप अपने पापा से बात कराओ, मैं उसे कन्विंस करूंगा तुम्हारे लिए। वे लड़के तो इसमें इंटरेस्टेड है सर, बट गार्जियन लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम है
1: जी।
0: लेकिन मैं जागरूक में लगा हूँ सब, सभी को घर पे जाकर मैं उनको बताता हूँ कि सर बॉक्सिंग में कैरियर अच्छी है और बॉक्सिंग जो है अब नेचुरल गेम हो चुका है, मतलब एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो चुकी है। इसमें आप ये मत सोचिए बच्चे आपके इंजर्ड हो जाएंगे या उनको चोट लग जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं है सर। बट आप बॉक्सिंग कराइए, देखिए सर वो उसकी इम्यूनिटी पावर तो स्ट्रांग होगी।
1: तो गार्ड्स भी तो आते हैं लगाकर, वो
0: सारे कुछ है, हेड गियर है, टीथ गार्ड्स है और ग्लव्स पहने हुए, तो ग्लव्स में थोड़ा पंचेस कम चोट लगती है और एमेचर बॉक्सिंग में थोड़ा सा भी यदि कहीं पंच लग रहा है तो रेफरी आपको तुरंत स्टॉप करके काउंट देकर आपको स्टॉप कर देगा
1: जी। मेरी ओर से पूरी शुभकामनाएं हैं कि इन बच्चों को आप सिखाते रहिए, यहाँ का अयोध्या का नाम रोशन होता रहे और भी मेडल्स यहाँ पर आते रहे।
0: और सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अयोध्या में जितने भी बॉयज गर्ल्स जितने भी है उन्हें बॉक्सिंग करने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ और आप आइए मकबरा स्टेडियम में मैं रहता हूँ, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पर मिले और मैं आपके कैरियर को ठीक बनाता हूँ।
1: अच्छा, एक बात जाते जाते बता दीजिए कि प्राथमिकताएं क्या होती है, क्या कुछ उन्हें पूरा करना होता है?
0: यहाँ के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है
1: जी। उसकी कोई फीस लगती है?
0: और हल्की फुल्की फीस है, छोटी मोटी फीस है सर बॉक्सिंग के लिए।
1: अच्छा,
0: और जितने भी किट्स वुट्स है वो सारे हम बाहर से दिलाते हैं।
1: अच्छा,
0: जब भी आप खेलने जाएंगे आपको किट्स यहाँ से स्टेट
1: वो फ्री रहेगी,
0: फ्री अभी मिलेगी सर।
1: अच्छा,
0: आपको बस आपके वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगती है और थोड़े से जो स्टेडियम की जो मेंटेनेंस चार्जेस फीस है वो तो महीने भर लगती है सर।
1: चलिए, जो भी हम आपको सुन रहे होंगे रेडियो पर
0: जी
1: इंटरेस्टेड होंगे तो यहाँ जरूर आएंगे वो
0: जी। जी,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर से चलते हैं और बात करते हैं बिहार के सूर्यवंशी की, जिसने अपनी शानदार बैटिंग से क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर तक का दिल जीत लिया। 26 मई आईपीएल के क्वालिफायर 2 में न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में रिकॉर्ड्स का दिन वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा, जिसमें 5 बाउंड्रीज और 12 सिक्सर्स के साथ 28 गेंदों में शानदार 97 रनों की बैटिंग की वैभव सूर्यवंशी ने। और 29वीं गेंद पर वैभव आउट हो गए, सेंचुरी भले ही नहीं बनी हो लेकिन कई रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम कर लिए और या फिर कुछ रिकॉर्ड्स की बराबरी कर ली। सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में 600 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, 65 छक्के लगाकर। इस मैच में वैभव ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। आईपीएल में ये 5वीं बार रहा जब उन्होंने 20 या उससे कम गेंदों में कोई 50 रन बनाए हो। 15 साल के वैभव ने 97 रन बनाए। इस पारी के दौरान उन्होंने इस सीजन में अपने 600 रन भी पूरे किए। आईपीएल के एक सीजन में 600 या उससे अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी वो बने। इसके पहले ये रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था, जिन्होंने 20 साल की उम्र में 2018 में ये कीर्तिमान हासिल किया था। वैभव ने 16 गेंद में 50 के साथ आईपीएल में 5वीं बार 20 से कम गेंद पर अर्धशतक जड़ा। वे निकोलस पूरन के साथ संयुक्त रूप से इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। पहले स्थान पर अभिषेक शर्मा है, जिन्होंने 6 बार ये कारनामा किया है। वैभव सूर्यवंशी ने एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। उन्होंने 12 छक्कों की पारी के दौरान 7वां सिक्स लगाते ही क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल ने 2012 में

0: बेंगलुरु के लिए खेलते हुए पूरे सीजन में 59 छक्के लगाए थे। वैभव सूर्यवंशी ने 16 गेंद में 50 पूरी की। इस पारी के दौरान उन्होंने आईपीएल प्लेऑफ में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इसके पहले ये रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना के नाम था, जिन्होंने 2014 में पंजाब किंग्स के खिलाफ वानखेड़े में 16 गेंद में 50 लगा दी थी। वैभव ने हैदराबाद के खिलाफ अपनी पारी में 12 छक्के जड़े। ये चौथी बार है जब उन्होंने एक ही पारी में 10 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं। उन्होंने इस मामले में क्रिस गेल की बराबरी की, जिन्होंने 4 बार ये कारनामा किया है। साथियों, वैभव आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बन गए। मैच में 12 छक्के लगाते हुए उन्होंने इस साल हैदराबाद के खिलाफ लगाए 12 सिक्स के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वैभव के बाद मुरली विजय हैं, जिन्होंने 2010 में राजस्थान के खिलाफ 11 सिक्स लगाए थे। वैभव सूर्यवंशी 97 रन की पारी और 96 रन के साथ इस सीजन में आईपीएल के 776 रन उन्होंने कुल मिलाकर बनाए। वे आईपीएल एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज भी बन गए हैं। पहले ये रिकॉर्ड उन्हीं के साथी ओपनर यशस्वी जायसवाल के नाम था, जिन्होंने 2023 में राजस्थान के लिए 625 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के 16 मैचों में 776 रन बनाए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें 63 चौके और रिकॉर्ड 72 छक्के शामिल हैं। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों में 101 रन, लेकिन सेंचुरी वो मिस कर गए। नहीं तो वैभव विराट कोहली के एक सीजन में बने 4 शतकों के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेते। वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। वे आईपीएल इतिहास में सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने सिर्फ 440 गेंदों में ये आंकड़ा पा लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम था, जिन्होंने 545 गेंदों में 1000 रन पूरे किए थे। और अब बात एथलेटिक्स की। भारतीय एथलेटिक्स में पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड के साथ इसे पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में फेडरेशन कप के फाइनल में गुरिंदर वीर सिंह ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए। इसके पहले सेमीफाइनल में अनिमेश ने 10.15 सेकंड का समय निकाल कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जबकि गुरविंदर सिंह ने 10.17 सेकंड इसे पूरा किया था। लेकिन फाइनल में गुरिंदर वीर सिंह ने दमदार वापसी करते हुए 10.09 सेकंड के साथ इतिहास रच दिया। वहीं अनिमेश ने 10.20 सेकंड का समय निकाला। गुरविंदर की शुरुआत बेहद तेज रही और उन्होंने पूरी रेस में अपनी बढ़त बनाए रखी। गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर रेस का रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद हाथ से लिखा हुआ एक मैसेज दिखाया, जिसमें लिखा था, टास्क इज नॉट फिनिश्ड येट, वेट, आई एम स्टिल स्टैंडिंग। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इंतजार करो, मैं अभी खड़ा हूँ। 3 साल पहले पाचन संबंधी बीमारी के कारण गुरविंदर को 1 साल तक ट्रैक से दूर रहना पड़ा था और उनका वजन भी 10 किलो कम हो गया था। उस समय उन्हें सिस्टम से ज्यादा समर्थन नहीं मिला, लेकिन बाद में प्राइवेट फाउंडेशन से जुड़ने के बाद उनकी ट्रेनिंग, फिटनेस और प्रदर्शन में बड़ा बदलाव आया। उन्होंने कहा कि अनिमेश और बाकी साथी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा ने उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर दिया। अब गुरविंदर वीर और अनिमेश दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वालिफिकेशन मार्ग को पार कर लिया है। गुरविंदर वीर का मानना है कि आने वाले समय में भारतीय धावक 10 सेकंड से भी कम समय में भी 100 मीटर दौड़ते हुए नजर आएंगे। 25 साल के गुरविंदर वीर सिंह पंजाब के जालंधर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने 6 क्लास से ही एथलेटिक्स की शुरुआत कर दी थी। गुरविंदर वीर सिंह को एथलेटिक्स में जाने का श्रेय उनके पिता कमलजीत सिंह को जाता है, जो पंजाब पुलिस के ASI हैं। अपने पिताजी की बातों को याद करते हुए गुरविंदर वीर सिंह कहते हैं,
1: मैं गुरविंदर, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला। और जब स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं। एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: साथियों, इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 38 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार नाबाद 69 रन और यस्तिका भाटिया ने 54 रनों की पारी खेली। 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 8

8 विकेट खोकर 150 रन ही बना सकी। अपने डेब्यू मैच में खेल रही नंदनी शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। 30 मई को खेले गए दूसरे महिला टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 26 रनों से हराकर सीरीज में बराबरी कर ली। 169 के टारगेट में भारतीय महिला टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 142 रन ही बना सकी। तीसरा और आखिरी टी20 मैच 2 जून को खेला जाएगा। और चिराग शेट्टी और सात्विक साईंराज रिंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियोंग जाए और किम वांग को हरा दिया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। फ्रेंड्स, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन से ताजा अपडेट ये आ रही है कि सात्विक साईंराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पूर्व विश्व नंबर 1 जोड़ी ने आज पुरुष युगल फाइनल में इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री की जोड़ी को हराकर अपना पहला सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब जीत लिया है। एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन इस भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए 2 वर्षों में अपना पहला खिताब जीता। ये उनके करियर का 9वां BWF विश्व टूर खिताब है। हॉकी से ये अपडेट है कि जापान के काकामिगाहारा में खेले जा रहे महिला अंडर 18 एशिया कप में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पूल ए के अपने दूसरे मुकाबले में कोरिया को 3-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है। इसके पहले भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में मलेशिया को मात दी थी। और आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। पाटीदार का ये फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है आज के फाइनल मैच में। और इसी के साथ आज के खेल खाड़ी कार्यक्रम से अब अपने मित अमरजीत को आज्ञा दीजिए। आप सुनते रहें आकाशवाणी अयोध्या FM के प्रोग्राम्स, क्योंकि अभी हमारी ये सभा जारी रहेगी रात 11:10 तक।

0: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
1: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
0: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
1: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
0: कॉल करें 6386907006।
1: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
3: ये था खेल खड़ी कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या एफएम से, और अब आकाशवाणी अयोध्या एफएम से ही सुनिए फोन इन प्रोग्राम लाइव हेलो अयोध्या बस कुछ ही देर में।

0: 7376804090 लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी और साथ में होंगे आप ही के पसंद के फिल्मी गाने। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में अभी कॉल कीजिए 7376804090 पर और कनेक्ट हो जाएं एजे अमरजीत सिंह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। ये अलबेला सजीला और दिलचस्प प्रोग्राम आपके अपने FM 101.9 और स्मार्टफोन पर आ चुका है। अवध की सुरीली धड़कन आकाशवाणी अयोध्या। आइए शुरू करते हैं फिल्मी गीतों और आपकी प्यारी बातों का ये सुहाना सफर। तो कैसे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों? बढ़िया है ना, सेहतमंद हैं आप? दुआओं में आपने मुझे याद रखा और मैं पहुँच गया आपके पास आपसे बातें करने के लिए, आपकी पसंद का गाना सुनवाने के लिए। हेलो अयोध्या प्रोग्राम में हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए और आपके सभी सपने पूरे हों। आइए देखें आज कॉल यहाँ पर किसकी आ गई है। 7376804090 नंबर को मिलाकर जी बताइए अपना नाम।
1: मैं शमा बोल रही हूँ।
0: शमा कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: शमा परवीन, मुंबई से।
0: मुंबई से बोल रही हैं।

0: पहले तो आप कहीं और से फोन करती थी यहाँ पर?
1: सुल्तानपुर से फोन करती थी मैं, समा परवीन बोल रही हूँ, पर मुंबई आई हूँ ना।
0: अच्छा, तो वहीं से नंबर मिला दिया, नंबर मिल भी गया आज इतनी जल्दी?
1: जी, तो मेरा नंबर अभी लगा, एक बार और लगा था मेरा, फिर
0: तो उधर
1: लग गया, फिर मशीन लगाई, फिर लग गया।
0: हाँ, तो आपसे भी पहले यहाँ पे किसी की कॉल और भी होल्ड की गई थी, तो उनकी कॉल यहाँ से जो है डिस्कनेक्ट हो गई है। क्या हो रहा है वहाँ मुंबई में? मौसम बढ़िया है वहाँ का?
1: बढ़िया मौसम है, बारिश वारिश हो रही थी कल रात में, आज ही लग रहा है इसे बारिश होगी। हाँ, बादल हैं,
0: तो चलिए बढ़िया है,
1: मौसम अच्छा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, और घूमने जाओ तो वहाँ मौसम अच्छा है।
0: तो जो पहले जिनकी कॉल लगी थी उन्होंने बरसात फिल्म का गाना पसंद किया था, उनकी आवाज़ तो रेडियो पर नहीं जा रही है, कम से कम उनका गाना ही चला जाए रेडियो पर, क्यों?
1: कौन सी मूवी का? बरसात,
0: बरसात मूवी का गाना है, नहीं ये हो नहीं सकता।
1: अच्छा, चलिए सुना दीजिए उन्हीं की पसंद का, जब आवाज नहीं आई
0: तो
1: उनका गाना ही चल जाए।
0: जी,
1: मेरी आवाज आ गई
0: जी, आपके साथ जो है वो गाना सुनेंगे।
1: यहाँ की सुन रही हूँ, हमने कहा आवाज लगाए, बात हो जाए, बहुत दिनों से बात भी नहीं हुई।
0: चलिए बढ़िया है, बच्चों की भी आवाजें आ रही है वहाँ पे, पास ही पास आपके बैठे हुए लग रहा है वो सब।
1: जी जी, और आप ठीक है सर?
0: हम बढ़िया है। क्षमा, आपका गाना चल चुका है, सुनिए।
1: जी

0: और अब आ गया कोई और इस प्रोग्राम में बात करने के लिए। जी आप भी आइए प्रोग्राम में, बताइए कहाँ से आपने कॉल लगा ली। हेलो, देखिए
1: हेलो सर।
0: हाँ जी बोलिए आराम से।
1: अयोध्या से बोल रही हूँ।
0: अयोध्या से आपने कॉल की है, साधनगंज से, इधर से कैंट के एरिया से है ना। तो और क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आज किस तरह से कॉल लगा रही थी, कितनी जल्दी आपकी कॉल लग गई यहाँ पर? अच्छा, तो गाना आप लाइनें बता रही थी यहाँ पर। हम लोग लाइनें से गाना नहीं निकालते हैं, फिल्म के नाम से गाना निकालते हैं। तो मेरे पास बेताब का गाना भी है, बेटा का गाना है, बेमिसाल फिल्म का गाना है। बताइए इसमें से कोई बता दीजिए। लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना आपको। देखिए कंप्यूटर साहब जो है ना, वो कहते हैं कि इस तरह से हम गाना नहीं निकालते, वो नाराज़ होने लगते हैं पता नहीं क्यों। चलिए लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरे गाना, कंप्यूटर साहब ने देखी हमारी आवाज़ को सुन लिया और तुरंत उन्होंने गाना निकाल दिया है भाई भाई फिल्म से। और आइए सुने। और आप करती क्या हैं? किस क्लास में पढ़ रही हैं अभी? क्लास नाइन्थ में। आपकी फोन से आवाज ना बहुत क्लियर साफ नहीं आ रही है, या तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है या फिर फोन को थोड़ा साफ कर लीजिएगा। साउंड उसमें बढ़िया आया।

0: जनजातीय क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज
2: कैंसर हृदय डायलिसिस हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायबरेली रोड अयोध्या कॉल करें 9044207070।
3: और अब जी इस प्रोग्राम हेलो अयोध्या में आ कौन गया उनकी भी आवाज को लाते हैं यहाँ पर जी बताइए अपना नाम
4: नमस्ते
3: जी आपकी आवाज कहाँ से आ रही है आकाशवाणी अयोध्या पर
4: सरस्वती सिंह बोल रहे हैं अमरपुर मनकापुर गोंडा से
3: ओहो अंबरपुर से आवाज आ रही है भाई वाह क्या बात है और बढ़िया है सब
4: हाँ सब बढ़िया है सब ठीक है मस्त है
3: तो आज खाली हेलो अयोध्या ही सुन रही इसके पहले भी आपने प्रोग्राम सुने कोई
4: सर सारे प्रोग्राम सुने हैं श्याम सुहानी तो इतना लाजवाब प्रोग्राम किए हैं आप उसके बाद में सर ये जो शेर और गीत था वो भी बहुत अच्छा था
3: कभी कभी ना
4: कर दिया था बस
3: स्वाति कभी कभी ना मुझे पुराने दिनों की यादें ताजा होने लगती हैं तो अगर वो प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं
4: श्याम सुहानी प्रोग्राम में तो क्या श्याम भी सुहाना था प्रोग्राम का नाम भी श्याम सुहानी और गाने की बोल भी श्याम सुहानी से था तो जब आप घुंगरू पायल मेहंदी और ये सब नाम करके देखे तो पुराने यादें तरह ताजा कर दिए आप
3: तो कुछ हमको भी बोलने देंगे आपने मेरी आवाज को ही काट दिया हम रुक गए तो देखिए मैं ये कह रहा था कि जब पुराने दिनों की याद आती है ना तो अगर वो प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं तो उन प्रोग्रामों को हम लोग याद करते हुए गाने तो सुनवा ही सकते हैं ना
4: सर हाँ सर ये तो बात है
3: तो आज गाना स्वाति को कौन सा सुनवाया जाए यहाँ से कंप्यूटर साहब पूछ रहे हैं
4: सर गोपी किशन का सुनवा

0: दीजिए।
1: वो कौन सा गाना है?
0: ये गाना है कतरी ना खोल मेरे साथ में, भीग जाने दे भीग जाने दे भीगी रात में, ये वाला गाना सुना दीजिए।
1: तो ये छतरी कल तैयार रखिएगा क्योंकि मौसम विभाग ने बताया है कि एक दो दिन में बारिश होने वाली है आसपास फिर से।
0: जी।
1: शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, आपने अंबरपुर गोंडा से कॉल की,
0: आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सर।
1: नमस्ते।

0: और अब किसी को अपनी बारी का भी इंतजार है, देखें कौन है आकाशवाणी अयोध्या के इस लाइव फोन इन प्रोग्राम। हेलो अयोध्या में जी, कौन आ गया बताइए।
1: मंजू वर्मा। नमस्ते
0: सर। नमस्ते मंजू वर्मा जी, क्या हो रहा है, बढ़िया है?
1: हाँ ठीक है।
0: तो आज खाना ना तो हो ही गया होगा, अब तक खाली होगा?
1: हाँ खाना।
0: अच्छा जी, और अम्बेडकर नगर से आपने कॉल किया है, आपने बताया ऑफ माइक। तो अम्बेडकर नगर में जब आकाशवाणी फैजाबाद के नाम से भी यहाँ का केंद्र चलता था, तब भी आप सुनती थी क्या?
1: हाँ, हम तो 92 से सुन रहे हैं।
0: 92 में नहीं आया था 93। अच्छा 92 से पहले
1: तो रेडियो 92 से सुन रहे हैं।
0: हाँ सुनिए, तो मैं बता रहा हूँ 92 का भी किस्सा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 93 से हूँ। तो 2 साल जब इसका उद्घाटन नहीं हुआ ना, उसके 2 साल तक, 1.5 साल तक यहाँ से 2 घंटे गाने बजाए जाते थे दिन में, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ट्रायल पर, है ना? तब आप सुनती होंगी, हो सकता है। वैसे इसका उद्घाटन जो है 17 जून 1993 में हुआ, गुरुवार के दिन, ठीक है। तो मंजू वर्मा जी, और कौन कौन सुन रहा है ये प्रोग्राम आपके घर में?
1: घर में सिर्फ हम ही सुनते हैं।
0: अच्छा अकेली सुनती हैं। तो बैटरी वाला रेडियो है कि आपका चार्जेबल वाला है, किसमें सुनती हैं?
1: रेडियो पर सुनते हैं।
0: अच्छा तो सेल उसमें डालती हैं कि चार्ज हो जाता अपने आप बिजली से?
1: नहीं सेल डालते हैं।
0: तो सेल तो बड़ा महंगा है, 30 रुपए का एक सेल आता है, 100 रुपए का सेल लग जाता होगा आपका।
1: 80 रुपया का।
0: हाँ 80-90 रुपए का तो आता ही है, लेकिन जब ज्यादा सुनेंगी तो जल्दी खत्म हो जाएगा, कम सुनेंगी तो देर से खत्म होगा, है ना?
1: कम तो ना, तो रेडियो पर नहीं सुनते, तो फिर मोबाइल पर सुनते हैं।
0: तो सुनिए मैं आपको एक तरकीब बता रहा हूँ, उसमें एक सिस्टम लगवा लीजिए किसी रेडियो वाले से, तो उसमें वो चार्जेबल सेल जब लगेगा ना, तो अब बैटरी लगेगी तो अपने आप वो चार्ज हो जाएगी, आपको सेल नहीं डालना पड़ेगा।
1: कोई नहीं है ना?
0: अच्छा हाँ, ये तो भाई अब रेडियो बनाने वाले भी बहुत कम मिलते हैं, रेडियो भी
1: खराब हो गई थी तो बहुत मुश्किल से बना।
0: हाँ हाँ हाँ, चलिए बढ़िया है। और आपने
1: 12

0: तेरा रेडियो तो टूट चुके हैं।
1: इतना तो मेरा भी टूट गया होगा, 10-12 रेडियो मेरा भी टूट गया होगा। है ना, अभी भी मेरे पास ट्रांजिस्टर भी है सुनने के लिए, ब्लूटूथ स्पीकर में एफएम भी सुनते हैं और मोबाइल में भी एफएम है। तो आज गाना मंजू को कौन सा सुनवाया जाए?
0: आप अपने पसंद का किशोर कुमार का कोई भी गाना सुना।
1: चलिए, किशोर कुमार ने एक से एक बढ़िया गाने गाए हैं बॉलीवुड में, तो आज एक घर घर की कहानी से आपको ये गाना सुनवा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गाना है, सुनिए।
0: सुना दीजिए।
1: नमस्ते जी।

0: बातों का गीतों का सिलसिला, जी हाँ, सफ़र शुरू हो चुका है। और सफ़र शुरू हुए जो है 20-22 मिनट का वक्त भी बीत गया है। आइए देखें कौन है मेरे साथ। अब जी नाम बताइए।
1: जी चंदन तिवारी बोल रहे हैं, मिल्कीपुर कदनपुर से।
0: चंदन तिवारी जी, मिल्कीपुर के पास कौन सा गांव है?
1: कदनपुर ग्राम सभा।
0: कदनपुर, अच्छा, क्योंकि मैं भी वहां तक गया हूं, तो
1: जी
0: उसके आगे आपका यूनिवर्सिटी भी आ जाता है।
1: आप यहाँ आए?
0: हाँ हाँ, कुरावन, वहाँ पे कुरावन गांव भी है ना आपके आसपास?
1: कुरावन है, कुरावन ये पश्चिम साइड पड़ता है थोड़ा मोड़ के तरफ।
0: जी जी,
1: हमारा तो कदनपुर मिल्कीपुर के पास पड़ता है, 5 चौराहे।
0: चलिए बढ़िया है। और आज आपने हेलो अयोध्या में कॉल लगाई, आपका स्वागत है बहुत बहुत। गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: गाना राजा हिंदुस्तानी फिल्म का सुनना चाहते हैं, लेकिन पहली बार ही आज कॉल लगी हुई है।
0: अच्छा, तब तो बहुत ही बढ़िया हुआ, हमसे बात हो रही है।
1: आपसे बात तो करके करने से बहुत अच्छा लगा, लेकिन काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे, आज लगी।
0: क्योंकि आसपास के जिलों में ना आकाशवाणी फैजाबाद और अयोध्या बहुत ही फेमस रहा है और रहेगा, क्योंकि ये केंद्र तो आप ही का।
1: आकाशवाणी फैजाबाद का जलवा है, रहेगा।
0: नदिया के उस पार भी लोग सुनते हैं, जौनपुर प्रतापगढ़ तक ये सुनाई पड़ता है।
1: जी जी,
0: तो ये बताइए, गाना कोई भी चला दे राजा हिंदुस्तानी से कि कोई खास बताएंगे?
1: कोई सब सुना दीजिए, सब अच्छे हैं जो भी आपके पास।
0: चलिए बढ़िया है। और अब तो देखिए ये मोबाइल ऐप पर भी रेडियो आ गया, अब तो दुनिया में कहीं भी सुनाई देता है ये, देश विदेश में भी।
1: सुनने पे लेकिन बाजे पे ही अच्छा लगता है।
0: हाँ, ये बात तो है। वो फीलिंग नहीं आती ना, जब रेडियो पे सुनी तो फीलिंग अच्छी आती है।
1: जी।
0: जब हवाओं की तरंगों पर सवार होकर हम पहुंचते हैं आपके रेडियो पर, तो वो आपको सुनने में अच्छा लगेगा लगेगा। चलिए
1: जी,
0: शुक्रिया जी। चंदन तिवारी जी, गाना अपना सुनिए।
1: ठीक है, ओके।

0: द्वारा वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सुनत हो सखी, सुनत हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कही सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
6: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: और आज हेलो अयोध्या प्रोग्राम में कंट्रोल रूम से इंजीनियर है हमारे साथ अरविंद कुमार, और आपसे बातें कर रहा है माइक्रोफोन पर आपका रेडियो मित्र अमरजीत। अब कौन आया जी इस प्रोग्राम में? जी आपका भी वेलकम है, नाम बताइए। त्रिपुरा से सुमन जी बोल रहे हैं, और ये बताइए आप त्रिपुरा में किस डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं, किस जिले से? आपकी आवाज़ रेडियो पर बहुत अच्छी आ नहीं रही है, नेटवर्क वहाँ पे शायद आपका बहुत अच्छा नहीं है मोबाइल का। ये देखिए आपकी कॉल जो हम ड्रॉप भी नहीं करना चाह रहे, इतनी दूर से आपने कॉल लगाई है, लेकिन बातें ऐसी जगह पे आके करिए जहाँ पे नेटवर्क आपका अच्छा हो। आपकी आवाज़ में डुबकियाँ लग रही हैं, आवाज़ पूरी क्लियर, शब्द यहाँ ठीक पहुँच नहीं रहे मेरे भाई, तो आपसे क्षमा चाहते हैं हम। आप फिर से कॉल लगाइएगा, नाम एक बार

फिर से बता दीजिए वहां से। अच्छा जी, गाना किस फिल्म का सुनेंगे बताइए। चलिए, हम आपसे बातें बहुत क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपका गाना हम यहाँ से चला दे रहे हैं। कभी आइएगा तो। हाँ, हाँ हाँ, लेकिन देखिए आपकी आवाज़ भी बीच बीच में कट जा रही है, रुक रुक के आ रही है, इसलिए बातें क्लियर नहीं हो पा रही, ना मुझको हो पा रही है, ना सुनने वालों को हो पा रही है। फिर कभी किसी दिन आइएगा तो आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। शुक्रिया सुमन जी।

0: और अब मेरे पास जो कॉल आई है ना जौनपुर से, और इनको तो मैं पहचान गया नाम भी बता देते हैं आपको, फिर इनकी आवाज भी रेडियो पर लेकर आने वाले हैं। विजय यादव जौनपुर से हैं और इनकी चिट्ठियां भी आई थी आपकी बात प्रोग्राम में, तो इन्होंने लिखा था कि पिछले 20 साल से ये कॉल लगा रहे थे, इनकी कॉल लग नहीं रही थी और हमसे ये बातें करना चाह रहे थे। आज देखिए ईश्वर ने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया, मुझ तक, और हमसे बात होने जा रही है। जी बताइए अपना नाम, हमने तो बता दिया आपका नाम।
1: विजय यादव सर।
0: हाँ, क्या करते हैं वहाँ पे जौनपुर में?
1: सर हम यही खेती वाला काम करते हैं ज्यादा करते हैं।
0: तो जौनपुर शहर में ही रहते हैं कि जौनपुर से आपका गांव दूर है?
1: नहीं सर, बदलापुर ब्लॉक है, वहाँ पर गांव एरिया में रहते हैं।
0: तो आपका शहर वहाँ से कितना दूर है जौनपुर वाला प्रॉपर?
1: जौनपुर सर यहाँ से 30 किलोमीटर शहर है।
0: तो ये बताइए, जब इतने पुराने दिनों में आप आकाशवाणी अयोध्या फैजाबाद को सुनते थे, फैजाबाद ही था पहले तो, ट्रांजिस्टर पे सुनते थे जब आप, और ये कहते हैं न्यूज़ ऑन एयर भी नहीं था, 2020 में न्यूज़ ऑन एयर यहाँ पर आया, तो आप रेडियो पर, आपको प्रोग्राम वहाँ मिलता था ट्रांजिस्टर पे कि नहीं?
1: रेडियो पर सर सुनाई देता था, लेकिन कभी कभार पकड़ता था, लेकिन पकड़ने के लिए मैं बहुत प्रयास करता आपकी आवाज सुनने के लिए।
0: हाँ, आपने ये भी लिखा था कि बताइए मैं नया रेडियो लेके आया हूँ, अब उसमें भी नहीं पकड़ रहा, मैं आकाशवाणी एफएम को रेडियो पर कैसे सुनूं, मुझे मोबाइल ऐप में नहीं सुनना क्योंकि मैं वो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं चलाता हूँ, है ना?
1: हाँ सर, नया रेडियो लिया भी ऑनलाइन 1800 के पड़ा, लेकिन तब पर भी कभी कभार ही पकड़ता है।
0: तो आपने तो बहुत बेस्ट ट्रांजिस्टर लिया 1800 रुपए का, जबरदस्त मल्टीमीडिया होगा वो तो
1: सर ऑनलाइन पर महंगा भी पड़ता है।
0: नहीं, जो आपने लिया है ना वो बहुत अच्छा रेडियो लिया। वैसे आजकल रेडियो की जो कीमतें है ना अच्छे ट्रांजिस्टर की 600-700 रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं अब, है ना?
1: जी सर, रेडियो में अच्छा लगता है, मोबाइल थोड़ा कम पसंद करते हैं।
0: वो तो देखिए सब लोग वही कहते हैं, मैं भी वही चीज फील करता हूँ, मैं घर पे भी जब तक ट्रांजिस्टर में नहीं सुनता हूँ ना तब तक मुझे मजा नहीं आता है, मोबाइल में उतना अच्छा नहीं लगता, अगर नेट चला गया तो रेडियो चला गया।
1: हाँ सर, लेकिन सर आपकी आवाज सुनने के लिए मैं कभी छत पे कभी नीचे जहाँ पकड़ता था वहाँ डोलते थे।
0: एक चीज और है, देखिए आपका जो गांव है ना जौनपुर, आकाशवाणी एफएम रेंज से बहुत दूर है, एफएम की जो रेंज है, हाँ एफएम की रेंज जो है ना दिन में 60-70 किलोमीटर तक जाती है।
1: आपसे जब सर आपके हाथ में चोट लगी थी तब से मैं बात करने के लिए बहुत उतावला हो रहा था।
0: देखिए आप सबने दुआएं की थी, मैं तो इस धरती पे दोबारा लौट के आया,

0: ईश्वर का मैं भी आज भी शुक्राना अदा करता हूँ, दिन रात मुझे दोबारा जन्म मिला 12 नवंबर 2023 के बाद, है ना?
1: हाँ सर, वीडियो में आपका वीडियो में देखा था आपको।
0: चलिए कभी आइएगा यहाँ पर तो मुलाकात कीजिएगा, नहीं तो हम ही आपके पास आ जाएंगे।
1: सर आएंगे पर सर सर वहाँ गोरखपुर वहाँ धाम में गए थे लेकिन हम वहाँ एड्रेस नहीं पता था, कभी आएंगे तो आपसे मिलेंगे जरूर।
0: तो विजय यादव आपके घर में और कौन कौन सुनता है, कौन कौन है परिवार में? और
1: सर परिवार हमारे दो बच्चे हैं, प्रिंस यादव प्रांजल, और सर हमारे पिताजी रेडियो को इतना शौकीन नहीं है लेकिन ऐसा कभी पर समाचार सुनने के लिए कहते हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, लोकगीत भी आते हैं, बहुत से प्रोग्राम से आते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके आज। और आपकी पसंद का गाना है आई मिलन की रात फिल्म से कोई भी गाना चला दें या फिर बताएंगे आप?
1: नहीं सर कोई भी चला दीजिएगा।
0: चलिए तो कॉल करने के लिए शुक्रिया, जौनपुर से आपने कॉल की इतनी दूर से। ये दूर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप रेडियो पर सुनते हैं ना, तो रेडियो पर आप दूर कहीं सोता है हमारे है ना, बाकी तो मोबाइल ऐप ने सबको बहुत करीब कर दिया है। तो मैं
1: मोबाइल के सर जमाना है, बगल में कोई भी बैठा रहे लेकिन मोबाइल ही टिपते हैं लोग।
0: तो शुक्रिया जी विजय यादव, जौनपुर में आपका गाना पहुंच रहा है।
1: ठीक सर, आपने सेहत का भी ध्यान दीजिए।
0: शुक्रिया।

0: और अब देखिए फिर से कोई आ गया इस प्रोग्राम में, आने वाले तो आएंगे ही क्योंकि अभी टाइम खत्म नहीं हुआ प्रोग्राम का, और हम बैठे इसीलिए हैं कि आपके पसंद के गाने चलें और आपसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हों। और अब मेरे पास आया कौन है जी, इनको भी लाते हैं प्रोग्राम में। नाम बताइए अपना।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: हाँ नमस्ते जी, सबको अपना नाम बता दीजिए।
1: सुनील कुमार प्रजापति सर।
0: हाँ बस्ती से कॉल कर रहे हैं, और बस्ती में सब बढ़िया है?
1: हाँ सर ठीक है।
0: तो आज पूरे दिन भर में आपने कौन सा अच्छा काम किया, कुछ बता सकते हैं कि नहीं?
1: सर अच्छा काम बहुत दिन से इंतजार है सर, 17-18 साल से।
0: वो तो बात आपकी सही है
1: आपसे।
0: हाँ हाँ बिल्कुल मैं समझ गया। होता क्या है, होता क्या है कि जब आदमी रात में बिस्तर पे जाता है ना, तो दिन भर में उसने जो कुछ भी किया होता उसका मनन करता है, वो क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, है ना।
1: लगभग 23 तारीख को सर आए तो हमारा 20 का कॉल लगा था, इसलिए मैं लगाया नहीं फोन।
0: तो बस्ती में भी आपको यहाँ के प्रोग्राम्स रेडियो पर बढ़िया मिलते हैं?

0: पहले भी जब हम लोग फैजाबाद के ना, तब भी हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बहुत बराबर प्रोग्राम मिलता
1: है। तो बस्ती तो बहुत दूर नहीं है, बगले में तो है।
0: हाँ सर, बहुत साफ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रेडियो पे भी हम सुनते हैं। हाँ सर।
1: तो सुनील, आप पुरानी फिल्में देखते हैं कि नई फिल्में देखते हैं?
0: सर मैं नई फिल्म तो कभी देखता ही नहीं हूँ, पुरानी फिल्म देखा हूँ, अभी और देखता नहीं है सर।
1: वैसे एक चीज बताएं, अब पहले जो है 70, 80 और 90 के दशक में गाने तो बहुत बढ़िया बढ़िया थे ना?
0: हाँ सर, आवाज मिठास बहुत, गाने नए गाने अच्छे भी नहीं लगते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं।
1: लेकिन जो मैंने गाना आपके लिए निकाला है अलबेला फिल्म का, वो गाना बढ़िया है।
0: ठीक है सर,
1: मेरा दिल
0: सर,
1: गाने के बोल भी बड़े अच्छे, मेरा दिल तू ले जा ले जा।
0: ठीक है सर,
1: चलिए कॉल के लिए शुक्रिया, बस्ती में आपका गाना पहुंचा दिया मैंने।
0: ठीक है सर, नमस्ते सर।
1: नमस्ते।

0: तो टाइम अब भाग रहा है बड़ी तेजी के साथ, टाइम को कोई पकड़ नहीं सका, ना ही पकड़ पाएगा। और घड़ियां तो टाइम पर चलती ही रहेंगी, और घड़ियां नहीं चलेंगी तो फिर टाइम कैसे आगे बढ़ेगा। और अब मेरा प्रोग्राम भी, जी हाँ, 1/3 बढ़ रहा है। कौन आ गया मेरे पास बात करने के लिए, बताइए अपना नाम जी।
1: हेलो,
0: आपका स्वागत है प्रोग्राम में, बातें आगे बढ़ाइए।
1: हेलो,
0: मेरी आवाज आपके कान में पहुंच रही है ना सर?
1: जी सर।
0: हाँ तो हेलो मत करिए मेरे दोस्त, बातें करिए दिल की। बढ़िया बढ़िया गाना कौन सा सुनवा दे? आपने कहा कि अपनी पसंद का कोई भी गाना चला दीजिए।
1: हाँ सर, तो बस अपने पसंद का गाना सुनवा दीजिए, मैं गाने का इंतजार कर रहा हूँ।
0: हाँ आपने कहा कोई बढ़िया मौसम वाला गाना सुनवा दीजिए, तो हमने अनाड़ी फिल्म से गाना निकाल लिया आपके लिए। और नाम बता दीजिए सबको अपना, कहाँ से कॉल लगाई आपने?
1: मैं रविंदर तिवारी बोल रहा हूँ, दर्शन नगर अयोध्या से।
0: अच्छा जी, और दर्शन नगर में करते क्या हैं?
1: बस सर सामाजिक सेवा करता हूँ मैं।
0: किस तरह की सामाजिक सेवा करते हैं?
1: जी सर।
0: नहीं, खाना खिलाते हैं कि लोगों को रुकने के लिए उनका बसेरा करते हैं, क्या करते हैं आप सामाजिक सेवा? क्या
1: सर, हमारा वर्क है ग्लास का।
0: अच्छा,
1: और मैं जो दे उसका भी वाला, जो ना दे उसका भी वाला।
0: ये तो है, देखिए जिस
1: जो थोड़ा देता है उसका भी काम होता है, जो कम ज्यादा देता है उसका भी काम होता।
0: ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं ना, तो फिर उसको ईश्वर देख रहा है, फिर झोलियां भर के वो देता है ना।
1: अगर कोई एक गिलास पानी भी दे देता फिर भी मैं खुश रहता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कभी किसी से शिकायत ज्यादा करनी ही नहीं चाहिए, बस खुश रहिए है ना।
1: बस हम तो यही चाहते सर, हमसे ज्यादा अगला खुश रहे।
0: बिल्कुल, क्योंकि किसी का दिल दुखाएंगे तो उसको भी तकलीफ होगी, उससे ज्यादा दिल दुखाने वाले को भी तकलीफ होती है जब अकेले में रहता है।
1: बस, बस। हम तो यही भगवान से कामना करता हूँ, जो अगर हम सब खुश है लेकिन अगला हमसे ज्यादा खुश रहे।
0: जी बिल्कुल। तो ये बताइए दर्शन नगर में आपके आसपास दर्शन करने वाली चीजें क्या क्या है वहाँ पर, क्योंकि बहुत दूर नहीं है यहाँ से।
1: हमारे पास एक सूर्य कुंड है, आपने देखा कभी? नहीं
0: जी, मैं वहाँ पे आया हुआ हूँ, 5 किलोमीटर है यहाँ से।

0: समय बहुत भव्य स्थिति में है।
1: जी जी।
0: और यहाँ का लोकेशन इतना बढ़िया है कि आप शाम के टाइम आएंगे तो भगवान का एक दृश्य वहाँ चलता है। हाँ, जो भगवान स्वयं यहाँ पे मतलब स्थान लिए थे उस समय का दृश्य यहाँ चलता है अब।
1: हाँ जी, अब तो पूरी लाइटिंग वहाँ लगा दी गई है। अब भरत कुंड में भी
0: बहुत अच्छा लगता है, रात को तो इतना भव्य।

0: रात को तो इतना भव्य व्यवस्था है
1: जी,
0: लाइटिंग चलती है, भगवान का दर्शन होता है।
1: उस रोड से जब आगे बढ़ेंगे ना आप भरत कुंड की ओर, तो वहाँ पर भी नंदीग्राम में भी लाइटिंग लगाने का वहाँ पर प्रोग्राम बन रहा है।
0: वहाँ भी हो गया सर।
1: अच्छा हो गया है, चलिए अभी हम गए नहीं वहाँ पे, पहले तो गए हैं।
0: शुरुआत चल रही है सर, अभी पूरा व्यवस्था हुआ नहीं है लेकिन अब चल रहा है अभी।
1: अच्छी बात है, तो गाना आपका मैंने यहाँ से चला दिया है, रविंद्र तिवारी जी गाना सुनिए।
0: बहुत दिनों बाद हमारी आपसे मुलाकात हुई है, 2 महीना पहले हमने कॉल लगाई थी, एक पांडे जी हैं आपके यहाँ।
1: जी
0: हाँ, उनसे हमारी मुलाकात बात हुई थी।
1: बढ़िया, तो
0: हम चाहते कि सबको मतलब मौका मिले।
1: जी
0: हम
1: हाँ,
0: जैसे हम जैसे अभिभावक बहुत से लोग हैं जो इंतजार करते रहते हैं आपको।
1: देखिए एक चीज और है, जब आप कॉल लगातार लगाते रहते हैं ना तो फिर प्रोग्राम आप सुन नहीं पाते हैं, तो जब कॉल लग जाए
0: वही
1: तो कभी कभी प्रोग्राम सुनने का भी मजा लीजिए।
0: मान लो हम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो गाना भी हम नहीं बोल पाते हैं ना।
1: जी बिल्कुल, चलिए
0: तो अगर कोई ख्वाहिश है किसी के मन में तो वो अपनी ख्वाहिश पूरी करे वो।
1: जी बिल्कुल, चलिए बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर आपका गाना मैंने यहाँ से चला दिया, शुक्रिया।
0: ठीक, थैंक यू सर।

0: और नदिया के पार की मैंने बात किया था और नदिया के पार फिल्म के गाने की फरमाइश आ गई यहाँ पर। आइए देखें किसकी फरमाइश पहुंची है। जी बताइए अपना नाम।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बता दीजिए फिर से वहाँ से।
1: राजेंद्र निसार सर, ग्राम सभा जसोली थाना पूरा कलंदर अयोध्या।
0: पूरा कलंदर अयोध्या से बोल रहे हैं और खेती बाड़ी करते होंगे वहाँ पे, गाँव पर है तो ठीक है ना।
1: जी सर, धान का डाल चुके हैं।
0: जी
1: और
0: अच्छा ये बताइए,
1: तैयारी कर रहे हैं धान।
0: जब इतनी गर्मी पड़ रही थी तो खेतों में नमी भी नहीं थी, तो एक बारिश जो हुई है 4-5 बजे,
1: अब 2-4 दिन सर कुछ मौसम थोड़ा सा
0: हाँ नम हुआ है,
1: ठंड हुआ है सर।
0: हाँ क्योंकि पानी भी बरसा है तो मिट्टी में नमी आ गई है, तो अब आप वहाँ पे खेती बढ़िया कर सकते हैं। सब्जी भी लगाते हैं क्या? सब्जी भी लगाते हैं कि नहीं?
1: नहीं सर, सब्जी नहीं।
0: अच्छा,
1: और सब्जी हमारे आरी बन के सब लोग लगाते हैं, लेकिन सर मैं नहीं लगाता, मैं सब यही गन्ना और धान गेहूँ उड़द।
0: चलिए बढ़िया है, तो आज आपकी भी बारी लग गई आकाशवाणी अयोध्या के इस प्रोग्राम में, जो कि यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होती, सीधे आपकी बात जैसे यहाँ पहुँचती है वैसे रेडियो पर पहुँचा दी जाती है। तो गाना आपको नदिया के पार से कौन सा सुनवाए?
1: कौन दिशा में लेके चला रे बतोगिया सर।
0: तो ये पिक्चर भी आपने तो देखी होगी? वैसे देखी तो मैंने भी है
1: सर, बहुत छोटे थे तब पिक्चर आई थे
0: तब आप बहुत छोटे थे। अच्छा चलिए, तो अभी भी छोटे हैं, अभी कौन से बड़े हो गए? सुनिए, अभी भी आप छोटे हैं कि बड़े हो गए?
1: अरे सर, मेरी उम्र 44 साल है सर।
0: हाँ फिर तो आप बड़े हो गए हैं। चलिए चलिए, नहीं देखी तो मोबाइल वगैरह पे देख लीजिए, अभी भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। शुक्रिया कॉल करने के लिए राजेंद्र निषाद।

0: टिक टिक करती हुई घड़ियां क्या घड़ी आगे बढ़ रही है। घड़ियां तो यहाँ कई स्टूडियोज में लगी हुई हैं और स्टूडियो नंबर 2 से ये प्रोग्राम हो रहा है। और अब मेरे पास आ कौन गया 73-76-80-40-90 नंबर को मिलाकर। जी बताइए अपना नाम।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
1: सर जी हमारा नाम विकास मौर्या है,
0: तो
1: हम बस्ती जिले के हैदराबाद ग्राम से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, वहाँ सिकंदराबाद भी है ना वहाँ पे? नहीं,
1: हाँ हैदराबाद ग्राम।
0: अच्छा, केवल हैदराबाद है, सिकंदराबाद वो फिर वहाँ पे दूसरी जगह पे स्टेट में किसी दूसरे स्टेट में। तो हैदराबाद में करते क्या है आप?
1: सर जी कल धान वो मतलब बेरन छोड़ा जाएगा।
0: अच्छा, तो आज खेतों में काम करके थकान ज्यादा हो गई आपके? आवाज से लग रहा आप बहुत थके हुए हैं क्या?
1: नहीं सर, वो
0: ऐसे ही
1: धान में सोए हैं।
0: अच्छा, ऐसे ही बोलते हैं, सोते सोते बोलते हैं। तो आपको हम तलाश फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, और कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए जल्दी से, ताकि एक कॉल से हम और अटेंड कर लें इस प्रोग्राम में।
1: हाँ सर जी, कहना चाहते हैं कि आपके सारे प्रोग्राम अच्छे हैं।
0: कभी ये भी बताया कीजिए ना कि कौन सा प्रोग्राम अच्छा नहीं है या किस प्रोग्राम की कमी हो रही है, तो हम लोग की नींद खुलेगी, जाग खुलेगी।
1: जी, जी
0: उसके बारे में बताया कीजिए ना। अगर कोई प्रोग्राम नहीं अच्छा लगा तो बेधड़क लिखिए, बताइए, तभी उसमें सुधार होता है, है ना? चलिए
1: जी,
0: तो कॉल के लिए शुक्रिया, आपका गाना पहुंच रहा है। विकास
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: और अब हम किससे मिलने जा रहे हैं, आइए उनको भी ले आए हेलो अयोध्या प्रोग्राम में। नाम बताइए जी कहाँ से। देखिए कॉल उनकी ड्रॉप हो गई यहाँ पर, सुनील कुमार की सिसिंडा अयोध्या से इन्होंने कॉल की थी, उनकी जगह पे कोई और आने वाला है। जी बताइए अपना नाम आप बता दीजिए। हेलो, अपनी आवाज रेडियो की कम रखें और मोबाइल की भी आवाज कम रखें, हैंड फ्री ना करें। बताइए नाम अपना, हटाना पड़ेगा ये फोन, आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि जब आप प्रोग्राम में साथ देंगे बढ़िया तभी आपकी कॉल ऑन एयर हो सकती है, चीजों का ध्यान रखा कीजिए। जी नाम बताइए अपना, कॉल आपकी लग चुकी है।
1: हेलो सर, मैं बबलू बोल रहा हूँ।
0: बबलू कहाँ से?
1: सर गोंडा जिला दत्तनगर से।
0: तो नाम आपका बड़ा अच्छा लगा हमको, बबलू नाम।
1: हाँ जी, तो मैं भी गाना सुनना चाह रहा सर।
0: तो बबलू की बबली भी है कि नहीं अभी?
1: हाँ जी बबली भी है सर।
0: बढ़िया है ना, नाम आपने यही रखा है कुछ और रखा है?
1: नहीं सर, छत पे बैठे हैं साहब।
0: नहीं नहीं, पत्नी का नाम आपने यही रखा है कुछ और है?
1: नहीं नहीं, बबली का नाम तो है कुमारी।
0: हाँ लेकिन घर का नाम प्यार से बोला कीजिए, अगर आप बबलू हैं तो उनको बबली कर दीजिए।
1: हाँ सर, तो है बबली, लेकिन

चलती जाए रात प्रोग्राम में अभी आप कुछ पुराने गाने सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से। विविध भारती के कार्यक्रम अब हम आपके लिए रिले करेंगे कल सुबह 6:05 से। यह आकाशवाणी का अयोध्या एफएम है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर।

0: इस समय रात के 10:59 हुए हैं। बस कुछ ही पलों में दिल्ली से पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर